एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की छठवीं तिथि। तदनुसार 27 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

ये देशभक्तिपूर्ण रचना भी आप सुन रहे थे समूह स्वर में, और इसके बाद अब आपको प्रभु भक्ति के गीतों की ओर ले चलते हैं। हेमलता की आवाज़ में ये गीत सुनिए।

कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं और बच्चों का भाव सबसे सच्चा होता है। आज हमारे इस भक्ति सफर में अब आपको एक ऐसा भजन सुनवाते हैं जिसे सुनकर आप खुद को वृंदावन की गलियों में महसूस करेंगे, जहां नन्हे नन्हे कान्हा अपनी छोटी छोटी गैया और छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ रास रचा रहे हैं, आनंद बना रहे हैं। स्वर है नवीन त्रिपाठी और कविता राम का।

यह भजन सुनकर मन सच में गोकुल और वृंदावन की उन गलियों में घुमाया जहां कान्हा अपनी गैया चराते थे। लेकिन श्रोताओं, अक्सर जिंदगी की भाग दौड़ में जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो कभी कभी मन में एक छोटा सा संशय आ जाता है कि क्या सच में भगवान हमारी सुनते हैं, क्या वो आज के दौर में भी आते हैं। शायद हम में से बहुत से लोग इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, पर सच तो यह है कि भगवान आज भी आते हैं, बशर्ते उन्हें पुकारने वाला दिल से पुकारे, जैसे मीरा और शबरी ने पुकारा था। रिश्ता तो दोनों तरफ से ही निभाना पड़ता है। अगर हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो वो 10 कदम बढ़कर हमें थाम लेते हैं। इसी अटूट विश्वास और भक्ति के रंग में डूबा हुआ कार्यक्रम का अगला भजन है, जो हमें याद दिलाता है कि ईश्वर दूर नहीं है, बस हमारे भाव में थोड़ी सी कमी रह गई है। लीजिए सुनिए, स्वर है तुलसी कुमार और जुबिन नोटियाल का।

श्रोताओं, बात जब विश्वास की हो तो मन शांत हो ही जाता है, और जब वो विश्वास अटूट हो जाए तो इंसान को इस दुनिया की कोई भी दौलत फीकी लगने लगती है। हम सब जिंदगी भर किस चीज़ के पीछे भागते हैं? थोड़ा सा धन, थोड़ी सी शोहरत, थोड़ा सा आराम, है ना? लेकिन सोचिए उस धन का क्या जो आज है और कल नहीं। पर एक धन ऐसा भी है जिसे न कोई चुरा सकता है और न कोई खर्च कर सकता है, बल्कि वो दिन पर दिन सवाया होता जाता है, बढ़ता ही जाता है। जी, हम बात कर रहे हैं राम नाम के उस अनमोल रतन की, जिसे पाकर मेवाड़ की रानी मीराबाई ने राजपाट, महल, सब कुछ हंसते हंसते छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें वो खजाना मिल गया था जिसके आगे दुनिया के सारे हीरे जवाहरात, धन मिट्टी के समान है। तो चलिए आज इस सुबह को और समृद्ध बनाते और मीराबाई के उसी परम आनंद को खुद के भीतर महसूस करते हैं। ये भजन सुनिए, स्वर सोनू निगम और जया किशोरी ने दिया है।

श्रोताओं, आज के इस भक्ति के सफर में हमने बाल गोपाल की नटखट कैया देखी, मीरा शबरी का अटूट विश्वास महसूस किया और राम नाम के अनमोल रतन धन को भी पाया। और अब कार्यक्रम में आखिरी भजन आपको सुनवाते हैं और सिया राम के चरणों में अपना शीश झुकाकर सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी और बेहद सुरीला भजन, सिया के राम।

0: श्रोताओं, ये भक्ति गीत में स्वर दिया था लक्ष्य कपूर और सुमित्रा देव बर्मन ने, और इसके साथ ही कार्यक्रम आस्था के स्वर अब यहीं संपन्न होता है।
1: आस्था के स्वर।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का प्रोग्राम आस्था के स्वर, FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन।
1: मैं एक दिन कार द्वारा इंदौर से ओंकारेश्वर जा रहा था। मेरे साथ 14-15 वर्ष का मेरे एक परिचित का लड़का भी था। एक स्थान पर

उसने एक सूचना फलक की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया। उस पर लिखा था, सौजन्य से सभी खुश रहते हैं। उस बालक ने मुझसे पूछा, स्वामी जी सौजन्य का क्या मतलब? मैंने कहा, सुजनता। आपने भी वैसे सूचना फलक स्थान स्थान पर पढ़े होंगे। मानो सरकार हमें स्मरण दिलाती रहती है कि हम सुजनता न छोड़ें। सौजन्य या सुजनता का सामान्य अर्थ है अच्छा व्यवहार। सौजन्य बेरुखी या रूखेपन का उल्टा है। यदि हम किसी पद पर हैं और कोई हमारे पास अपना एक काम लेकर आया तो उसके साथ हम दो प्रकार से व्यवहार कर सकते हैं। एक तो उसे बैठने के लिए न कहें और रूखेपन से कहें, तुम्हें क्या चाहिए लिखकर दे दो। दूसरे उससे कहें, आइए बैठिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। इन दोनों तरीकों में आकाश पाताल का अंतर है। एक है रूखा।

0: कहती है कि हम सुजनता न छोड़ें। सौजन्य या सुजनता का सामान्य अर्थ है अच्छा व्यवहार। सौजन्य बेरुखी या रूखेपन का उल्टा है। यदि हम किसी पद पर हैं और कोई हमारे पास अपना एक काम लेकर आया तो उसके साथ हम दो प्रकार से व्यवहार कर सकते हैं। एक तो उसे बैठने के लिए न कहें और रूखेपन से कहें, तुम्हें क्या चाहिए लिखकर दे दो। दूसरे उससे कहें, आइए बैठिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। इन दोनों तरीकों में आकाश पाताल का अंतर है। एक है रूखापन तो दूसरा सौजन्य। एक से व्यक्ति क्षुब्ध होकर लौटता है तो दूसरे से प्रसन्न होकर। एक गाली देता हुआ निंदा करता है तो दूसरा प्रशंसा करते नहीं अघाता। मेरे एक परिचित मंत्री थे, जब लोग उनके पास कोई काम कराने जाते तो झिड़क देते थे, क्या यह पटवारी का काम भी मैं ही करूंगा? क्या मैं शाला निरीक्षक हूं जो यह अर्जी मुझे देते हो? मैंने उन्हें सलाह दी, आप रूखापन मत दिखाइए, अर्जी ले लीजिए, कहिए ठीक है तुम्हारी मांग अगर उचित है तो मैं पटवारी को कहला दूंगा, शाला निरीक्षक को संदेशा भिजवा दूंगा। उन्होंने मुझसे कहा, क्या यह सरासर झूठा आश्वासन देना न होगा? यह विचारणीय प्रश्न है। सौजन्य का यह भी रूप है, मीठी मीठी बातें करके जो सामने है उसे खुश कर देना और उसका काम न करना। प्रश्न यह है कि चिकनी चुपड़ी बात करके झांसा देना क्या सौजन्य कहलाएगा? झूठे आश्वासन देकर किसी को खुश करना क्या सौजन्य है? नहीं, यह सौजन्य नहीं है। सौजन्य का तात्पर्य है दूसरों के प्रति सद्भाव रखते हुए उन्हें सहायता देने की इच्छा तथा साथ ही एहसान जताने का अभाव। जैसे कोई मेरे पास किसी काम के लिए आया, यदि मुझसे वह काम न बनता हो तो मीठी जबान से उसे समझा दूं कि वह मेरे बस की बात नहीं है। यदि काम उचित न लगता हो तो उसे बता दूं कि भाई यह तो मैं नहीं कर सकूंगा। यदि काम उचित हो और मैं उसे किसी प्रकार मदद दे सकता हूं तो उसकी चेष्टा करूं। यह सौजन्य का सही पक्ष है। कुछ लोग काम करें या न करें एहसान जताने की कोशिश करते हैं, यह सौजन्य नहीं है। यह भी सौजन्य नहीं कि हमारे पास जो फालतू हो, जिसे हम फेंकना चाहते हों, उसे दूसरे को देकर एहसान जताएं। जैसे मैंने दो गृहिणियों की बात सुनी, एक दूसरी से कह रही थी, मेरे घर ऐसा कुछ बचा जो हम लोग न खा सकते हों तो हमारे पतिदेव उसे फेंकने के लिए कह देते हैं। उस दिन केले आए, गिलगिले हो गए, वो तो कह रहे थे कि फेंक दूं, पर बहन मैंने तो नौकर को बुलाकर दे दिया, कहा ले अपने बच्चों को दे देना। इससे चीज भी काम में आ गई और नौकर पर एहसान भी हो गया। अब भले ही ऊपर से यह सौजन्य सा प्रतीत होता हो पर सौजन्य नहीं है। वहां नौकर के बच्चों के प्रति हित की भावना नहीं है। सौजन्य दूसरे के हित की भावना हमारे भीतर पैदा करता है। फिर सौजन्य की कसौटी अपने से उच्च अधिकारियों के प्रति हमारे व्यवहार से नहीं होती। हम उनके प्रति तो सौजन्यवान होते ही हैं क्योंकि हमें नौकरी जाने का डर होता है, सीआर खराब होने का भय लगा रहता है। हमारे सौजन्य की परख वहां होती है जब हम ऐसे लोगों से व्यवहार करते हैं जिनसे हमें लेना देना कुछ नहीं है या जो पद प्रतिष्ठा में हमसे नीचे हैं। सौजन्य का विरोधी है अधिकार मद। अधिकार मद से आक्रांत व्यक्ति अपने से ऊपर वालों के लिए तो भीगी बिल्ली बना रहता है पर अपने से नीचे के लोगों के लिए शेर। अधिकार मद एक विचित्र मानसिकता है, एक नशा है जो मनुष्य की मानवता को दबा देती है और उसके सौजन्य को प्रकट नहीं होने देती। ऐसा व्यक्ति अपनी हेठी से भले ही आत्मसुख का अनुभव करे पर वह विकृत आत्मसुख है और लोगों की नजरों में वह गिरा हुआ है।
1: चिंतन में अभी आप सुन रहे थे स्वामी आत्मानंद जी के विचार। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग।

सखियां सीता जी को गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में ले आईं, जहां श्रीराम को सीता के प्रथम दर्शन हुए। सीता ने भी श्रीराम के श्यामल मनोहारी रूप को देखा कि तभी दोनों भाई वाटिका में उनकी आंखों से ओझल हो गए। वो चकित होकर चारों ओर देखने लगीं कि राजकुमार क्षणभर में ही कहां लोप हो गए। उसी समय दोनों भाई लता कुंज में से ऐसे प्रकट हुए जैसे बादलों का आवरण हटाकर चांद निकल आता है। दोनों भाइयों के शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभा पा रही हैं। कानों में सुंदर आभूषण, टेढ़ी भ्रुकुटी और घूंघर वाले बाल, रत्नारी आंखों और मुस्कान की शोभा मन को सहज ही मोह लेती है। ये मनोहारी दृश्य देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। तभी एक सखी ने सीता जी से ठिठोली की, पार्वती का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को ही जी भरकर क्यों नहीं देख लेती। सिर से पैर तक श्री राम का सुंदर रूप देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके सीता जी को अवसाद हो आया। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण कर हृदय में श्री राम की मूर्ति बसाए बिसूरती सीता सखियों समेत पार्वती पूजन को चल पड़ी।

0: गान में आज का प्रसंग, गायक स्वर था अनुराधा पौडवाल का। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कृषि चर्चा।
1: किसान भाई बहनों ने राम राम। भाई बहनों ने कृषि और पर्यावरण एक दूसरा का पूरक भी छे न एक दूसरा को आधार स्तंभ भी, क्योंकि मौसम का बदलाव न पर्यावरण की अशुद्धता फसल का खराब करश तो फसल में उपयोग में लाया जाने वाला दवा न उर्वरक का गलत न अंधाधुन प्रयोग से वातावरण खराब होय न मौसम असमय बदली जाय। इस बात सही तरीका से फसल उत्पादन पर भी लागू होवश तो भाई बहनों ने यदि सही तकनीक न जैव दवा खाद उर्वरक को उपयोग करांगा तो फसल का साथ साथ पर्यावरण भी अच्छो रहेगा। आज का समय में शासन कृषि वैज्ञानिक विशेषज्ञ न बहुत सा किसान भाई ऐसी कृषि तकनीक न अपनाना की सलाह देज जैकासी फसल को उत्पादन अधिक होय न ओका में लगने वाला पदार्थ भी पर्यावरण का मित्र का रूप में कार्य करज। जैसी जीवामृत, धन जीवामृत, केचुआ खाद, जैविक खाद, कीटनाशक दवा जेख प्राकृतिक तरीका से बनायो जायज। ई सब पदार्थ फसल का साथ साथ मिट्टी का स्वास्थ्य का भी लाभ पहुँचावज। एक अलावा एको एक सबसे बड़ो लाभ ई भी छे कि ई दवा न अरु खाद रसायन मुक्त रहेज जो हमारा स्वास्थ्य का लेन भी लाभदायक रहेज। भाई बहनों ने रसायन युक्त खाद न दवा जहाँ पर्यावरण का नुकसान पहुँचावज वहाँ ई दवा मिट्टी का स्वास्थ्य कभी खराब करज न ओका में रहने वाला मित्र कीट न कभी नुकसान पहुँचावज। भाई बहनों ने ई रसायन जब हमारा शरीर में पहुँचाज तो हमख कई खतरनाक बीमारी दई जाय न जब इन फसल न को चारों हमारा पालतू पशु खावज तो उनका स्वास्थ्य तो खराब होवज सही साथ ही उनसे मिलने वालों दूध भी विषैलो हुई जायज न थोड़ी थोड़ी मात्रा में सही हमारा सेवन करने से हमारा शरीर में पहुँची करना नुकसान पहुँचावज। भाई बहनों होनी ज़्यादा उत्पादन न जल्दी उत्पादन का लेन हम ऊँची से ऊँची दवा न खाद तो उपयोग कर ही लेवाज एकासी अच्छी दिखने वाली फसल भी हमको मिली जायज पण काई ई फसल गुणवत्ता पूर्ण रहेज। कई असो उत्पादन मिट्टी का बंजर बनाने का लेन काफ़ी नहीं छे। ज़्यादा न जल्दी उत्पादन का लेन सही कृषि तकनीक न को उपयोग करनो ही सही तरीको आए। जैसी मौसम अनुकूल फसल को चुनाव करो, सही समय पर फसल बो, सही समय से खाद न उर्वरक की संतुलित मात्रा मिट्टी परीक्षण करवाने का बादज उपयोग में लाओ, बीजोपचार, उत्तम गुणवत्ता का बीज न को उपयोग न जहाँ तक हुई सक अपनी खेत का 70% तक जैविक खेती बनाओ न जब आप 70% तक सफल हुई जाओ तो धीरे से 100% अपनी खेती का जैविक खेती में पलटी दो तो आपका कम उपज भी नहीं मिलेगा न लाभ भी ज़्यादा मिलेगा। भाई बहनों होनी आज जैविक उत्पाद को बाजार में बहुत ज़्यादा प्रचलन छे। सभी जैविक तरीका से उगायल खाद सामग्री खरीदनू न खाणु चाहज न एकालेन ऊ दाम भी देने का तैयार छे तो क्यों न हम अपनी खेती का जैविक खेती में बदली देवा न अपना उत्पादन से भरपूर आमदनी प्राप्त करा। भाई बहनों होनी कृषि को तरीको आधुनिक होनो चाहिए ताकि समय की बचत हुई सके पण उत्पाद पुराना समय जितना शुद्ध भी होनो चाहिए तबज ई पर्यावरण का सुरक्षित रखी पावेगा न पर्यावरण सुरक्षित तो खेत भी सुरक्षित रहेगा न हमारी खेती से प्राप्त होने वाली उपज भी सुरक्षित न लाभकारी रहेगा। तो आज की कृषि चर्चा में बस इतनोज। राम राम।
0: कृषि चर्चा में आज का विषय था उन्नत कृषि तकनीक अपनाएं। वाचक स्वर था प्रणीता जैन का। यह आकाशवाणी खंडवा है, निमाड़ की सुरीली धड़कन।
2: बड़े अच्छे लगते हैं
3: क्या
2: ये धरती, ये नदिया, ये रैना।
4: आकाशवाणी खंडवा सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन।
0: जी श्रोताओं, सुनते रहे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। सुबह के 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में जानकारी आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओं, हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों में अब से थोड़ी देर बाद 7 बजे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे वार्ता गर्मी का बढ़ता प्रकोप। वार्ताकार होंगे देवांशु बंडुले। 7:20 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत आज आपको सुनवाएंगे फिल्म नायक की स्टोरी और गाने। 8:15 पर आप सुन सकते हैं निमाड़ी लोकगीत। 8:30 पर होगा आपका पसंदीदा प्रोग्राम आपके मीत ये गीत।

सुबह 9 बजे से 10 बजे तक हम रोजाना राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करते हैं। 10 बजे जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। 10:05 पर सुनिएगा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम NCERT। 10:35 पर नारी जगत कार्यक्रम होगा, जिसमें भेंटवार्ता का आज विषय ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते तापमान का पर्यावरण पर प्रभाव। इस विषय पर संगीता वर्मा से बातचीत की है शीतल बायती ने। रात्रि 11 बजे से माफ कीजिएगा दिन में 11 बजे से शाम 5:30 तक हम राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे।

आज हमारे सांध्यकालीन कार्यक्रमों में शाम 5:30 पर निमाड़ी लोकगीत होंगे। शाम 6 बजे युवाणी कार्यक्रम, 6:30 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का, और 7:21 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा।

रात्रि 8 बजे से हम राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे रात 11 बजे तक। आपको पुनः याद दिला दें कि अब से थोड़ी देर बाद ठीक 7 बजे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे वार्ता गर्मी का बढ़ता प्रकोप, वार्ताकार देवांशु भांडुले। 7:20 पर साप्ताहिक कार्यक्रम नायक की फिल्म स्टोरी आपको सुनवाएंगे एक ही फिल्म से कार्यक्रम में। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

0: आज की ताजा खबर।
1: ताजा खबर में प्रस्तुत है आज के समाचार पत्रों से ली गई कुछ प्रमुख सुर्खियां।

0: जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर डस्टबिन रखवाए जाएं और विभिन्न क्षेत्रों में गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन लगाए जाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने एमपी लॉकर ऐप को राज्य स्तरीय डिजिटल दस्तावेज मंच के रूप में लागू किया है। विभाग के अनुसार ऐप के जरिए नागरिक प्रमाण पत्र, लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र, कर रसीदें और अन्य दस्तावेज सुरक्षित रखकर जरूरत पड़ने पर कहीं से भी प्राप्त और साझा कर सकते हैं। मंच पर ईएनपी, एबी पास और भोपाल नगर निगम से जुड़ी 22 से अधिक सेवाएं उपलब्ध है। रेलवे द्वारा यात्री सुविधा के तहत अब इटारसी तक खंडवा बीड़ शटल का संचालन किया जाएगा। शटल के इटारसी तक विस्तार के साथ ही शेड्यूल पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल द्वारा जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छेगांव माखन में निशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित कर मरीजों का नेत्र परीक्षण किया गया। शिविर में कुल 58 लोगों की आंखों की जांच की गई। इनमें ऑपरेशन के इच्छुक मोतियाबिंद के 10 मरीजों को निशुल्क सर्जरी के लिए इंदौर भेजा गया। जिला अस्पताल शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के ईएनटी विभाग में पहली बार ब्रोंडोस्कोपी प्रक्रिया सफलतापूर्वक की गई। मंगलवार को जिला चिकित्सालय में एक ही दिन में 3 मरीजों की ब्रोंकोस्कोपी की गई। अब खबरें खेल जगत से। खंडवा जिले की बेटी अनेरी ऋषि सोनकर ने एनआईएस कोच कोर्स पूर्ण कर जिले का नाम रोशन किया है। वो जिले की पहली महिला एनआईएस कोच बन गई है। आईपीएल 19 का एलिमिनेटर मुकाबला बुधवार को यानी आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुजफ्फरपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। अब एक नजर तापमान के हाल पर। कल दिन का अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आप सुन रहे थे ताजा खबर, समाचार संकलन किया प्रियंका गुप्ता ने।
1: आज की ताजा खबर।
0: आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन और इस विषय पर गठित विशेष सेल की कार्रवाई की समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मंगलवार को कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को निर्देशित किया कि कचरे से बनने वाली खाद का बगीचों में बेहतर उपयोग

0: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता। विषय है गर्मी का बढ़ता प्रकोप। वार्ताकार हैं देवांशु भांडुले।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र देवांशु भांडुले। श्रोताओं, इन दिनों पूरा देश भीषण गर्मी की चपेट में है। सुबह की धूप अब दोपहर जैसी लगती है। धरती तप रही है, हवा आग बनकर चल रही है और इंसान से लेके पशु पक्षी तक हर कोई राहत की तलाश में दिखाई देता है। गर्मी का मौसम हर साल आता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका स्वरूप तेजी से बदला है। अब गर्मी

केवल मौसम नहीं रही, बल्कि यह स्वास्थ्य, पर्यावरण, खेती, पानी और जीवन शैली से जुड़ी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे गर्मी से बचने के कारणों की, लू और उसके खतरे की, गर्मी से बचाव के उपायों की, किसानों, मजदूरों और बच्चों पर इसके प्रभाव की, साथ ही पर्यावरण संरक्षण में हमारे जिम्मेदारी की भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष कार्यक्रम तपती धरती जलता आसमान। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि पहले की तुलना में अब गर्मी ज़्यादा क्यों महसूस होती है? कुछ वर्ष पहले तक लोग कहते थे कि गर्मी तो हर साल पड़ती है, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। तापमान लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। कई राज्यों में पारा 45 डिग्री से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज का। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। कारखानों से निकलने वाला धुआं, वाहनों का प्रदूषण और पेड़ों की कटाई और बढ़ती आबादी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। पहले गाँव में बड़े बड़े पेड़ होते थे, तालाब और कुएं पानी से भरे रहते थे, लेकिन अब शहरों में कंक्रीट बढ़ गया है और हरियाली कम हो गई है। परिणाम यह है कि धरती अधिक गर्मी सोखने लगी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते पर्यावरण की रक्षा नहीं की गई तो आने वाले वर्षों में गर्मी और अधिक खतरनाक हो सकती है। श्रोताओं, गर्मी के दिनों में हम अक्सर सुनते हैं लू लग गई, लेकिन लू आखिर होती क्या है? जब शरीर अत्यधिक गर्मी के कारण अपना तापमान नियंत्रित नहीं कर पाता, तब हीट स्ट्रोक यानी लू जैसी स्थिति पैदा होती है। सामान्य रूप से हमारे शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन तेज धूप और गर्म हवाओं में लंबे समय तक रहने से शरीर का तापमान अचानक बढ़ जाता है। लू के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं, जैसे तेज बुखार, सिर दर्द, चक्कर आना, कमजोरी, उल्टी, सांस लेने में परेशानी, शरीर में पानी की कमी और बेहोशी। यदि समय पर इलाज ना मिले तो यह जानलेवा भी हो सकती है। श्रोताओं, गर्मी सभी को प्रभावित करती है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा जोखिम में होते हैं, जैसे बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चों का शरीर जल्दी गर्म हो जाता है। इसके बाद बुजुर्ग, उम्र बढ़ने के साथ शरीर की सहन शक्ति कम हो जाती है। इसके बाद मजदूर और किसान, जो लोग खुले आसमान के नीचे काम करते हैं उन्हें लू लगने का खतरा अधिक होता है। और सबसे अंतिम में बीमार व्यक्ति, दिल, शुगर और सांस की बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी की जरूरत होती है। अब सवाल यह है कि इस भीषण गर्मी से कैसे बचें? तो आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपाय। सबसे पहले दोपहर 12 से 3 बजे तक घर से बाहर ना निकलें, यह समय सबसे अधिक गर्म होता है। खूब पानी पीजिए, शरीर में पानी की कमी नहीं होने दें। घर में नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी, ORS या लस्सी रखें, ये सभी शरीर को ठंडक देती है। हल्के कपड़े पहने, सूती और ढीले कपड़े पहने, गहरे रंग की बजाय हल्के रंग के कपड़े अधिक आरामदायक होते हैं। इसके बाद मौसमी फल खाएं, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा और संतरा, यह फल शरीर को ठंडा रखते हैं। सिर को ढक कर रखें, बाहर जाते समय टोपी, गमछा या छाता ज़रूर इस्तेमाल करें। और अंत में बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी से बचें, ज़्यादा कैफीन शरीर में पानी की कमी बढ़ा देता है। श्रोताओं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां लाखों किसान और मजदूर तेज़ धूप में काम करते हैं, लेकिन भीषण गर्मी अब उनके लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है, क्योंकि खेतों में लंबे समय तक काम करने से शरीर थक जाता है, पानी की कमी हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं और कई बार लोग बेहोश भी हो जाते हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि किसान और मजदूर सुबह जल्दी या शाम को काम कर लें। श्रोताओं, गर्मी बढ़ने

के साथ बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ती है। हर घर में पंखे, कूलर और एसी चलने लगते हैं। इससे बिजली पर दबाव पड़ता है। कई शहरों और गांव में पानी की समस्या भी बढ़ जाती है। तालाब सूखने लगते हैं, भूजल स्तर नीचे चला जाता है। इसीलिए पानी और बिजली दोनों का समझदारी से उपयोग करना बहुत जरूरी है। श्रोताओं, यदि हमें भविष्य की गर्मी से बचना है तो पर्यावरण को बचाना होगा। पेड़ लगाएं, एक पेड़ कई लोगों को ठंडक देता है। पानी बचाएं, ज़रूरत के अनुसार ही पानी उपयोग करें। बिजली बचाएं, अनावश्यक लाइट और पंखे बंद रखें। प्रदूषण कम कीजिए, छोटी दूरी के लिए पैदल चलें या साइकिल का उपयोग करें। श्रोताओं, गर्मी केवल इंसानों को नहीं सताती बल्कि पशु पक्षी भी इससे परेशान होते हैं। तेज धूप में पक्षियों को पानी नहीं मिलता, कई बार वे प्यास के कारण मर जाते हैं। इसीलिए घर की छत या आंगन में उनके लिए पानी रखें, पशुओं को छांव दें। इंसानियत के साथ जीवों का भी ध्यान रखें। श्रोताओं, हमारे पुराने जीवन में गर्मी से बचने के कुछ प्राकृतिक तरीके मौजूद थे, जैसे मिट्टी के घड़े का पानी, खस की टट्टी, पेड़ों की छांव, मिट्टी के घर, आम का पन्ना और बैल का शरबत। ये सब शरीर को प्राकृतिक ठंडक देते हैं। लेकिन आधुनिक जीवन शैली में हमने इन चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है। ज़रूरत है कि हम आधुनिकता के साथ अपनी पारंपरिक समझ को भी अपनाएं। श्रोताओं, गर्मी के समय हमें केवल अपने बारे में नहीं बल्कि समाज के बारे में भी सोचना चाहिए। यदि आपके आसपास कोई बुज़ुर्ग अकेले रहते हैं तो उनका हाल ज़रूर पूछें। यदि कोई मजदूर धूप में काम कर रहा है तो उसे पानी पिलाएं। यदि कोई राहगीर परेशान दिखे तो उसकी मदद करिए। तो श्रोताओं,

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री। ओलंपिक खेलों की सूची में योगासन को शामिल करने के प्रयास होंगे, कहा केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने। भोपाल में आज होगा जल संरक्षण पर केंद्रित सदा नीरा समागम का शुभारंभ। और आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी पोंग ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया एक स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री से जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे परे शांति, स्थिरता तथा समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। डॉ. मांडविया ने कल नई दिल्ली में कहा है कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। ये देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा है कि योगासन देश की सॉफ्ट पावर को दर्शाता है और विश्व भर में शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने का एक माध्यम बनकर उभरा है।
1: योग ये हमारे देश की संस्कृति भी है, हमारी जीवन शैली भी है। आज से सदियों पहले योग भारत से निकल के सारे दुनिया में गया है। फिर से योगासना की फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप करके उसको पुनः भारत में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में आयोजित करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। 25 मई तक 2,39,00,000 से ज्यादा मकानों की गणना पूरी हो चुकी है। 1 मई से शुरू हुआ ये काम 30 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। नोडल अधिकारी शिल्पा गुप्ता ने बताया कि इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। प्रगणक घर घर जाकर HLO ऐप के जरिए जानकारी दर्ज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान जन आंदोलन बन गया है। जनता की सहभागिता से जल संरक्षण में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्य बन गया है। डॉ. यादव कल उज्जैन में शिप्रा तट पर शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के समापन समारोह में मां शिप्रा को 351 फीट की

0: चुनरी अर्पित करने के उपरांत जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के बैंड ने रामघाट पर मनमोहक प्रस्तुति दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अन्य अतिथियों के साथ अंतर्जली यात्रा, श्री शिप्रा महिमा और ये है मोहन की सरकार पुस्तकों का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आगामी सिंहस्थ के दौरान शिप्रा नदी की घाट पर श्रद्धालुओं को स्वच्छ जल की उपलब्धता आयोजन को पावन बनाएगी। श्रद्धालुओं की आकांक्षा को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं।
1: जल संरक्षण के काम कर रहे हैं और जल संरक्षण के काम हम नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, पोखर, नदियों के उद्गम हरेक जगह जल की महत्ता को स्थापित करते हुए जन सहयोग के माध्यम से शासन भी 10,000 करोड़ की राशि का अमृत सरोवर से लेके सही कई प्रकार के जल रचनाओं पे काम कर रहा है, तालाबों पे काम कर रहा है और हमारा प्रदेश तो अब और नदी जोड़ो अभियान की तरफ आगे बढ़ रहा है। नदी में हमारे लिए जीवन, जल में ही जीवन है। ऐसे में नदी जोड़ो अभियान विश्व का सबसे पहला अगर कहीं हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा है।
0: पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, जलवायु अनुकूल शहरी विकास पर केंद्रित राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आगामी 30 और 31 मई को भोपाल के पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संस्थान एप्को परिसर में किया जाएगा। सम्मेलन में जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और शहरी विकास के संबंध में विषय विशेषज्ञ अपने विचार प्रकट करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भारत भवन में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी और सांस्कृतिक उत्सव सदा नीरा समागम का शुभारंभ करेंगे। वीर भारत न्यास द्वारा जल संरक्षण, भारतीय संस्कृति, पंच महाभूतों तथा सतत विकास के विषयों पर केन्द्रित ये गरिमामय आयोजन 2 जून तक चलेगा, जिसमें देश विदेश के विद्वान, पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और कलाकार सहभागिता करेंगे। इस 7 दिवसीय समागम में भारतीय दर्शन के महा पंच महाभूत, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और अग्नि पर आधारित विभिन्न वैचारिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में कल मध्य प्रदेश महिला वित्त और विकास निगम की बैठक हुई। बैठक में महिला रोजगार, कौशल विकास और संस्थागत सुधारों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मंत्री सुश्री भूरिया ने निर्देश दिए कि महिला वित्त एवं विकास निगम को प्रदेश की महिला वर्कफोर्स तैयार करने वाली प्रमुख संस्था के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए नियम एक व्यापक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करेगा, जिसमें महिलाओं की कौशल दक्षता पर परीक्षण कर उन्हें कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख शुभ रंजन सेन ने भोपाल स्थित वन भवन में अत्याधुनिक आईटी ट्रेनिंग हॉल का लोकार्पण किया। आईटी ट्रेनिंग हॉल के माध्यम से विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को डिजिटल तकनीकों, ई गवर्नेंस प्रणाली, आधुनिक सॉफ्टवेयर आधारित कार्य प्रणालियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इससे विभागीय कार्यों में दक्षता, पारदर्शिता और त्वरित निर्णय प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। धार जिले में विकसित किए जा रहे पीएम मित्र पार्क के अंतर्गत प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का कार्य संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ निरंतर प्रगति पर है। परियोजना से प्रभावित कुल 89 परिवारों में से अब तक 48 परिवारों को 2 चरणों में 24-24 परिवारों के समूह के रूप में सफलतापूर्वक नवीन आवासीय कॉलोनी में स्थानांतरित किया जा चुका है, जबकि शेष 41 परिवारों का पुनर्वास आगामी 3 माह में पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आईपीएल प्रतियोगिता में दूसरा क्वालिफायर मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इसके पूर्व कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पहले क्वालिफायर मुकाबले में 92 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने कल पुलिस लाइन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। झाबुआ में संभागीय चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला ने ग्रामीण क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर 29 नमूने जांच के लिए लिए हैं। आगर मालवा में कल आयोजित हुई जिला शांति समिति की बैठक में कलेक्टर प्रीति यादव ने ईद और मुहर्रम पर्व शांति सौहार्द से मनाने की अपील की है। भोपाल में

संभावित हवाई हमले और बड़े आपदा हालात से निपटने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय आवास परिसर में मॉक ड्रिल की गई। शिवपुरी में आज शासकीय आईटीआई झांसी रोड में युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बालाघाट में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टों का वितरण करने के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में कल सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है अनिल कपूर अभिनीत फिल्म नायक।
1: आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
2: कार्यक्रम एक ही फिल्म से सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रशांत मालवीय का नमस्कार। श्रोताओं, आज की फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसमें संयोग से फिल्म का हीरो बन जाता है एक दिन का मुख्यमंत्री, और उस एक दिन के कार्यकाल से प्रभावित होकर जनता उसे पूर्णकालिक मुख्यमंत्री बनाने की मांग करती है। फिर नायक का इनकार, और इनकार के बाद जनता के दबाव में चुनाव लड़कर खुद की सरकार बनाना। एक्शन ड्रामा और मधुर संगीत से सजी ये फिल्म है नायक द रियल हीरो। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में है अनिल कपूर, रानी मुखर्जी, अमरीश पुरी और परेश रावल। फिल्म में पार्श्व गायन किया कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण, अलका याग्निक, शंकर महादेवन, वसुंधरा दास, सुनिधि चौहान, हंसराज हंस, हरिहरण, संजीवनी और अभिजीत ने। फिल्म के सभी गाने लिखे आनंद बख्शी ने। श्रोताओं, ये फिल्म रिलीज हुई वर्ष 2001 में। फिल्म के निर्देशक एस शंकर। और संगीत दिया ए आर रहमान ने।

फिल्म के हीरो है अभिनेता अनिल कपूर यानी शिवाजी राव, जो कि एक न्यूज चैनल में कैमरामैन है और अपने साथियों के साथ अपने न्यूज चैनल के लिए खबरों को कवर करते हैं और वीडियो शूट करते हैं। फिल्म में अभिनेता अमरीश पुरी बने हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री बलराज चौहान, जिनकी सरकार सहयोगी दलों की मदद से चल रही है, जिनके चीफ सेक्रेटरी हैं अभिनेता परेश रावल।

0: मुख्यमंत्री जी एक दिन गांव का दौरा करते हैं। शिवाजी राव उन्हें न्यूज के लिए कवर करते हैं।
1: सर मत झुकाइए, ये आपके लिए नहीं है, आंबेडकर की मूर्ति के लिए।
2: कैसे चीफ सेक्रेटरी हो तुम, पहले बताना था ना, इडियट।
0: उसी दौरान फिल्म में पहली बार एंट्री होती है फिल्म की हीरोइन रानी मुखर्जी यानी मंजरी की।
2: बेटी ये लाइटें कब लगवाई गई यहाँ?
3: आप आने वाले थे ना, इसलिए परसों ही लगाया है, बस बिजली भी नहीं अब तक दी है। ये लोग सब आपके सामने झूठ बोल रहे हैं।
4: ए लड़की जबान बंद कर अपनी।
3: हा?
4: कुछ मालूम नहीं और सीएम साहब के सामने भागे जा रही तू?
2: ए शोर मत मचाओ, शांत रहो शांत रहो। क्या करते हो तुम लोग? स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन तुम्हारे इलाके से है, चार चार एई हैं, 40 जेई हैं, सैकड़ों वर्कर काम कर रहे हैं, फिर क्या झक मार रहे हो तुम लोग?
5: सर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की गलती नहीं है, वो ठेकेदार है ना उसने।
2: मुझे कुछ नहीं सुनना है, इन लोगों ने मुझे वोटें दी हैं और मैंने इनको वादा किया था कि सड़कों पर लाइटें जलेंगी, तो फिर क्यों नहीं जल रही है?
6: दादा लोगों ने वोट दिए हैं लेकिन यहाँ के ठेकेदार वली साहब ने नोट दिए हैं।
0: लेकिन सीएम के जाने के बाद गांव वाले मंजरी को ही डांटते हैं और ये सब देखकर शिवाजी राव मंजरी को दिल दे बैठते हैं। अगले दिन शिवाजी राव उस लड़की यानी मंजरी से मिलने गांव पहुंच जाते हैं और अपने दिल की बात कह देते हैं।
3: कौन हो तुम?
7: नाम शिवाजी राव वाल भीमराव, पढ़ाई डिप्लोमा इन विजुअल कम्युनिकेशन, पेशा QTV कैमरामैन, उम्र एक दिन, कल ही मेरा नया जन्म हुआ तुम्हें देखने के बाद, मेरी पसंद वो लड़की जिसने बिना डरे सीएम से सच बात बोल दी, मेरी नापसंद वो ट्रैक्टर जो बीच में आ रहा और डिस्टर्ब कर रहा है, पसंदीदा गांव 1 जून से फूल गांव, मैंने पाया है अपने कैमरे में तुम्हारी तस्वीर, मैंने खोया है अपना दिल, मैंने जाना है कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो, मुझे जानना है तुम्हारा नाम।
3: हम पुतलों पुतलों का अपना नाम नहीं बताते। हाँ
7: तो मुझे बता दो प्लीज। अरे सुनो, अरे सुनो तो,

0: फिल्म आगे बढ़ती है। एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में राज्य की राजधानी में बस ड्राइवर और एक स्टूडेंट के बीच में मारपीट हो जाती है।
1: किधर चढ़ रहे तू? ये सिग्नल है, बस स्टॉप नहीं है, चल उतर नीचे।
2: बस भी तेरे बाप की नहीं है, स्टॉपर क्यों नहीं रोका?
1: मेरा मर्जी नहीं रोका, तू उतरता है कि नहीं तो दूंगा साले तेरे को।
2: 2 बजे का हमारा एग्जाम है, ये बस छूट जाती तो हमें एग्जाम लिखने को नहीं मिलता, इसलिए चढ़ा। एक तो बस नहीं रोका, ऊपर से शकपट्टी करता है।
1: उतरता है कि नहीं?

0: उत्तर देगी नहीं तो दूंगा साले तेरे को।
1: 9 बजे का हमारा एग्जाम है, ये बस छूट जाती तो मैं एग्जाम लिखने को नहीं मिलता, इसलिए चला। एक तो बस नहीं रोका, ऊपर से शकपट्टी करता है।
0: उतरता है कि नहीं?
1: नहीं उतरूंगा।
0: तेरी तो चल उतर नहीं जाएगी।
2: बात बढ़ जाती है और हंगामा होने लगता है। हंगामा बढ़ते ही जाता है। शिवाजी राव पूरे घटनाक्रम को कवर करते रहते हैं। हजारों लोग जाम में फंसे हैं। स्थिति बिगड़ते बिगड़ते भयावह हो जाती है। कमिश्नर मौके पर पहुंचते हैं और सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते हैं।
3: बोलो
4: सर, यहाँ सिचुएशन बहुत खराब हो गई है सर, अगर आप परमिशन दे तो 5 मिनट में सबकी टांगे तोड़कर अंदर कर दूं। ओवर।
3: ज्यादा उछलो मत। उनमें से एक ड्राइवर मेरी पार्टी का है और दूसरा उन जात वालों का है जिन्होंने मुझे इलेक्शन में जिताया है, और वो स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्शन में हमारा काम करते हैं। अगर इनमें से किसी को भी हाथ लगाया तो हमारा सपोर्ट चला जाएगा।
2: मुख्यमंत्री बलराज चौहान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें अपनी सरकार गिरने का डर है।
3: ये जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ ना, इसके चारों पैर मेरे नहीं है। एक है सहयोगी पार्टी का, दूसरा है इन जात वालों का, और तीसरा है उन लोगों का जिनके पैसों पर ये पार्टी चल रही है, और चौथा है हमारे कार्यकर्ताओं का। अगर इनमें से एक पैर भी टूट गया तो ये कुर्सी गिर जाएगी।
2: ये छोटा सा झगड़ा बढ़कर उपद्रव, लूटपाट और दंगे में बदल जाता है। दंगे में लोगों की जान भी चली जाती है। शिवाजी राव पूरे घटनाक्रम को कवर करते रहते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि मुख्यमंत्री बलराज चौहान के राजनीतिक स्वार्थ और निष्क्रियता के कारण ये दंगा होता है जो धीरे धीरे फिर शांत हो जाता है। फिल्म की स्टोरी आगे बढ़ती है। दंगे के दौरान हिम्मत से न्यूज कवर करने वाले शिवाजी राव के कारण उनके चैनल की TRP बढ़ जाती है, जिससे खुश होकर चैनल के बॉस शिवाजी राव को सीनियर न्यूज रिपोर्टर बना देते हैं।
3: आज से तुम कैमरामैन नहीं, तुम सीनियर न्यूज रिपोर्टर हो।
2: इस बीच शिवाजी राव और मंजरी की मुलाकातें होते रहती है और दोनों का ही प्यार परवान चढ़ने लगता है।

0: शिवाजी राव के अच्छे काम को देखते हुए चैनल के बॉस एक दिन शिवाजी राव को बुलाकर कहते हैं,
1: तुम्हें एक बहुत खास आदमी का इंटरव्यू लेना है।
2: किसका सर?
1: सीएम का।
2: यू मीन चीफ मिनिस्टर?
1: हाँ।
2: लेकिन सर, मैंने कभी किसी का इंटरव्यू लिया नहीं।
1: तो क्या हुआ, यही तो अपॉर्चुनिटी है। ऐसे मौके को हाथ से मत जाने दो। देखो शिवाजी, ये तुम्हारा एक्सक्लूसिव शो है और तुम्हारा पहला गेस्ट खुद चीफ मिनिस्टर।
0: शिवाजी राव को अपॉर्चुनिटी मिलती है सीएम साहब का इंटरव्यू करने की, और फिर वो दिन भी आता है जब इंटरव्यू लिया जाना है। प्रोग्राम का नाम है आमने सामने। इंटरव्यू शुरू होता है जिसे लाखों लोग लाइव टीवी पर देख रहे हैं।
2: नमस्कार, आज हमारे सामने जो गेस्ट है उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उन्हें न सिर्फ आप और हम जानते हैं बल्कि सारी दुनिया उनसे परिचित है। नमस्ते।
3: नमस्ते
2: सर। हर बार चुनाव में आने वाले मुख्यमंत्री हमारी समस्याओं को हल करेंगे ये सोचकर जनता अपना वोट डालती है, लेकिन हर बार उसे निराशा होती है, उसके साथ धोखा होता है। आपके राज में भी ऐसे ही हो रहा है, क्यों सर?
0: शिवाजी राव मुख्यमंत्री बलराज चौहान से तीखे प्रश्न करते हैं जिनका जवाब सीएम साहब को देते नहीं बनता।
3: अगला सवाल।
2: सर, पॉलिटिक्स में आने से पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था?
3: हमारा परिवार बहुत गरीब था, हम लोग खेती बाड़ी करते थे।
2: अभी आपकी तनख्वाह कितनी है?
3: क्या
2: सैलरी? तनख्वाह
3: सब काट कर कोई 18,000 रुपए होगी।
2: यानी एक साल में 2,16,000, यानी आज तक की आपकी कमाई 20-25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर भी आपके पास 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, वो कहाँ से आई सर?
0: शहर में हुए दंगे से जुड़े प्रश्न भी शिवाजी राव मुख्यमंत्री से करते हैं, तो मुख्यमंत्री इंटरव्यू छोड़कर जाने लगते हैं, लेकिन शिवाजी राव उन्हें रोक लेते हैं। गुस्से में मुख्यमंत्री बलराज चौहान शिवाजी राव को एक ऐसा प्रस्ताव देते हैं कि सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
3: आज तक एक बार भी सीएम के ऑफिस में आए हो? वहाँ की चौखट पार की है तुमने? आकर देखो कि दिन में कितने लोग मिलने के लिए आते हैं, रोते हैं, सवाल पूछते हैं, धन्यवाद करते हैं, पैर छूते हैं, मालाएं पहनाते हैं, गालियां देते हैं। जानते हो कितना कुछ झेलता हूं मैं? जो सीएम की कुर्सी पर बैठता है ना, वही जानता है। जब कभी कोई दंगा फसाद या कुछ ऐसा होता है तो जज्बाती होकर जल्दबाजी में मैं एक तरफा फैसला नहीं करता। मैं पहले फसाद की जड़ तक पहुंचता हूं, फिर से सुलझाता हूं। तुम्हारी तरह हवा में सवाल नहीं पूछता, और यही मैंने उस दिन किया।
2: उस दिन आपने कुछ भी नहीं किया सर। जो समस्या आसानी से हल हो सकती थी उसे आपने अपने फायदे के लिए और बड़ा बनने दिया, और अब यहाँ बैठकर खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं।
3: आग में हाथ डालोगे जल जाओगे, तुम समझ नहीं रहे हो। डाल के देखो फिर पता चलेगा। एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बन के देखो, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। बस एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठकर देखो कि कितने अंगारों पर बैठता हूं मैं, कितने कांटों का ताज है मेरे सर के ऊपर। तब पता चलेगा कि कितने लोग एजुकेट हुए और कितने लोगों की गरीबी कम हुई। तब तुम यहाँ बैठना और मैं तुमसे सवाल पूछूंगा इसी प्रोग्राम में। बोलो क्या बोलते हो?
0: अब घबराने की बारी शिवाजी राव की थी। फिर हिम्मत करके शिवाजी राव हाँ कह देते हैं।
2: ठीक है सर, अगर ऐसा हो सकता तो मैं तैयार हूँ। एक दिन के लिए मैं आपकी कुर्सी पर बैठ कर देखूंगा।
0: और फिर इस तरह शिवाजी राव बन जाते हैं एक दिन के मुख्यमंत्री।
2: मैं शिवाजी राव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का शुद्ध अंतकरण से निर्वाहन करूंगा।
0: शिवाजी राव तुरंत ही एक्शन मोड में आ जाते हैं।
2: एक चपरासी से लेकर ऊपर तक आप सब लोग करप्ट हो चुके हैं। I'm sorry to say this, but that's the truth. इन सारे अफसरों के खिलाफ हजारों कंप्लेंट्स दर्ज की

0: जाती लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता, बस फाइलें बनाकर कोने में दबा दी जाती। वो सारी फाइलें जमीन खोद कर निकालिए या दीवार तोड़कर, फोन कीजिए, एसटीडी कीजिए, टैक्सी में जाइए, हेलीकॉप्टर में जाइए, आई डोंट माइंड, लेकिन एक घंटे में, अगले एक घंटे में वो सारी फाइलें मुझे मेरे हाथ में चाहिए, विद इन एन आवर। अगर किसी को पेट में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ और वो टाइम पर नहीं पहुंचा तो उसके नाम की फाइल मैं खोल दूंगा।
1: एक्सक्यूज मी सर, इन सारी फाइल्स का हम करेंगे क्या?
0: सबको सस्पेंड करेंगे।
1: वाह, पहली बॉल में सिक्स।
2: शिवाजी राव अलग अलग जगहों पर पहुंचकर अधिकारियों की गलती पाए जाने पर फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं।
0: जब आप सब जानते हैं, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया?
3: सर आप तो जानते हैं मिनिस्टर लोग।
0: मिनिस्टर की बात छोड़ो, आपने अपना काम क्यों नहीं किया? टाइपराइटर आ गया। तुम्हारा नाम क्या है?
3: सर श्री
0: श्री श्रीमान, वो हम सब लगा लेंगे, तुम सिर्फ अपना नाम बताओ।
3: श्रीकांत मानिक सर।
0: इनका सस्पेंशन ऑर्डर टाइप करो।
2: शिवाजी राव गरीबों की बस्ती में जाकर उन्हें अलॉट किए गए मकान उन्हें दिलाते हैं और सबसे अपील करते हैं।
0: आप लोगों से मेरी विनती है कि मैं बस एक दिन के लिए सीएम बनाऊं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों का कुछ भला करूं, तो सबसे पहले आप लोगों को बदलना होगा। आज आप जो कुछ भी खरीदें, चाहे वो माचिस हो या मोटर कार, सुई हो या सोना चांदी, हेयरपिन हो या एरोप्लेन, सेल्स टैक्स भर के खरीदेगा। सेल्स टैक्स सरकार का हक है। अगर आप 1000 रुपए का सोना खरीदते हैं तो 4% के हिसाब से 40 रुपए सेल्स टैक्स हो जाता है। वो 40 रुपए बचाने के लिए आप दुकानदार से बिल नहीं मांगते, जिसका वो फायदा उठाता है, और वो पूरा 1000 रुपया उसकी ब्लैक मनी में चला जाता है जो सरकार तक नहीं पहुंचता। इसलिए प्लीज टैक्स भरिए, क्योंकि वो 40 रुपया 400 रुपए का फायदा बनकर वापस आप ही को मिलेगा। दुकानदार अगर पक्का बिल ना दे तो सामान मत खरीदेगा।
4: ये लो 440 रुपया।
5: पक्का बिल देना भाई,
6: हमको भी बिल चाहिए।
7: ग्राहक को माल नहीं
0: मिलेगा। अगर कोई बिल देने से इनकार करे तो पुलिस स्टेशन में कम्प्लेन कीजिए। जो दुकानदार बिल नहीं देगा और जिसने आज तक का बाकी का सेल्स टैक्स नहीं भरा होगा, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा।
2: इधर पुराने मुख्यमंत्री बलराज चौहान और उनके सहयोगी शिवाजी राव की एक्टिविटीज देखते रहते हैं। शिवाजी राव जनता की शिकायतें टेलीफोन पर भी सुनते हैं। इस तरह शिवाजी राव अस्पताल, पुलिस थाना और अन्य विभागों की समस्याओं का तुरंत ही निराकरण कर देते हैं। शिवाजी राव गुंडा तत्व को भी सबक सिखाते हैं। शिवाजी राव के राजस्व से जुड़े सही निर्णय लेने के कारण राज्य में राजस्व की बढ़ोतरी होती है। शिवाजी राव भ्रष्ट मंत्रियों को भी गिरफ्तार करवा देते हैं। इस तरह शिवाजी राव का एक दिन पूरा होने को होता है, लेकिन उसके पहले ही शिवाजी राव पुराने मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार करवा देते हैं।
0: आपके 12 मिनिस्टर्स के खिलाफ भ्रष्टाचार का सबूत है मेरे पास। माफ करना, उन्हें गिरफ्तार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। उनके करप्शन में आपका अहम हिस्सा है, इसलिए मैं आपको भी गिरफ्तार करता हूँ।
1: ये बूढ़ा बागड़ बिल्ला तो अपनी लिस्ट में था ही नहीं।
8: बचपना मत करो, तुम कानून नहीं जानते। एक चीफ मिनिस्टर को इस सड़क पर चलता हुआ बेवड़ा नहीं जिसे उठाकर अंदर डाल दो। उसके लिए गवर्नर के दस्तखत चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर चाहिए, और भी हजारों फॉर्मेलिटीज होती हैं।
0: माफ करना, इस वक्त सीएम मैं हूं, पर आप एक आम आदमी हैं। I have the power to arrest you. गिरफ्तार कर लीजिए।
2: पुराने मुख्यमंत्री बलराज चौहान वकीलों को बुलवाकर जमानत का इंतजाम करने को कहते हैं और फिर शिवाजी राव पर हमला करवाया जाता है, लेकिन शिवाजी राव खुद को बचा लेते हैं। इस तरह शिवाजी राव का एक दिन का मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा होता है, लेकिन लोग अब उन्हें पसंद करने लगते हैं। उधर शिवाजी राव के मुख्यमंत्री रहने के दौरान पुराने मुख्यमंत्री बलराज चौहान और उनकी सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के कारण सभी सहयोगी पार्टियां अपना समर्थन वापस ले लेती है और पूरी सरकार गिर जाती है और फिर घोषणा होती है फिर से चुनाव कराने की। मीडिया द्वारा जब लोगों से पूछा जाता है कि अगला मुख्यमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं, तो लोग कहते हैं,
9: अरे भाई साहब, इस बार आने वाले इलेक्शंस में आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं?
10: कोई नया आना चाहिए।
11: हमसे अगर पूछो तो वो जो एक दिन का मुख्यमंत्री था ना, उसी को परमानेंट बना दो।
9: वाओ,
12: शिवाजी राव ही सही आदमी है।
13: बेटा वो तो आगरे का, भुजिया हो तो हल्दीराम की, रसगुल्ला हो तो कलकत्ते का, सरकार हो तो शिवाजी राव की।
14: अरे एक ही तो मर दे यहाँ पर शिवाजी राव, बाकी तो सब हमारे जैसे हैं।
15: शिवाजी राव।
2: लेकिन शिवाजी राव मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। चीफ सेक्रेटरी बार बार शिवाजी राव को समझाते हैं।

0: आखिर गलती क्या है मेरी? इस देश में भलाई करना सबसे बड़ी गलती। एक इंटरव्यू तो किया था मैंने, वो मेरा काम था। एक दिन का सीएम बना वो एक्सीडेंट था। सीएम बनकर भी मैंने वही किया जो एक सीएम को करना चाहिए। जो होना था वो हो गया। अब मैं वापस एक आम आदमी हूँ। फिर भी वो मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं?
1: कौन कहता कि तुम एक आम आदमी हो? जिस दिन तुम सीएम की कुर्सी पर बैठे, तुम आम नहीं रहे, अंगूर हो गए हो पॉलिटिक्स के। और ऐसा अंगूर जिसे अब गुच्छे में रहना पड़ेगा। अकेला रहा तो या तो कुचल दिया जाएगा या सड़ जाएगा। तुम क्या समझते हो कि बलराज चौहान तुम्हें छोड़ देगा? अगर वो चुनाव जीत गया तो पुलिस से पिटवाएगा, अगर हार गया तो किराए के गुंडों से। छोड़ेगा नहीं
0: तो फिर इसका अंत क्या है?
1: या तो सामान बांधो और माँ बाप के साथ कन्याकुमारी जाकर सेटल हो जाओ, या फिर राजनीति में आ जाओ।
0: इम्पॉसिबल सर, इम्पॉसिबल। राजनीति में तुम्हें कतई नहीं आऊंगा, नेवर।
1: अगर नहीं आना है तो ये रोना बंद करो। यहाँ खड़े होकर ये मत चिल्लाओ कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। साला इसीलिए तो बलराज चौहान जैसे नेता सीना चौड़ा करके चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि जब मुकाबले का वक्त आता है तो तुम लोग दुम दबाकर कोने में छिप जाते हो। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
2: जनता और मीडिया भी शिवाजी राव पर दबाव बनाती है। तब जनता के दबाव में शिवाजी राव फैसला करते हैं चुनाव लड़ने का। इलेक्शन होता है और शिवाजी राव की पार्टी बहुमत से चुनाव जीत जाती है। शिवाजी अब एक दिन के नहीं बल्कि पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बन जाते हैं।
0: नमस्कार, मुझे आप लोगों से ये उम्मीद है कि जो काम मैंने एक दिन में करने की कोशिश की थी, उसे हम और आप मिलकर हमेशा करेंगे। टू डू दैट मोर इफेक्टिवली, मैंने हर डिपार्टमेंट में 2-2 मंत्रियों को अपॉइंट किया है, एक अनुभवी बुजुर्ग और दूसरा जोशीला नौजवान।
2: अपोजिशन की सभी पार्टियां एक साथ हो जाती है और शिवाजी राव के खिलाफ बार बार साजिश रचते हैं। उधर शिवाजी राव मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मंजरी को उतना ही चाहते हैं, लेकिन व्यस्तता के चलते मंजरी से मिल नहीं पाते और मंजरी शिवाजी राव से मिलने के लिए तड़पती रहती है।

0: एक दिन शिवाजीराव मंजरी से मिलना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से जा नहीं पाते। फिर वो भेष बदल कर मंजरी से मिलने गांव पहुंच जाते हैं।
1: पोरगी पटली रे पटली।
2: ऐसा बोले क्यों बनाया तुमने?
1: मंजरी, इस वक्त मैं सीएम नहीं हूं, बस तुम्हारा शिवाजी हूं। ना कोई फाइल, ना किसी से मिलना, ना बंसल, ना पुलिस, ना टोपी। आज मैं सारा दिन तुम्हारे साथ गुजारूंगा।
2: सच बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ?
1: पहले मैं खाना खाऊंगा, बहुत भूख लगी है।
2: उफो,
1: क्या हुआ?
2: मैंने तुम्हारे लिए पूरी और खीर बनाई थी, तुम आए नहीं, इसलिए गुस्से में बकरी को डालाई। अब तो सिर्फ कल की बासी रोटी बची है।
1: अरे बहुत है रे।
2: लेकिन साथ में कुछ नहीं है।
1: तुम होना मेरे साथ, और क्या चाहिए?

0: शिवाजी राव जब मंजरी के साथ होते हैं तब उन पर एक बार फिर जानलेवा हमला होता है, जिसे देखकर मंजरी के पिताजी शादी से इनकार कर देते हैं। इसी बीच जब शिवाजी राव अपने माँ पिताजी से मिलने अपने घर जाते हैं तभी उस घर में बम फूट जाता है, जिससे शिवाजी राव के माँ और पिताजी की मौत हो जाती है। शिवाजी राव इस घटना के लिए बलराज चौहान को जिम्मेदार बताते हैं। एक बार फिर साजिश रची जाती है लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की और शहर में कई जगह टाइम बम फिट कर दिए जाते हैं। साजिश का खुलासा होता है और शहर में फिट किए गए सभी बमों को डिफ्यूज किया जाता है। बलराज चौहान शिवाजी राव पर बम रखने का आरोप लगाते हैं। तब शिवाजी राव बलराज चौहान को अपने ऑफिस बुलाते हैं।
1: आज हमें यहाँ क्यों बुला लिया?
2: देखो, मैं अपनी मर्जी से सीएम नहीं बनाऊ, ना ही तुमसे लड़ झगड़ कर तुम्हारी कुर्सी छीनी है। लाखों लोग चलकर मेरे घर पर आए, मुझे चुनाव में खड़ा किया, मुझे जिताया, ये सोच करके मैं उनके लिए कुछ अच्छा करूंगा। आज जब मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ तुम मेरे बीच में आ रहे हो।
1: मैं कहाँ बीच में आ रहा हूँ, मुझे तो तुमने घर पे बिठा रखा है।
2: हाँ हाँ, तुम लोग जो रूलिंग पार्टी को गिराने के लिए जितना दिमाग, जितने पैसे, जितने लोग खर्च करते हो, उसका 1% भी लोगों की भलाई के लिए खर्च किया होता तो आज तुम यहाँ बैठे होते और मैं घर में खुश होता। जब देखो हड़ताल, दंगा फसाद, बम ब्लास्ट, मैं अपना काम करूं या बम ढूंढता फिरूं?
1: अरे यार, तुम तो शुरू से ही मेरे पीछे पड़े हुए हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ किया है तो पुलिस तुम्हारी है, कानून तुम्हारा है, केस फाइल करो, तहकीकात करो, इंक्वायरी कमीशन बैठाओ, अगर साबित हो जाए तो मुझे फांसी पर लटका दो। मैंने तुम्हें रोका है क्या?
2: तुम जैसे घटिया नेता कानून से कबड्डी खेल कर कैसे बच जाते मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन आज तुम मुझसे बच नहीं सकते। I'm gonna kill you.
1: इतनी जल्दी हार मान गए?
2: कौन जीता और कौन हारा ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा।
1: बेटा, 30 साल का तजुर्बा है हमारा राजनीति का, अच्छे अच्छों को चूज कर गुठली

0: फेंक दी है। अभी तुम्हारे पास आया हूं तो दुनिया भर को मालूम है कि मैं यहां इस कमरे में तुम्हारे साथ अकेला बैठा हूं। मुझे मारकर तुम भी बच नहीं सकोगे।
1: तुम्हारा तजुर्बा अगर 30 साल का है तो पिछले 1 साल से तुमसे लड़ते लड़ते मेरा तजुर्बा 31 साल का हो गया है। मैं अब गोली चलाऊंगा। ये गोली तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए है।
2: मुझे बेवकूफ बनाया कमीने।
3: पुराने मुख्यमंत्री बलराज चौहान को अपने किए की सजा मिलती है। उसे सुरक्षा कर्मियों द्वारा शिवाजी राव पर गोली चलाने के कारण मार दिया जाता है। अंत में मंजरी भी शिवाजी राव के पास आ जाती है और फिर इस तरह नायक शिवाजी राव बन जाते हैं द रियल हीरो।

तो श्रोताओं, ये थी आज की फिल्म नायक द रियल हीरो, और इसके साथ ही कार्यक्रम समाप्त करने की प्रशांत मालवीय को अनुमति दे। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म नायक की स्टोरी और गाने, कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत।
1: मीठी मीठी निमाड़ की सुरीली धड़कन,
2: जहाँ होती है मीठी मीठी बातें और सुनाए जाते हैं प्यारे प्यारे गाने।
3: इश्क़ दी चाशने, ओ मीठी मीठी चाशने।
1: तो आप भी इसकी मिठास में खो जाएं, सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
3: ओ मीठी।

एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के

0: अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ सत्र में विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
3: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किस

0: किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
1: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
3: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को

0: ये साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मानसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुखपृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में CNG के दाम 2 रुपये प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। इस समय सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है निमाड़ी लोकगीत। श्रोताओं, निमाड़ी लोकगीत में आज हम आपको कलाकार लिंबादास रामलाल और साथियों के गाए कुछ लोकगीत सुनवा रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे लिंबा दास रामलाल और साथियों के गाय निमाड़ी लोकगीत। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण।

0: इस दीवानगी को यूं ही बनाए रखें, सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। जी हां श्रोताओं, सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। इस समय सुबह के 8:30 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम आपके मीत ये गीत का।
1: आपके मीत ये गीत।
0: बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दोस्तों, और मैं आज ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ प्रशांत मालवीय। नमस्कार।

श्रोताओं, बेहद ही खूबसूरत तीन नगमे आपको सुनवाएंगे। ये नगमे आपकी पसंद के हैं जो आपने हमें ईमेल के माध्यम से लिख भेजे हैं कि ये गाना सुनना चाहते हैं। चलिए नाम बताते हैं किन श्रोताओं की पसंद के गाने हैं। सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित बेबी करवी और बेबी बॉय हिमाक्ष। शिवकोठी ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन, निशा सेन, कुमारी सपना, ओम मम्मी द्वारका बाई और इनके साथी। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार और भानुप्रिया। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक। पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी और अमीना बी। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा।

अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी और अमीना बी, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा, शास्त्री नगर बीड़ शहर से किशन सपकाल, आशा सोनिया, साईराज और विशाल सपकाल, राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, रामभाव तांदले और इनके साथी, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन और नाजिया इब्राहिम, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान और पूजा परिहार, गांव जाखोद से शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार और पूजा, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही हैं यह आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, धार धर्मपुरी से मूसा जी खत्री, ईशा जी और जाकिर खत्री, खंडवा मध्य प्रदेश से बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा, जिकरा डावर और आयशा खत्री, राठौड़ मोहल्ला ग्राम जामली कला से माना चंद्र राठौड़, पुष्पाबाई, प्रियांशी और दिव्यांश, ग्राम छेगांव देवी जिला खंडवा से अशोक वागे, वंदना वागे और काना वागे, डेर पाटन गुजरात से धीरज वीरबारी, अंबारगढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सभिया, अनस और रेहान, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल, झिरनिया रतनपुर से जितेंद्र सिंह गोड़, नरेंद्र, सचिन, प्रीति, भावना, अंतिम पलक, श्रुति, यशराज और देवराज, साबी और साथ में रिद्धिमा, जिला खरगोन सनावत से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा और राजकुमार बोडाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु और मुकेश जगताप, बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मुणत और चेतन नाहटा, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक आर्यन, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार हैं, वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी लवली और आरती, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरव, साइना, निवान शर्मा और साथी, महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती, विनीत और प्रगति नाचानी, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर चिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर, प्रमोद और प्रदीप यमेकर। चलिए आप सभी की पसंद का गाना हमने क्यों कर चुके हैं, फिल्म है पापा कहते हैं, आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की, राजेश रोशन का संगीत और जावेद अख्तर का लिखा ये खूबसूरत गाना आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में बेहद ही खूबसूरत नगमा आप सुन रहे थे फिल्मती पापा कहते हैं कार्यक्रम के बाकी गाने इस छोटे से अंतराल के बाद। आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। जंजीर फिल्म का गाना हमने आपके लिए लेकर आए, जो आपकी पसंद का है। अलका याग्निक और उदित नारायण की युगलबंदी आप इस गाने में सुनेंगे। आनंद मिलिंद का संगीत, देव कोहली का लिखा है गाना। पसंद आप सभी श्रोताओं ने इस गाने को किया है, नाम बताते हैं। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे, प्रशांत, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सर्वद और सानवी शम्मू। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीये, राधिका अनिष्का और तन्मय गजबीये। जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी। बुरहानपुर से मोहन मुदलियार, आर्शिया आरुष और राजेश कुमार हैं। ततरंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी और राघव कुमार भानुप्रिया। मंजनों का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर और सतना। एमपी से उमंग, आकाश मलिक, माही मलिक और इनके साथी हैं। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुलापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी मोहिनी और ऋतिक बलवीर सिंह। सनावत जिला खरगोन से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, कृष्णपाल सिंह चौहान, दीपक सचिन कटारिया, कृष्णा विराज, अर्णव कृतिका, काव्यांशी और श्रीमती प्रभा दुर्गा और पूजा कटारिया। कांवरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। आकार हाइट्स बहादुरपुरा, नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाणकर, प्रिंस एकांश, सुमित कुमारी ध्वनि, परी प्रणीता, सिद्धांत और लाडला टुक टुक गवाणकर। उच्च भटकी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु आशी, शिवन्या और अन्नू गोस्वामी। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले, पाटिल, राजदीप और शीतल राजेश। बरबट बकाल बुलढाणा से नारायण हागे, कमल और दिव्या हागे और जय। ग्राम पंजोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक और इनके साथी। चांदनी चौक पंडई गंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक। नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। सहारनपुर से जॉन डिस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिस्ट्रो। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, सौभाग्यवती, उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल, निवृत्ति क्षीरसागर, संजय कुमार चौहान हैं। प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा, ध्रुवी और फाल्गुनी। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित और तानिया। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस गवाणकर, निर्मला, विशाल और इनके साथी। कल्लनगंज खंडवा से कौसर बी पवार, हसीना बी अलमाज बानो और सबीना जहीर पवार। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता और केशु खुराना। ग्राम पिपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश। मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मन, मानस और कनिका पटेल। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिम्पल, बाबू प्रियांश और भाव्या देवांगन। अहमदपुर खेगांव से कैलाश फुलमाली, दीपक और समर। ग्राम सिलोदा जिला खंडवा से सेवक राम राठौड़ और राजा राठौड़। चलिए आपकी पसंद का गाना जंजीर फिल्म का, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज, आनंद मिलिंद का संगीत और देव कोहली का लिखा ये गाना।

जंजीर फिल्म का एक गाना था जिसमें आनंद मिलिंद ने संगीत दिया था। आनंद मिलिंद का ही संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाएंगे, आपकी पसंद का है। वंश फिल्म का एक गाना है जो आपको सुनवाएंगे बस कुछ ही देर में।

चलिए नाम बताते हैं किन श्रोताओं की पसंद का एक गाना है जो वंश फिल्म का है। लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजें, आनंद बिलिंद का संगीत और समीर का लिखा है गाना। पसंद किया ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू और मोहम्मद हसनैन। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता और वामिका गंगराड़े। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल। गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति

लिया। गांव और डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतविंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर, देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली क्षत्रिय, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और आरती कुमारी, शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनोवर, सरला मनोवर, विशाल और चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर और अमनदीप, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़, सीटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजजिंदर कौर और इनके साथी, जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से गंगाधर सावनर, विजयलक्ष्मी और राजेश, राकेश और रशिता, तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीम मुन्ना, शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता, गौरव और कार्तिक हैं, लक्कड़ बाजार खंडवा से ठाकुर भवानी सिंह बेस, रिया, रोहन और अंगद, आदर्श ग्राम बठेना पाटन छत्तीसगढ़ से परमेश्वर साहू, राजबत्ती टोप सिंह, काजल पूर्वी, हेजल, राजेश और रेशमा, अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल और गोपी, माता चौक खंडवा से राजेंद्र कटारे, उदय कटारे, उज्जवल और वितांश, गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एसएम जावेद, चगुत्ता अंजुम, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया, गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार दूदी, प्रमोद कुमार दूडी और पुष्पेंद्र कुमार दूडी।

0: लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजें थी वंश फिल्म का गाना, और इसके साथ ही कार्यक्रम आपके मीत ये गीत अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।
1: आपके मीत ये गीत।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 9 बजे

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। शाशा तिरुपति और अरिजीत सिंह की आवाज में अतरंगी रे फिल्म से ये गाना इरशाद कामिल के बोल या रहमान का संगीत।

बकरीद इस्लाम धर्म का प्रमुख और पवित्र त्यौहार है। अटूट आस्था, त्याग और समर्पण की भावना के प्रतीक बकरीद पर्व की ढेर सारी बधाई।

0: रॉकस्टार फिल्म से आप सुन रहे थे एआर रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान की आवाज में गाना, इरशाद कामिल के बोल, एआर रहमान का संगीत।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो।
0: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं नील एंड निकी फिल्म से, सोनू निगम, महालक्ष्मी अय्यर, क्लिंटन सेरिजो, डोमिनिक सेरिजो की आवाजों में अन्विता गुप्तन के बोल, और संगीत है सलीम सुलेमान का।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर...

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे कलाकार की कहानी जो फिल्मों में आने से पहले मेरी तरह रेडियो उद्घोषक था, फिल्मी कलाकारों के इंटरव्यूज लिया करता था और कुछ कलाकार उससे कहते कि तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए, अच्छे खासे स्मार्ट दिखते हो, अच्छी कद काठी है, अच्छी आवाज है, फिल्मों में क्यों नहीं आते। और आखिरकार वो सचमुच फिल्मों में आ गया।

सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम इलाके में हुआ था। ये बंटवारे के बाद अब सरहद के उस पार रह गया है। बचपन का नाम बलराज दत्त था। हरियाणा के मंदाली में इनका बचपन बीता, फिर लखनऊ होते हुए बलराज दत्त मुंबई आ गए। मुंबई में पढ़ाई तो करनी ही थी, साथ ही कुछ पैसों का जुगाड़ भी करना था, तो परिवहन डिपो में वो बन गए चेकिंग क्लर्क और तब उनकी तनख्वाह थी सिर्फ 120 रुपए। फिल्मों में काम करने की तमन्ना थी और चूंकि पहले से एक बलराज फिल्मी दुनिया में मौजूद थे जिनका नाम बलराज साहनी था, इसलिए बलराज दत्त ने अपना नाम बदलकर सुनील दत्त रख लिया और अब किस्मत आजमाने का सिलसिला शुरू हुआ। वो भटकते रहे मुंबई की सड़कों पर और स्टूडियो स्टूडियो जाकर काम मांगते रहे। इन्हीं दिनों में सुनील दत्त ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से स्नातक कर लिया। अब सवाल ये था कि आगे क्या किया जाए। ये वो दौर था जब रेडियो सीलोन को एक उद्घोषक की जरूरत थी, 25 रुपए प्रति इंटरव्यू के हिसाब से। बलराज दत्त रेडियो सीलोन के लिए फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यू किया करते थे। इत्तेफाक की बात है कि बलराज दत्त ने रेडियो सीलोन के लिए सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस का भी इंटरव्यू किया था। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर यही नरगिस उनकी जीवन संगिनी बन जाएंगी। इस कहानी पर हम बाद में आएंगे, पहले चलते हैं सन 1955 की तरफ। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, सुनील दत्त रेडियो सीलोन के लिए कई नामी फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यूज लिया करते और फिल्मी हस्तियां कहती कि भाई तुम्हारे पास पर्सनालिटी है, टैलेंट है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करते। और इसी तरह की बात रमेश सहगल ने बोली और सुनील दत्त ने हाँ कर दी। इस तरह से सन 1955 में सुनील दत्त फिल्मी पर्दे पर नजर आए। फिल्म थी रेलवे प्लेटफॉर्म।

जिसकी तलाश में हम निकले थे। सुनील दत्त ने मदर इंडिया में बिरजू का किरदार निभाया, जो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करते हुए डाकू बन जाता है और आखिरकार उसकी अपनी ही माँ उसका कत्ल कर देती है, क्योंकि वो उससे सहमत नहीं है, उसके गलत रास्ते से सहमत नहीं है। आइए अब जरा चलते हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना की तरफ। बिलीमोरा में मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग चल रही थी। महबूब खान अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म के सेट पर आग लगने वाला दृश्य फिल्मा रहे थे। सेट पर लगी आग अचानक बेकाबू हो गई। जानी मानी अभिनेत्री नरगिस, जो फिल्म में बिरजू की माँ का किरदार निभा रही थी, आग की लपटों से गिर गईं। सुनील दत्त ने आव देखा न ताव, वो आग की लपटों में कूद पड़े, भागे और नरगिस को बाहर ले आए। इस पूरी प्रक्रिया में सुनील दत्त बुरी तरह से घायल हो गए। कई दिनों तक अस्पताल में उनका इलाज किया गया। सुनील दत्त ने जिस तरह से अपनी जान दांव पर लगाई और नरगिस की जान बचाई, बस इस एक बात ने उनका दिल जीत लिया। 11 मार्च 1958 सुनील दत्त और नरगिस ने विवाह कर लिया।

दरअसल ये वो दौर था जबकि सुनील दत्त अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे। रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद उनके पास ज्यादा काम नहीं था। जो फिल्में मिली उनमें से कुछ ठीक ठाक चली और कुछ ठीक ठाक भी नहीं चल पाई। बस यही दौर था जब जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान ने उन्हें पेशकश की मदर इंडिया में बिरजू का रोल करने की। मदर इंडिया महबूब खान की फिल्म औरत का रीमेक थी और एक ऐसे दौर में आ रही थी जब आजाद भारत के 10 साल पूरे हो चुके थे और देश नव निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा था। कहीं ना कहीं थोड़ा असंतोष भी था कि ये वो मंजिल नहीं।

सुनील दत्त और नरगिस का प्यार बेमिसाल था। सुनील दत्त नरगिस को पिया कहकर पुकारते थे। उस जमाने में सुनील दत्त बहुत सफर करते और नरगिस और सुनील दत्त एक दूसरे को प्यार भरे खत लिखते। सुनील दत्त इन खतों में नरगिस को मर्लिन मुनरो कहकर पुकारते और इन खतों में नरगिस दत्त सुनील दत्त को लिखती, डियर एल्विस प्रेस्ले। ये था इन दोनों का प्यार। सुनील दत्त के करियर के कई चरण हैं। आइए उस दौर की बात करते हैं जब बीआर चोपड़ा प्रोडक्शंस के साथ सुनील दत्त ने एक के बाद एक तीन बड़ी फिल्में की। साल 1963 गुमराह,

0: सुनील दत्त ने तरह तरह की भूमिकाएं निभाई हैं और सन 1967 में फिल्म आई पड़ोसन। इस फिल्म में सुनील दत्त की बिल्कुल अलग भूमिका थी। इस कालजयी कॉमेडी फिल्म में हम सुनील दत्त के अभिनय को भला कैसे भूल सकते हैं। अभी भी ऐसा लगता है मानो सुनील दत्त पर्दे पर ये गाना गा रहे हैं।
1: तुमसे

0: सन 1967 में आई थी ज्योति स्वरूप के निर्देशन वाली फिल्म पड़ोसन, किशोर कुमार, मुकरी, सायरा बानू और सुनील दत्त के अभिनय वाली इस कालजयी कॉमेडी फिल्म को, इसके संवादों और इसके गानों को आप भला कभी भूल पाएंगे?
1: बोला, तुम गाने में हमको हराया,
2: हाँ,
1: तुम फाइटिंग में हमको हरा सकता क्या?
2: मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ डालूंगा।
1: तुम खोपड़ी तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: तुम हमारा खोपड़ी तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: तुम तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: पीछे काय को झगड़ा करना जी? आमा बोला, आपस में झगड़ा अच्छा नहीं जी।
2: तुम ठीक कहते हो।
1: देखो, एक चौकरा एक चौकरे गार्डन में घूमता है, तो फिर कबाब में अड्डी काय को?
2: अबे चुप कर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
1: बोला आगे नहीं आना।
2: हम आएगा।
1: आगे नहीं आना।
2: आएगा।
1: तुम आगे आएगा?
2: आएगा।
1: तुम आएगा?
2: आएगा।
1: अच्छा, तो फिर हम पीछे जाएंगे जी।
2: अबे तुम कैसे पीछे जाता है, ये कसर का बदन है, हम तुम्हें पीछे भेजेगा। जा मार।
1: यो यो यो यो यो। अयो अयो।
0: सन 1965 फिल्म

सन 1958 में फिल्म सुजाता आई। बिमल रॉय की इस फिल्म में टेलीफोन हाथ में पकड़े हैं सुनील दत्त और तार के दूसरे सिरे पर नूतन है जो उनसे ये गाना सुन रही है।

0: एक दौर ऐसा था जब सुनील दत्त के पास बहुत फिल्में नहीं थी। तब आर के नैयर और साधना ने जोर दिया और सुनील दत्त 1974 में फिल्म गीता मेरा नाम में बतौर खलनायक नजर आए। सन 1963 में सुनील दत्त ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया अजंता आर्ट्स और फिल्मों का निर्माण शुरू किया। आर के नैयर ने उनके बैनर तले फिल्म बनाई ये रास्ते हैं प्यार के।
1: खामोशियां ये

इसके बाद सुनील दत्त प्रोडक्शंस की एक यादगार फिल्म आई यादें। इसके जरिए सुनील दत्त ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। यादें इसलिए अनमोल है क्योंकि ये एक ही कलाकार और एक ही कमरे में फिल्माई गई फिल्म है। सन 1963 का साल सुनील दत्त के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। इस साल एक के बाद एक तीन फिल्में आई थीं। ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो और मन का मीत, जो उन्होंने अपने छोटे भाई सोम दत्त को लॉन्च करने के लिए बनाई थी।

71 में सुनील दत्त ने एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया। ये वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो मूक है। सन 1971 की यह फिल्म है रेशमा और शेरा। संगीत जयदेव।

सन 1973 में सुनील दत्त के अभिनय वाली फिल्म आई हीरा। सन 1974 प्राण जाए पर वचन न जाए। सन 1976 नागिन। सन 1979 जानी दुश्मन। और सन 1980 में आई रमेश सिप्पी के निर्देशन वाली फिल्म शान। सन 1980 वो साल था जब सुनील दत्त ने अपने होनहार बेटे संजय दत्त को फिल्मी दुनिया में उतारा और एक फिल्म का निर्माण किया रॉकी। 26 अप्रैल 1981 को रिलीज हुई फिल्म रॉकी, जिसके जरिए संजय दत्त बन गए हीरो। ये वो दिन थे जब नरगिस कैंसर से जूझ रही थी। इधर रॉकी फिल्म रिलीज हुई, उधर 3 मई को संजय दत्त की मां नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनील दत्त बुरी तरह से टूट गए।

0: अपने जीवन के इस दुख को सुनील दत्त ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की और इसके जरिए कैंसर पीड़ितों के कल्याण के लिए आजीवन काम करते रहे। सुनील दत्त के फिल्मों के निर्माण का सिलसिला लगातार जारी रहा। इस बीच वो बाहर की भी कुछ फिल्में करते रहे। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सुनील दत्त ने कुछ पंजाबी धार्मिक फिल्मों में भी काम किया था, जैसे सन 1973 में आई थी मन जीते जगजीत, सन 1974 में आई दुख भंजन तेरा नाम और सन 1977 में आई सत श्री अकाल। आइए अब बात कर ली जाए सुनील दत्त को मिले पुरस्कारों की। सन 1963 में फिल्म मुझे जीने दो के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1964 फिल्म यादें को मिला सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1965 फिल्म खानदान के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1995 में फिल्म संसार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए फिल्म फेयर ने सुनील दत्त को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया।
1: एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।
0: 90 के दशक में सुनील दत्त की दो बड़ी फिल्में आईं। सन 1992 में आई परंपरा, सन 1993 में आई क्षत्रिय। सुनील दत्त और संजय दत्त बहुत कम फिल्मों में एक साथ नजर आए। फिल्म रॉकी में दोनों ने काम किया लेकिन दोनों का एक साथ कोई सीन नहीं था। पर आगे चलकर सन 2007 में आई राजकुमार हीरानी के निर्देशन वाली फिल्म मुन्ना भाई MBBS, ये वो फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त एक ही सीन में नजर आते हैं। सुनील दत्त सक्रिय राजनीति में भी चले गए थे और वहां उन्होंने जमकर काम किया। 25 मई 2005 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में सुनील दत्त का निधन हो गया। संसार ने एक बेहतरीन अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और उससे भी बढ़कर एक बेहतरीन शख्स को खो दिया। एक ऐसा शख्स

की जिंदगी जद्दोजहद का एक अनंत सिलसिला थी। वो किसी भी मुसीबत से हारे नहीं, डटे रहे और अपने निजी जिंदगी की मुसीबतों के बावजूद समाज की बेहतरी के लिए लगे रहे। सुनील दत्त को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 10 बजने वाले हैं जिले की चिट्ठी। अब हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है डिंडौरी जिले की चिट्ठी। आलेख लक्ष्मी नारायण अवधिया, वाचन स्वर दीपा सिंह। डिंडौरी जिले में इस समय अन्य शहरों की तरह ही अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक पहुंच गया है, जो अभी तक का सर्वाधिक तापमान है। भीषण गर्मी का असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। दिन में बाजार में सन्नाटा पसरा है। लू के प्रभाव से बचने के लिए जरूरी सलाह भी चिकित्सक दे रहे हैं। गर्मी के चलते कई गाँव में पेयजल की भी समस्या बन गई है। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के व्यापक प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के उद्देश्य से जनगणना कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश द्वारा एलईडी प्रचार रथ रवाना किया गया है। ये प्रचार रथ मंडला बालाघाट होते हुए डिंडौरी जिले पहुंचा, जहां सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। एलईडी प्रचार रथ जिले के 7 विकास खंडों में भ्रमण कर गांव-गांव पहुंचकर आमजन को जनगणना 2027 के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी देगा और जनमानस में जनगणना के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास करेगा। प्रचार रथ के माध्यम से प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित की जाएगी, जिससे नागरिकों को जनगणना प्रक्रिया को समझने और उसमें सहभागिता सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। जिला प्रशासन डिंडौरी के सहयोग से जिले की 23 ग्रामीण नलजल योजनाओं का जीर्णोद्धार किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 90,39,000 रूपये की राशि हस्तांतरित कर महत्वपूर्ण पहल की है। मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत किसानों तक नवीन और वैज्ञानिक कृषि तकनीकों की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न विकास खंडों में किसान रथ का 10 दिवसीय संचालन प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के माध्यम से किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं, उन्नत खेती तकनीकों, फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती, कृषि यंत्रीकरण संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। किसान रथ के माध्यम से किसानों को ई विकास से उर्वरक वितरण व्यवस्था, खरीफ फसल हेतु बीज उपचार, मृदा परीक्षण, फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती, फसल सुरक्षा पराली प्रबंधन, कृषि अभियांत्रिकी द्वारा खरीफ पूर्व खेतों के समतलीकरण आदि विषयों पर जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने, सोना नहीं खरीदने सहित अन्य अपील को आमजन ने सकारात्मक तौर पर लिया है। अब लोग वाहनों का उपयोग कम कर रहे हैं, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी

भी साइकिल स्कूटी सहित अन्य दो पहिया वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। कार्यालयों में वाहनों की कतार नहीं लगती है, साथ ही अधिकांश बैठकें भी वर्चुअल माध्यम से की जा रही हैं। इसी तरह बाजार में भी ज्वेलर्स की दुकानों में भीड़ कम हो गई है। व्यापारी भी प्रधानमंत्री की अपील में सहयोग कर रहे हैं। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी अंजू पवन भदुरिया द्वारा पेट्रोल और डीजल की बचत, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के सभी विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और शासकीय वाहन चालकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि ऊर्जा संरक्षण और वैश्विक परिदृश्य के दृष्टिगत शासकीय वाहनों का उपयोग केवल शासकीय कार्यों के लिए किया जाए। अनावश्यक वाहन संचालन और बिना अनुमति वाहन उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा जिले में 5 मई से 5 जून तक ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण आरोह 2026 के अंतर्गत मां नर्मदा नदी तट पर विशेष संडे एक्टिविटी में डांस एरोबिक्स का आयोजन किया गया। इस मौके पर एरोबिक्स, योग, सामूहिक फिटनेस गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के साथ साथ उनके परिजनों, स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी विकासखंड मुख्यालयों में भी ग्रीष्मकालीन खेल प्रतियोगिताएं संचालित की जा रही है। डिंडौरी में पिछले दिनों मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत विभिन्न विकासखंडों में समारोह पूर्वक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 750 से अधिक जोड़ों का विवाह रीति रिवाज से संपन्न कराया गया। जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने विवाह समारोह में शामिल होकर वर वधुओं को शुभकामनाएं दी। जल संचय जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत जिले में कुल 5,52,638 जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। कृषि विभाग, वन विभाग, उद्यानिकी, स्वास्थ्य विभाग, एनजीओ प्रदान, महिला और बाल विकास, पीएचई, जल संसाधन विभाग, इन सभी विभागों के समन्वय से वर्षा के पानी को सहेजने के लिए लाखों रिचार्ज पिट, सोखता पिट बनाए जा रहे हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आपने सुनी डिंडोरी जिले की चिट्ठी, आलेख लक्ष्मी नारायण अवधिया, वाचिका दीपा सिंह। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा था।
1: डिंडोरी जिले की चिट्ठी अभी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित कर रहे थे। FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। इस समय सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
3: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
3: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
3: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
3: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
3: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है
2: जी।
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया।

0: तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा। अब आपकी बारी।
1: जी अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से,
0: जी
1: जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था।
0: जी
1: बाद में यह शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
0: जी रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3,000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
1: जी
0: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है,
1: जैसे
0: जैसे लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
1: जी
0: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
1: जी इसीलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
0: जी
1: अब विमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास, जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे,
0: जी
1: विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
0: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो यह है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहां तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
1: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
0: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
1: हाँ वो क्या?
0: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई, जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
1: ये घटना क्या थी?
0: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
1: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
0: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं।
1: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
1: जी
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है। मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से

0: मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
1: बेटा अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
0: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
1: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
0: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
1: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
2: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
1: मश्क।
3: होशियार,
1: समझदार।
3: पेंसिल तराश,
1: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
3: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
1: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
3: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
4: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
5: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
6: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे?
7: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद।

0: में।
1: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
0: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
1: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
2: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
3: क्या बात है,
2: सुनकर ही जोश आ गया।
3: हाँ
2: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो, और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
3: युद्ध में तो जाने ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा, या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
4: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया, और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे, और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था।

0: 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया, कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन 2, दिन 19 जून 1999। स्थान 0.5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे 2 हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल 1 रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
3: 1 घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
2: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 बजे सूर्योदय हो जाएगा।

0: उनके पास केवल एक घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया।
1: हमला करो दुर्गा माता की।
0: और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। पॉइंट 5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
2: कैप्टन विक्रम, पॉइंट 5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
3: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
4: क्या बात कही है?
2: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
3: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: और अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
3: चलो संभल कर
1: अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
2: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
2: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
2: जी सर।
4: हमला करो दुर्गा माता की।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नहीं, तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
5: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जा।
4: मैं जा रहा हूं।
5: साहब जी।
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक

फिर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।

0: से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजयी तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम NCERT FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। दिन के 10:35 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी जगत।

स्वागत है सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम नारी जगत में। आज आपके साथ है आपकी सखी शीतल बाहेती। स्वीकार करें हमारा नमस्कार। सखियों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कल यानी 28 मई को ईद उल जुहा यानी बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। सखियों, इस्लाम धर्म में बकरीद को प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार बकरीद का त्यौहार 12वें महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ये उत्सव पैगंबर इब्राहिम द्वारा किए जाने वाले सर्वोच्च बलिदान को याद करके मनाया जाता है। सखियों, इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार एक बार अल्लाह ने इब्राहिम की परीक्षा लेने की सोची और उन्हें अपने सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने के लिए कहा। तब वे अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। उन्हीं की याद में ये त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार त्याग, बलिदान और मानवता का संदेश देता है। और सखियों, अब बात करते हैं कुछ हमारे घर परिवार के बारे में। सखियों, हम जानते हैं कि हमारी सभी सखियां अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां बखूबी निभाना जानती है। घर में सारी चीजों के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है। सखियों, एक और प्रबंधन जरूरी है जिससे हमारा सहयोग पर्यावरण संरक्षण में भी हो और हमारे घर के सभी सदस्य स्वस्थ और खुशहाल रहें, वो है अपशिष्ट प्रबंधन। इसके बहुत सारे लाभ भी हैं। जी हाँ सखियों, घर से निकलने वाले कचरे के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। सखियों, अपने घर में कम से कम 2 डस्टबिन रखें, एक गीले कचरे के लिए और एक सूखे कचरे के लिए। गीला कचरा यानी फलों और सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, जूठन, चाय की पत्तियाँ, फूल, ये सब अलग रखें। और सूखा कचरा यानी प्लास्टिक की थैलियाँ, बोतलें, डिब्बे, कांच, धातु, कागज और गत्ते अलग डस्टबिन में डालें। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम करें। जूट या कपड़े या फिर पुरानी जींस से बने थैले का उपयोग जरूर करें। पुरानी बोतल, जार, डिब्बे यदि सखियों घर में दोबारा उपयोग हो सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो प्लास्टिक, कांच, धातु की वस्तुएं रिसाइकिलिंग के लिए कबाड़ी को या नगर निगम की गाड़ी में दे दीजिए। सखियों, दवाइयों के रैपर, बैटरी, बल्ब या केमिकल वाली बोतलों को सामान्य कचरे में ना मिलाएं, इन्हें अलग पैक करके रखें और स्थानीय निकाय और नगर निगम द्वारा चलाई जा रही कचरा संग्रहण गाड़ियों में इन्हें हम दे

0: सकते हैं। सखियों, गीले कचरे से घर में ही जैविक खाद बनाकर अपने घर के बगीचे में पेड़ पौधे में हम उपयोग कर सकते हैं। सखियों, उचित अपशिष्ट प्रबंधन से कचरा नदियों, जमीन या हवा में नहीं पहुंचता, जिससे कि वायु, जल और मृदा प्रदूषण भी रुकता है, और कचरा जलाने से जो हानिकारक गैसें निकलती है उनसे भी हम बच जाते हैं। साथ ही सखियों, खुले में पड़े कचरे से मच्छर, मक्खियाँ और बैक्टीरिया पनपते हैं, और कचरे के सही निपटान से डेंगू, मलेरिया और हैजा जैसी संक्रामक बीमारियों का खतरा भी हमारे ऐसा करने से कम हो जाता है। ई कचरा और मेडिकल वेस्ट को भी अलग करके हम हानिकारक रसायनों से भी बचते हैं। और सखियों, जब हम अभी बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के बारे में, तो आइए इसी संदर्भ में सुनते हैं भेंटवार्ता, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का पर्यावरण पर प्रभाव। हमने बातचीत की है हमारी सखी संगीता वर्मा से, जो कि पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए चलाए गए मिशन ग्रीन का हिस्सा है। तो आइए सुनते हैं
1: भेंटवार्ता। देख रहे हैं कि पहले की अपेक्षा अब तापमान में और वृद्धि होती जा रही है। अब ये मौसमी परिवर्तन नहीं बल्कि मानव के लिए गंभीर चेतावनी बनती जा रही है। सखियों, इन सब का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और हम अपने स्तर पर क्या कोशिश कर सकते हैं, इसी विषय पर हमने बातचीत की है हमारी सखी संगीता वर्मा से, जो कि मिशन ग्रीन से भी जुड़ी है। मैडम नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद शीतल।
1: मैडम, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जैसे अभी हमने बात की कि तापमान बढ़ते जा रहा है, जैसे कि हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, तो ये क्या है, इसे थोड़ा सा विस्तार से हमारी सखियों को बताइए।
2: शीतल, जैसे कि तुम्हारा नाम शीतल है
1: जी,
2: और उसका विपरीत परिस्थिति को हम जानेंगे कि धरती भी शीतल रहना चाहती है
1: जी,
2: लेकिन हम अपने विपरीत परिस्थितियों के कारण, जो हमारे द्वारा, मनुष्यों के द्वारा निर्मित की गई है, उसके कारण धरती का गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे सरल शब्दों में, जिससे मौसम चक्र और सूर्य की किरणों पृथ्वी पर जो आती है उसमें पृथ्वी गर्म होती है और उष्मा जो है धरती की, पानी जैसे वेपोरेट होकर ऊपर जाता है, उसी तरह से उष्मा भी ऊपर की ओर जाती है और अंतरिक्ष की तरफ लौटती थी, तो ये प्राकृतिक रूप था। लेकिन हम जब आधुनिकता की अंधी दौड़ में चलते जा रहे हैं, कारखानों से, वाहनों से, आधुनिक संसाधनों से, इनसे निकलने वाली हानिकारक गैसों के कारण एक मोटी परत जो है वायुमंडल के ऊपर जमती जा रही, जो ये जो उष्मा है उसको अंतरिक्ष तक, अंतरिक्ष में विलीन नहीं होने दे रही है। इसके कारण ही ये जो ओजोन परत पर प्रभाव पड़ रहा है और हमारा दिनों दिन इतना तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, यही ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे आज के परिदृश्य में
1: जी। बहुत ही सरल शब्दों में दीदी आपने बताया ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। अब ये बताइए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, धरती गर्म हो रही है तो जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है,
2: बिल्कुल,
1: तो इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?
2: पर्यावरण तो प्रभाव पड़ ही रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा पर्यावरण के साथ साथ मानव जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है। जैसे देख रहे हैं हम कि मौसम का पैटर्न बदल रहा है,
1: हाँ।
2: गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी, बारिश में गर्मी, मतलब अब ये हो गया है कि मौसम जैसे तीन तीन महीने, चार चार महीने के पुराने समय में कहा जाता था कि अलग ऋतुओं का अलग महत्व था, लेकिन अब वो पैटर्न नहीं रहा। उसके अलावा भी इस पैटर्न के कारण ही हमारी सब खेती बाड़ी प्रभावित हो रही है, इसी कारण से हमारे भोजन प्रभावित हो रहा है और इसी कारण से हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। एक समय ये था कि कितनी भी गर्मी होती थी लेकिन एक की फसल बोलते हैं गर्मी में की जाती थी, लेकिन अब आप किसान खेत में पैर रखना बिल्कुल मुश्किल जा रहा है
1: जी।
2: क्योंकि अगर इस तरह से तापमान बढ़ोतरी रहेगी, 47 डिग्री तक नॉर्मल टेम्परेचर माना जा रहा है, और भारत जो है, पूरे विश्व में भारत के जो कुछ शहर है वो बड़ी मात्रा में तेजी से तापमान की तरफ बढ़ रहे हैं
1: जी।
2: तो ये बड़ा भयानक सच है जिसको हमको स्वीकारना पड़ेगा कि आए दिन जो जलवायु परिवर्तन से हमारे पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ रहा है, इसी कारण से ग्लेशियर टूट रहे हैं, बर्फ पिघल रही है, भूस्खलन हो रहा है, मौसम में बदलाव तो अभी हमने बात की है,
1: वो
2: तापमान जो हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, क्योंकि अब वो पर्यावरण, प्रकृति भी सहन नहीं कर पा रही इस तापमान को, तो वो अपना रूप दिखाती है और बड़ा भयावह रूप के रूप में हम देखते हैं कि आसपास में आग लग जाना और आग लग जाने के कारण कई जनहानि होना, जानवरों का मर जाना, तो ये कई जलवायु परिवर्तन के कारण जो है उसका पर्यावरण पर प्रभाव हम देख रहे हैं शीतल
1: जी। और मानव स्वास्थ्य पे तो पड़ ही रहा है प्रभाव,
2: बिल्कुल,
1: जो हम हीट वेव के अभी केस देख रहे हैं गर्मी में और बारिश में, जैसे कभी बेमौसम बारिश हो रही है, कभी बाढ़ आ रही है, तरह की मौसमी बीमारियां होना।
2: अभी कल परसों के पेपर में ही पढ़ा होगा आपने कि अचानक ही तेज आंधी चलने लगी और केले की फसल पूरी खराब हो गई। अब इतनी मेहनत की हुई है और ना गर्मी है ना बारिश का मौसम है और एकदम से आंधी हवा चल

0: और आंधी हवा के कारण से फसलों का नष्ट होना, तो ये मानव जीवन पे इतना ज्यादा नुकसानदेह प्रभाव डाल रहा है कि आने वाले समय में बहुत विकट परिस्थितियां होगी, ये हमें समझना चाहिए।
1: संगीता जी, बढ़ते तापमान के क्या क्या कारण हो सकते हैं?
0: शीतल, ये वाला तो ऐसा हो गया कि सूरज को दिया दिखाने वाला। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो उत्पादन हो रहा है बिजली का, और उसका हम भरपूर दुरुपयोग कर रहे हैं।
1: जी,
0: अत्यधिक बिजली की खपत जो है पिछले 10 सालों में बढ़ते बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई है कि लोग उसके विकल्प ढूंढने लग गए। अब घरों में जो है एसी फ्रिज हर घर में मिलेगा,
1: हर घर में मिलेगा।
0: अभी चूंकि मैंने जनगणना भी की, मैं एक शिक्षिका हूँ, तो मैंने जब वहां पर देखा कि तो मेरे को सभी घरों में ये सब चीजें अवेलेबल मिली, और देखा कि वहां पर मीटर है, कहीं कहीं नहीं भी है, तो नेसेसरी या अननेसेसरी अत्यधिक बिजली का जो खपत हो रही है वो बढ़ते तापमान में बहुत कारगर साबित हो रही है। और उसके साथ साथ में हम देखते हैं कि हम तो इन सब से ठंडक का आनंद ले रहे हैं, लेकिन एसी और फ्रिज के पास जब हम जाते हैं तो वहां पर आप देखते हो कितनी हीट होती है।
1: जी।
0: तो अंदर घर के अंदर हमारे लिए ठंडक है, लेकिन वो पर्यावरण के लिए गर्माहट
1: दे रहे हैं।
0: और ये जो हाइड्रोक्लोरोकार्बन का उपयोग जो होता है इसमें, और देखते हैं हम कि हमारे कुछ समय में 2 साल में साल भर में कहीं कहीं जगह एसी की जो है गैस लीक हो जाती है, वो कभी हमने ध्यान नहीं दिया कि वो एसी की गैस लीक होके कहाँ जाती है, ये पर्यावरण में ही विलीन हो रही है। और कई बड़े बड़े उद्योगों में तो 50-50 एसी लगे हुए हैं, आप उनका तापमान देखो उस जगह का, उस जगह का तापमान आपको 50 से ऊपर मिलेगा, और वहीं पर हम देखते हैं कि जहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं वहां पर तापमान बहुत कम है। तो ये सब हमारे सामने है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, जाल में नहीं फंसना चाहिए। इसी तरह से हम अगर चलते रहे तो बढ़ते तापमान के तहत ऐसा हो जाएगा कि हम घर से बाहर निकले और हमारे हाथों में अभी तो सिर्फ सनबर्न हो रहा है, छाले होने लग जाएंगे, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है वो भी एक समय तक तापमान झेल पाता है। आज हीट स्ट्रोक तक है, लेकिन तब कई चमड़ी की बीमारियां का सामना आज भी कर रहे हैं हम, घमोरियों के रूप में तो हमने देखा ही है, लेकिन और भी ज्यादा बड़ा स्तर पर जैसे
1: तो रातें भी गर्म हो रही है, पहले के समय में कुछ सालों पहले तक दिन में गर्मी लगती थी,
0: उमस भरी रातें ठंडी थी, उमस भरी रातें और गर्म बहुत रातें, और गर्म हवा रात के 9 बजे तक चल रही है। अब अगर आप गर्मी की छुट्टियों में बच्चे नाना नानी के यहाँ जाते हैं कभी कभार, तो आप बाहर नहीं ले जा सकते,
1: नहीं
0: आपके 6 बजे बाद भी वहाँ लू लगने का डर है उनको।
1: बिल्कुल।
0: और इसी तरह से हम देखते हैं कि ये जो बढ़ते तापमान में हमारे द्वारा ही कुछ गलतियां की गई है, और अधिक वाहनों का उपयोग भी इसमें एक कारण है, मुख्य कारण है कि ये चीजें हमारे तापमान को दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं। कारखाने वगैरह तो है ही हैं भाई, वो तो अब जो खपत के ऊपर उत्पादन है वो तो जो निश्चित है तो होगा ही होगा, लेकिन अगर हम आम मनुष्य अगर ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण को, ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण के हितैषी कारकों को अपनाएंगे तो निश्चित ही हम तापमान को संभाल पाएंगे।
1: जैसा कि आपने वृक्षारोपण की बात की, तो हम ये जानना चाहेंगे कि हम अपने स्तर पर और कौन कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे कि पर्यावरण संरक्षण में हमारा कुछ थोड़ा सा योगदान हो जाए।
0: बिल्कुल शीतल, हमारी धरती को शीतल करना है सबसे पहला तो हमारा मंत्र यही होगा।
1: जी,
0: तो हमने अपने स्तर पर ये करना है कि हम महिलाएं हैं
1: जी,
0: तो जब भी कोई एसी या फ्रिज खरीदने जाते हैं तो हम ये नहीं देखें कि सस्ता होना, हमको ये देखना है कि उसकी रेटिंग क्या है
1: जी,
0: उसकी बिजली की खपत क्या है। वहां से एक छोटी छोटी शुरुआतों से हम जब चालू करेंगे तो निश्चित हम उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे कि पर्यावरण के लिए हम कुछ कर रहे हैं
1: जी।
0: फिर दूसरा है हम वाहनों का, जैसे अभी एक मैसेज चला था कि भाई सामूहिक वाहनों का उपयोग किया जाए, सार्वजनिक रूप से सभी लोग इकट्ठा रहे, पेट्रोल डीजल की खपत की कम की जाए, क्योंकि साधन सीमित संसाधन है और हमने उनको असीमित मान लिया, लेकिन असीमित धरती पर सब कुछ है लेकिन सब

0: जब आप अपनी हाइट का हो जाए
1: जी,
0: अपने जन्मदिवस पे पौधा लगाएं, मात्र शक्तियां चाहे तो जल का सदुपयोग करें। जैसे हमारे घर में अधिकतर घरों में आरओ लग गया है, उस आरओ से निकलने वाला पानी इतना ज्यादा मात्रा में वेस्टेज जाता है, तो उस पानी का उपयोग पौधों में डालने के लिए करें या बगीचे में छोड़ें, इस तरह से भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम प्लास्टिक को रोकें, क्योंकि धरती पर जो प्लास्टिक जितनी मात्रा में फैल रहा है वो इतने विषैले पदार्थ कर रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग में प्लास्टिक का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसके द्वारा धरती बंजर हो रही है, और धरती बंजर होगी तो हरियाली नहीं रहेगी, और हरियाली नहीं रहेगी तो फिर ग्लोबल वार्मिंग।
1: दीदी, जैसे कि हमने हमारी सखियों को भी बताया कि आप मिशन ग्रीन से भी जुड़े हैं, तो मिशन ग्रीन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा, और आपका इस अभियान से जुड़ के क्या दायित्व आपको मिले हुए?
0: देखिए, मिशन ग्रीन एक ऐसा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एकत्रित जुनूनी लोग थे, मतलब उसमें महिलाएं भी, बच्चे भी, बुजुर्ग भी, युवा भी, सभी शामिल हुए। 21 मई को लगभग 2019 को हम लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू एक आह्वान किया कि भाई इतनी गर्मी तेज है, इस बीच में पंछी गिरते दिख रहे थे, तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ किया जाए। हम सब एकत्रित हुए में और वहाँ पर हमने एक बैठक की, उस बैठक के तौर पर कहा कि भाई मई है, अभी तो पौधे लगा नहीं सकते, लेकिन जो पौधे हैं जिनको पानी की जरूरत है हम वो देंगे। अपने अस्पताल के सामने के डिवाइडर में पौधे लगाए। आज हम एक समूह के रूप में सुबह 6 से 8 में सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण तो करते ही हैं, लेकिन संरक्षण भी करते हैं। जहाँ कहीं पेड़ कट रहा होता है उन्हें विस्थापन में भी मददगार करते हैं। हमारे पास इतने संसाधन तो नहीं है, क्योंकि हम कोई एक एनजीओ नहीं है, कोई संस्था नहीं है, वृक्ष मित्र कहलाते हैं हम सभी, और वृक्ष मित्र मिलकर के ही अपने स्वयं के खर्चों से या वृक्ष मित्रों के मिलजुल करके हम जल संरक्षण करते हैं। जैसे कि हमने पद्म कुंड की सफाई की,
1: अच्छा,
0: उसकी देखरेख की जिम्मेदारी ली, उसके बाद में डिवाइडरों में पौधारोपण किया, उसकी देखरेख की जिम्मेदारी ली, और कई जगह बगीचे जो वीरान पड़े थे उन जगहों पे, जैसे, और जहाँ पर भी कॉलोनी वाले जो हमको आह्वान करते कि आप आइए, तो हम सवेरे के समय में जाते हैं। अगर आपकी कॉलोनी में 10 से 15 पौधे आपको लगवाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है शीतल, आपकी इच्छा है पौधा लगाने की, लेकिन आप सोचते गड्ढा कौन करेगा,
1: हाँ,
0: गेती नहीं है, फावड़ा नहीं है, कैसे लगाएंगे,
1: हाँ,
0: तो इस संसाधनों की कमी से
1: जी।
0: तो हम क्या कहते हैं कि आप कॉलोनी मिलकर के डिसाइड कर लो कि कितने पौधे लगाना, हम आ जाएंगे, हम आपसे कोई व्यय नहीं लेंगे। अगर आप कहोगे तो हम पौधा भी ले आएंगे, लेकिन संरक्षण की जिम्मेदारी आपकी, और हम उनसे अपडेट लेते हैं। इसी तरह हमने श्राद्ध पक्ष में सिंधी कॉलोनी में पौधे लगाए, वो ऐसे लगाए कि आप अपने पितृजों की स्मृति में लगाएं अपने घर के सामने, और उनकी देखभाल करें। तो इस तरह से हम धीरे धीरे करते लोगों को जागृत कर रहे हैं। और अभी फिलहाल में हम दादाजी कॉलेज जो है वहाँ पर 151 त्रिवेणियाँ लगाई है। त्रिवेणी से रिलेटेड मतलब ये है कि बरगद, नीम और पीपल तीनों एक साथ में, और ये कार्यक्रम पर्यावरण गतिविधि के साथ में किया है। और यहाँ पर 6.5 एकड़ में वन विभाग की जो जमीन है उसमें 151 त्रिवेणी रोपित की गई है।
1: अच्छा।
0: उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं, और आने वाले समय में हमारी एक यही है कि ये जो एक सघन वन के रूप में बढ़े और खंडवा की वायु को शुद्ध करें। और चूंकि हमारा जो पूरा क्षेत्र है निमाड़ कहलाता था, नीम की आड़, तो नीम की आड़ के रूप में पुनः विकसित हो।
1: ये तो वाकई पर्यावरण संरक्षण संदर्भ में बहुत ही सराहनीय कार्य है आपका। अब आप हमारी सखियां जो रेडियो सुन रही हैं इस वक्त, उन्हें अगर कोई संदेश देना चाहें तो दे सकती हैं।
0: सखियों के लिए मेरा एक संदेश है कि जो प्राचीन कुंड है
1: जी,
0: उनको संरक्षण करने की जिम्मेदारी हमारी है
1: जी।
0: और इनके बड़ा प्राचीन महत्व भी है। भीम कुंड है, सूरज कुंड है, पद्म कुंड है, ये रामेश्वर कुंड है। आज हमने उनको क्या करा है कि जब भी हमको कोई विसर्जन सामग्री डालना होती है तो हम वहाँ तुरंत भेजते हैं, आप बंद करो ये सब, आप अपने घर में विसर्जन से सामग्री से खाद बनाएं और उन खादों को अपने घर में ही पौधों में डालें। अगर आपके घर पौधे नहीं तो आपके पास बगीचा होगा उसमें डालें। तो इस तरह से क्या होगा कि आप एक चीज को फिर से पुनः उपयोग कर सकेंगे
1: जी।
0: और साथ साथ में पर्यावरण संरक्षण का भी एक योगदान दे सकेंगे। साथ साथ में हमारे जितने भी पूजनीय पौधे हैं, पूजनीय पौधों में औदुम्बर बोलते हैं, भगवान दत्त का पौधा माना जाता है, त्रिवेणी बोलते हैं, पीपल, आजकल कई पंडित जी लोग बताते हैं ना कि नहीं आप पीपल में पानी दें, शमी का पौधा बताएं, बिलपत्र का बड़ा महत्व बताया है। तो ये सब जो भी पूजनीय पौधे हैं इनको आप लगाएं, और इनको लगा करके इनका संरक्षण करें, और साथ साथ आप अपने घरों में माँ की बगिया सजाएं। आप अच्छे से अच्छा गिलकी, लौकी, इनकी उपज भी कर सकते हैं, और कोई बहुत ज्यादा उसके लिए उपाय नहीं करना होता है, छोटी छोटी जगहों में यह सब हो जाता है। मात्र शक्ति से कहना चाहूंगी, पानी बचाएं, बिजली बचाएं, प्लास्टिक को कहें बाय बाय। अपने बच्चों को प्रकृति संरक्षण के संस्कार दें। आप अपने बच्चे के जन्म

0: स्वयं एक पौधा लगाएं, साथ साथ उस बच्चे के हर जन्मदिन पर एक पौधा लगाएं और उसको जिम्मेदारी दें कि बेटा इस पे पानी डालना है। और बच्चे वही सीखते हैं, जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मैंने मेरे जितने बच्चों को सिखाया वो सब कर ही रहे हैं।
1: हाँ।
0: तो निश्चित ही माँ सबसे बड़ी गुरु है और माँ सिखाएगी तो निश्चित ही बच्चे इसका पालन करेंगे ही करेंगे। तो ऐसा हम करें कि बच्चे हमारा अनुकरण करें, अनुसरण करें और वो करते रहें। और एक मैं एक छोटा सा स्लोगन देना चाहूंगी कि धरती माँ की गोधरी, धरती माँ की गोधरी, रखे इसे हर बाल कली, रखे इसे हर बाल कली। हर बालक का एक कर्तव्य हो कि प्रकृति संस्कार के साथ जुड़े और वृक्षारोपण तो करे ही करे, लेकिन हर एक चीज छोटी छोटी को समझे, माताएं सिखाए कि इनका इसका उपयोग करना है, इनको दुरुपयोग से बचाना है।
1: संगीता जी, आपसे बातचीत करके हमको बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारी सखियों को दी। आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सखियों, अभी हमने सुनी भेंटवार्ता, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का पर्यावरण पर प्रभाव। हमने बातचीत की थी मिशन ग्रीन से जुड़ी सदस्य संगीता वर्मा से। उम्मीद है आपको ये भेंटवार्ता पसंद आई होगी। और सखियों, अब सुनते हैं ये गीत।

और सखियों आज है बुधवार। सखियों अब बारी है रेसिपी की। अब गर्मी का मौसम है और इस मौसम में हम अपने घर पे कुल्फी ना बनाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सखियों आज हम भी आपको रेसिपी बता रहे हैं घर पर बनी मैंगो कुल्फी की। इस कुल्फी में पके आम, दूध मलाई डालकर इसे बिना पकाए मात्र 10 मिनट में हम तैयार कर सकते हैं। तो आइए सामग्री नोट कर लें। इसकी मुख्य सामग्री है पके आम के टुकड़े 1.5 कप, फुल क्रीम दूध 1.5 कप, कंडेंस्ड मिल्क 200 मिलीलीटर, फ्रेश क्रीम या मलाई 1/2 कप, इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, ड्राई फ्रूट्स यानी काजू, पिस्ता, बादाम 2 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए। अब सखियों सबसे पहले मिक्सर के जार में फुल क्रीम दूध

कंडेंस्ड मिल्क, मलाई और आम के टुकड़े डाल दें और इनको ब्लेंड करके एक चिकना गाढ़ा मिश्रण तैयार कर लें। सखियों, इसमें इलायची पाउडर और बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब इस मिश्रण को कुल्फी के सांचे में या छोटे पेपर कप में भरें। ऊपर से ढक्कन लगाकर 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर में जमने रख दें। आपकी ठंडी ठंडी मैंगो कुल्फी तैयार है। तो सखियों, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। और अब आज के नारी जगत कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। आज्ञा दे अपनी सखी शीतल को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे नारी जगत कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। दिन के 11 बजने वाले हैं। अब हम राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।

हम सुन रहे थे आबसार एल्बम से यह गज़ल, जिसे गाया महिमा ने, सरदार अंजुम ने इसे लिखा और सोमदत्त बट्टू ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला नगमा, जो कि है हिंदुस्तान क्लासिकल गज़ल एल्बम से, तलत महमूद की आवाज़ है, हसरत त्रिमिजी ने इसे लिखा है और चित्ता रॉय ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं उर्दू मॉडर्न गजल एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज में गालिब के बोल और फैयाज शौकत के संगीत के साथ ये खूबसूरत सा नगमा।

नॉन फिल्मी गीत एंड गजल एल्बम से हम सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में। मधुकर राजस्थानी के बोलों से सजा हुआ और मन्ना डे के ही संगीत से सजे हुए इस नज्म को आइए सुनते हैं अगला प्यारा सा नगमा, जो कि है ये मिलन ख्वाब सा इस एल्बम से तलत अजीज की आवाज में। सरदार अंजुम ने इसे लिखा और तलत अजीज ने इसे संगीतबद्ध किया।

ने लिखा, इकबाल ने संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं उषा टंडन की आवाज में दाग के द्वारा लिखे इस नगमे को।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं एल्बम गजल से एक गजल जो गाई है प्रतिभा सिंह बघेल ने। कमलेश सोनावाला ने इसे लिखा, राजू राव प्रमिला राव ने इसे संगीतबद्ध किया।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दानिश के बोलों के साथ इकबाल के संगीत के साथ सुन रहे थे हिंदुस्तानी गज़ल एल्बम से ये नज़्म को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग की अंतिम नज़्म।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआई प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज टोरंटो में कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आए आर्थिक बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के माध्यम से व्यापार, निवेश, नवाचार और लोगों के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्रों में उभर रहे अपार अवसरों पर भी जोर दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज महाराष्ट्र के अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। नागपुर, गढ़चिरौली और अकोला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस वर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव

0: यादव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग का अभ्यास अनिवार्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आज अपने कैबिनेट की बैठक करेंगे। पूर्व राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड सहित कैबिनेट के सभी सदस्यों के इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और उनके शीर्ष अधिकारी विदेशी और घरेलू दोनों ही मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब ईरान ने अमेरिका पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक का सेंसेक्स 69 अंक बढ़कर 76,079 पर था। निफ्टी 50-27 अंक की वृद्धि के साथ 1,941 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम यादों की महफिल में। हर प्रतिदिन हम सजाकर लाते हैं यादों की महफिल किसी एक खूबसूरत सी याद के साथ। तो आइए सुनते हैं आज के यादों की महफिल कार्यक्रम के इस खूबसूरत से नगमे को।

हम सुन रहे थे ये गीत आनंद फिल्म से मुकेश की आवाज में योगेश के बोल सलिल चौधरी के संगीत के साथ। अग्नि परीक्षा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में योगेश के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ सुनते हैं गीत।

हम सुन रहे थे अग्नि परीक्षा फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में योगेश के बोल और सलील चौधरी के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में अधूरा आदमी फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, योगेश के बोल हैं, राहुल देवर्मन का है संगीत।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: धन जवानी

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है यादों की महफिल।

0: हम सुन रहे थे रजनीकंदा फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में योगेश के बोलों के साथ सलिल चौधरी के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से वार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगर।

हम सुन रहे थे मंजिल फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में योगेश के बोल और आरडी वर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और हमने यादें सजाई हैं योगेश की कलम से निकले हुए गीतों के साथ। अगला गीत हम सुनने वाले हैं किससे किसी से ना कहना फिल्म से। आशा भोसले की आवाज़ है, योगेश के बोल हैं, बप्पी लहरी का है संगीत।

हम सुन रहे थे अपने पराए फिल्म से यशुदास आशा भोसले की आवाज़ में योगेश के बोलों को, जिसे बप्पी लहरी ने संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, योगेश के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत है, फिल्म है चालबाज।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सफर कितना सुरीला हो जाता है ना अगर सब साथ हो, और यही साथ अगर एक साथ हो तो मजा अलग ही आता है। आज की इबारत हमने लिखकर भेजी आपको, और उस इबारत को हम पढ़ना चाहते हैं हमारे उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर वह इबारत नहीं पढ़ी है। तो चलते हैं उस इबारत की ओर। हमने इबारत लिखी कि एक लड़की बोली, मेरे पास तो सब कुछ थोड़ा ही है, पर मुझे विश्वास है कि आने वाले पल पर जो मेरे लिए खुशियों का ताल बन जाएगा, और नदियाँ जैसे अपनी धारा के संग चलती हैं, मेरी जिंदगी का सफर भी चलता रहेगा। अगर उठेंगे सबके कदम दूसरों की मदद के लिए तो जीवन के दिन कहाँ छोटे रह जाएंगे। तो चलो किसी की मुस्कुराहट के लिए भूल जाते हैं कि कुछ लोग क्या कहेंगे। और यही बात याद रखते हुए हम चलते हैं आज के सुंदर सुंदर संदेशों की तरफ जो कि भेजे हैं आप सबने हम तक। हमारे श्रोता बहुत अच्छा लिखते हैं और उनकी कलम को मैं प्रणाम करती हूँ, और उनकी ही लिखी हुई कुछ बातों को आपके साथ साझा करती हूँ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत जीवन की उम्मीद, विश्वास, इंसानियत का संदेश देती है। जैसे नदियाँ निरंतर बहती रहती है, वैसे ही जीवन भी चलता रहता है। अगर हम अपने कदम दूसरों की भलाई के लिए बढ़ाएं और किसी चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें तो जीवन के छोटे पल भी अनमोल बन जाते हैं। दुनिया क्या कहेगी इस बात की चिंता छोड़कर सदैव अच्छे काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, मनुष्य के जीवन का सफर नदी की बहती धारा के समान निरंतर गतिशील रहना चाहिए। हम इसे प्रवाहमयी जीवन के रूप में देख सकते हैं, जहाँ ठहराव को जीवन के अंत के रूप में देखा जाता है। जैसे कि नदी की धारा सुख दुख रूपी किनारों के साथ ले अपनी गतिशीलता बनाए रखे हुए हैं, हम अपने लक्ष्य सागर में समाहित को प्राप्त करती है। इसी प्रकार हमें भी जीवन में कहीं नहीं रुकना चाहिए जब तक हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुँच जाते। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जीवन में परेशानी आना स्वाभाविक है, हर चुनौती में एक नया सबक तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन का सफर कोई मंजिल नहीं बल्कि हर पल एक अनुभव है, इसीलिए अपनी गति और सरलता के साथ जिए। हमारे कौर श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है कि जीवन की सच्चाई को बखूबी बयां करता गद्यांश संतोष का आनंद दर्शा रहा है। जहाँ थोड़े में खुशियों की ताल जीवन के अविरल चलते सफर में आने वाले भविष्य को किसी जरूरतमंद की ओर अपना हाथ बढ़ाकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना और अपने जीवन को प्रसन्न बनाए रखने की बात कह रहा है। बिल्कुल सही बात है, संदेश यही है। पर इसके साथ आपने गाने भी चुने हैं, तो आइए देखते हैं आपके गाने और हमारे गाने मिलते हैं या नहीं। तो हर बार की तरह मेरे पास तो दो प्रश्न हैं।

आपके लिए पहला प्रश्न बड़ा सरल सा है कि कुछ शब्द होते हैं जो शब्द एक जैसे होते हैं, यानी उनको पलट दो तो अलग हो जाते हैं, उनका अर्थ बदल जाता है, पर खुद बनते उतने ही अक्षरों से हैं। जैसे अगर मैं कहूं दया और उसका ही उल्टा हो जाता है याद, दया याद। अगर हम किसी पर दया करें तो वो हमें याद रखता है। ऐसा ही है राही और उसका हो जाता है हीरा, राही हीरा। तो जो राह में चलता जाता है वही हीरा बनता है। ऐसे कई सारे शब्द इस सृष्टि पर घूम रहे हैं, तो आज के पूरे कार्यक्रम में आप ढूंढते रहिए ऐसे शब्दों को। अगर कोई शब्द याद आ जाए तो जल्दी से हमारे फेसबुक पर साझा कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार अनवरत आपके वो शब्द मैं पूरे कार्यक्रम में पढ़ने वाली हूँ। तो जब जो शब्द याद आए, तीन अक्षर का, दो अक्षर का, जो भी याद आए, जल्दी से भेजिएगा। और अगला गीत मैं आपको सौंप रही हूँ, बताइएगा इस गीत के गीतकार कौन हैं।

कोई बात है, एक लड़की भीगी भागी सी।

कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म से ये गीत हम सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, सचिन देववर्मन के संगीत से सजा हुआ। हमने पूछा था कि इसके गीतकार कौन है और आप सब ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, मजरूह सुल्तानपुरी। और बहुत बढ़िया बात है। और हमारे श्रोताओं से हमने कहा था कि आप बताइए कि कौन सा शब्द है जो उसका उल्टा है, लेकिन अर्थ भी अलग है लेकिन साथ में मिल जाता है। जैसे हमारे श्रोता ने लिखा कि इबारत से ही शब्द ताल लता, ताल मिलते ही लता गा उठती है। क्या बात है, कितना बढ़िया लिखा है ना। उसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है सीमा मासी, यानी सीमा नाम की मासी जिसकी होगी वो सीमा मासी बड़े आराम से हो जाती है। खीरा राखी, धारा राधा, दाग गदा, मीना नामी, बहुत सारे शब्द इन्होंने हमें दिए हैं। और इसके साथ हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे और शब्दों के बारे में हमें बताया है। जैसे उन्होंने लिखा है कि एक बहुत प्यारा खूबसूरत सा शब्द दिया, राधा धारा, तो जो धारा के साथ बह उठे वही तो राधा का हो जाएगा। इसे हम धार्मिक परिवेश में ले जाकर इस तरह से समझ भी सकते हैं। हमारे श्रोता ने उत्तर दिया कि आपने चलती का नाम गाड़ी फिल्म का यह गीत, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी है, बिल्कुल सही। भला का उल्टा लाभ, बिल्कुल सही है। हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भी लाभ होगा। शादी दिशा, तो शादी जो होती है वो सही दिशा में हो तो कितना अच्छा है। नवीन नवीन दोनों तरफ से एक जैसा होता है। और हमारे श्रोता ने लिखा मरा राम, तो इसके लिए हम बचपन में कहा करते थे जब तक मरोगे नहीं तब तक राम के कैसे होगे, तो राम का होने के लिए भी हमें उनके लिए पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है। ऐसे कई सारे शब्द आपकी तरफ से आ रहे हैं और अगर आते रहते हैं तो बड़ा आनंद आएगा। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बड़ा अच्छा अच्छा लिखा है कि किसी को अपने सफ़र में शामिल करने के पहले यह समझना चाहिए कि उसका नज़रिया क्या है। जब आप लोगों को सम्मान देते हैं, उनकी चिंताओं को सुनते हैं, महसूस करते हैं, उनकी कद्र करते हैं, तो गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है। अपने विश्वास को इस तरह से पेश करें कि सामने वाला उसमें अपना भी कोई सपना भलाई नजर आए। जब व्यक्तिगत उद्देश्य एक बड़े साझा उद्देश्य के लिए जुड़ जाते हैं तो कारवां अपने आप बनता जाता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। एक और लिखते हैं, हमारा विश्वास है कि हमें सब कुछ दिला सकता है फिर भी हमारे जीवन में राह सुकून भरी हो जाती है। जैसे नदी के किनारे सुकून मिलता है, इसी दौरान कदम दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमारे जीवन के दिन बड़े हो जाते हैं और किसी की मुस्कुराहट की वजह भी बन जाते हैं। अच्छा, आपने हमारी इबारत को ही घुमा दिया। हमारे श्रोता लिखते हैं, जीवन को खुशहाल और सार्थक बनाने के लिए छोटी छोटी खुशियाँ और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि अक्सर हम बड़ी सफलताओं की खुशी तलाशते हैं लेकिन असल में दैनिक जीवन के छोटे छोटे पल ही मानसिक शांति और सकारात्मकता का आधार बनते हैं। इसीलिए हर दिन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना ही एक सच्चे और खुशहाल जीवन का रहस्य है। सच बात है, छोटी छोटी खुशियाँ बड़े जीवन की बड़ी प्यारी सी खुशियां बन जाती हैं। तो चलिए हम अगला गीत आपको दे रहे हैं। ऐसे ही जो शब्द है ना, एक दूसरे से उल्टे पलटे पर मिलते जुलते या कहीं ना कहीं जुड़ते जुड़ते, अगर कोई शब्द आपको आता है तो आप ज़रूर हमें भेजिए और साथ में सुनिए ये गीत। अब फिर से मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस गीत के गीतकार कौन है? बहुत खूबसूरत गीत है, सुनिए।

हम सुन रहे थे खट्टा मीठा फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में। राजेश रोशन ने इसे संगीतबद्ध किया और हमने आपसे पूछा था कि इसके गीतकार कौन हैं, तो आपने बताया कि गुलजार ने इस गीत को लिखा है और कई लोगों ने कहा कि कितना सच्चा गीत है ना ये, थोड़ा है थोड़ी की ज़रूरत है ज़िंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत सा बड़ा प्यारा सा गीत हम सुन रहे थे और इस गीत के साथ में हमारे श्रोताओं ने लिखा कि कई सारे शब्दों के बारे में बताया, जैसे पापा, दादा, नानी, मम्मी की नानी और नानी की मम्मी, ये रिश्ते बदलने से पात्र बदलते हैं। बिल्कुल सही बात। हमारे एक श्रोता लिखते हैं मधु धूम, कितनी बढ़िया है। हमारे श्रोता लिखते हैं मैं राधा का नाम जपूं जमुना धारा में, कितना बढ़िया है ना, मैं राधा का नाम जपूं जमुना की धारा में, मुझे भी बड़ा मज़ा आया पढ़कर ये। सीधा पढ़ो या उल्टा राधे राधे, जी बिल्कुल। एक ने लिखा है तेजू के पापा के जूते, इसको उल्टा सीधा एक साथ पढ़ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बताया तेजू के पापा और पापा के जूते, इसको उल्टा सीधा करेंगे तो एक जैसा हो जाता है। कनक, एक बचपन में पढ़ा करते थे, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौरात नर वा पाए बौराए, इसी बात को लिखकर उन्होंने बताया है कि कनक के लिए उन्होंने अर्थ बताया कि एक कनक सोना है और दूसरा कनक आटा भी होता है, तो इसे भी हम ले सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बताया हरा रा हवा वाह सखा खास, ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे सखा हमारे लिए खास होते हैं। टोपी पीटो दिखा खादी, खादी दिखाइए के लिए दिखा खादी, नाम मना, और इसके साथ ही लीला लाली, लीला करने से ही लाली आती है। ऐसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने और भी बहुत सारे शब्द भेजे हैं, आप भी भेजते जाइए। अब जो अगला गीत है मैं आपको सौंपूंगी, उसके पहले हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा लिखा है कि थोड़ी सी खुशियाँ, विश्वास और मुस्कुराहट के सहारे ज़िंदगी का सफ़र आगे बढ़ता रहता है। जैसे नदियाँ अपनी धारा के साथ निरंतर चलती हैं, वैसे ही पल भर नहीं रुकती। दूसरों के कदम के लिए अगर सबके कदम दूसरों की मदद के लिए उठें तो दिन और खूबसूरत बन जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने एक चीज़ और लिखी है कि थोड़ी सी खुशियाँ, दूसरों की मदद और मुस्कुराहट बांटते हुए जीवन का सफ़र चलते रहने का विश्वास, यही तो है सुरीला सफ़र की असली मिठास। जी बिल्कुल, और इस मिठास के साथ हम अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा एक गंभीर सा सवाल, ये जो आप उल्टा सीधा लिख रहे हैं वो ज़रूर लिखते जाइए, पर उसके साथ एक सवाल और है, आपके माता पिता ने कोई ना कोई ऐसी सीख दी होगी जो आज भी आपके कानों में गूंजती है, जरा सोचिएगा, है ना, जरा इस सीख को याद कीजिए। जैसे मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा हमारा हाथ हमेशा ऊपर देने हो रहना चाहिए, जैसे देने वाले का होता है, प्रयास करो सदा दूसरों को देते रहो। ऐसा ही कुछ आपके माता पिता ने भी आपसे कहा होगा जो आपके कान में आज भी गूंजता है, उस विषय को याद कीजिए। और चलते हैं अगले गीत की तरफ, बस बहुत सामान्य सा सवाल है, इस गीत के गायक कौन है।

ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, और ये प्यारा सा गीत हम सुन रहे थे अनोखी रात फिल्म से। और इस गीत को लिखा इंदिवर ने, रोशन ने संगीतबद्ध किया, और हमने आपसे पूछा था कि गाया किसने, तो आपने कहा बहुत खूबसूरत सी आवाज़ मुकेश की है। बिल्कुल सही आपने पहचाना। और हम आपसे बात कर रहे थे दो विषयों पर। एक विषय तो ये चल रहा है कि कोई भी शब्द जो उल्टा सीधा एक सा होता है वो बताइए, साथ में दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा कि ऐसी कौन सी सीख है जो आपके माता पिता ने आपको दी है। हम वह सीखें आज यहाँ से पढ़ेंगे ताकि सारी माता पिता की सीखें हम सबके पास में आ जाएंगी। हमारे एक श्रोता ने उस विषय पर लिखा है जहाँ पर शब्द उल्टे सीधे होते हैं, चौबे जी भाजी बेचो जी, बिल्कुल ये बिल्कुल उल्टा सीधा एक जैसा हो जाता है। राधा की बुनी में नींबू की धारा, बिल्कुल ये भी हो सकता है। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा है हार रहा, और इसके साथ ही राज जरा धूम मधु, इसके लिए हमारे श्रोता लिखते हैं दादी बोली धूम मत मचाओ तो मधु मिलेगा। बिल्कुल सही। नवजीवन नवीन, अगर शब्द को उल्टा सीधा करते हैं तो वो एक जैसा हो जाता है। मज़ा आ रहा होगा शायद बचपन के इस खेल को खेलकर, और उसी बचपन में हम वापस चलते हैं। हमारी सीखों के लिए कितना अच्छा होगा अगर हम सारी सीखें याद कर लें तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। हमारे श्रोता लिखते हैं मेरे पिताजी की दी हुई सीख कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगो, क्योंकि रुकने पर जिंदगी बोझ लगने लगती है। क्या बढ़िया बात कही आपके पिताजी ने। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे मम्मी पापा अक्सर कहा करते थे कि अगर आसमान को छूना चाहते तो हमेशा धरती के हर प्राणी से प्यार करो और सबसे प्रेम से बात करो। क्या बढ़िया बात कही। और हमारे श्रोता ने हमारे उस गीत के लिए कहा है कि जो अनोखी रात फिल्म का ये गीत है।

उसमें जो आलाप है वो हेमंत कुमार जैसा लगता है। अब इस बात की जानकारी हमें नहीं है, शायद आपको हो। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे पापा ने एक बहुत प्यारी सीख दी है कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो तो सदा सुखी रहोगे। इस सीख को हम सदा याद रखते हैं और ज़्यादा की चाहत नहीं करते। एक और श्रोता लिखते हैं कि जीवन में धैर्य ज़रूरी है, इसे हमेशा बनाए रखना, ऐसा पापा कहते थे। मैं कोशिश करती हूँ और कभी धैर्य और धीरज खो ना दूँ, इस बात का ख्याल रखते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, हमें बोला गया था चाहे ज़्यादा हो या बहुत कम मदद करो, पर लेने वाले की आँख में मत देखो क्योंकि उसकी लाफे नींद छीन लेगी। कितनी बढ़िया बात सिखाई है, देते समय उसकी नज़र में मत देखो। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे पापा ने कहा है कि दूसरों की मदद करते जाओ, कोई मदद करे या ना करे, बस भगवान है ना बस। और मम्मी कहती हैं जो साथ मिलकर रहने में खुशी है वो खुशी कहीं और नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है और इसी बात को हमने एक आपके सामने कनक कनकते सौ गुने पढ़ा था। तो हमारी एक हिंदी की शिक्षिका यानी हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी में यमक अलंकार का सबसे लोकप्रिय उदाहरण है। इसमें कनक दो बार आया है, पहले कनक का अर्थ है धतूरा अर्थात जहर, दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण धातु। बिल्कुल सही बात है। और चलिए हम अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखकर हमें भेजी थी कि एक बात तो सच है कि लोग क्या कहेंगे, इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए और डर को छोड़कर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर लोग इस डर से अपनी खुशियां खो देते हैं और विचार सिखाता है कि दूसरों की भलाई और अपनी खुशी के आगे फिजूल की बातों को भूल जाना चाहिए, बिल्कुल भूल जाना चाहिए। और जो मैंने आपसे दो प्रश्न रखे हैं उन दो प्रश्नों के उत्तर देते जाइए कि आपके माता पिता ने आपको क्या सिखाया, माँ ने सिखाया या पिता ने सिखाया, किसी ने तो कोई सीख दी होगी, उसे ज़रूर बताइए। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, बताइएगा इसके संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे सफ़र फिल्म का यह गीत मन्ना डे की आवाज़ में, इंदिवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत के साथ। और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, ये कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और बहुत खूबसूरत संगीत है, बहुत प्यारा माटी से जुड़ा गीत है। अब हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं अपने माता पिता के बारे में, और वह एक और हमारे श्रोता ने बड़ा अच्छा लिखा है कि नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज है समय की धारा। जी बहुत प्यारे बोल हैं, बहुत प्यारा लिखा है इंदिवर ने इस गीत को। और हमारे श्रोता थोड़ी सी शिकायत कर रहे हैं कि बार बार ये गीत सुनाया जा रहा है, क्षमा चाहेंगे, अगली बार प्रयास करेंगे कि नए गीतों को लेकर आपके बीच आएँ। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है, वैसा कोई और प्रेम नहीं होता। माता पिता के प्यार से समझाने के लिए आपको स्वयं बच्चों का पालन पोषण करना होगा। बच्चे अपने माता पिता से मुस्कुराना सीखते हैं। मेरे हीरो मेरे माता पिता हैं और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल बढ़िया बात कही है आपने, बड़ा आनंद आया इस बात को पढ़ने के बाद में हमें। और इसके साथ ही हमारे सुरीला सफ़र कार्यक्रम में आप सब बहुत अच्छे से जुड़कर बहुत सारे प्यारे प्यारे संदेश भेजते हैं, उसके लिए भी हम सबकी तरफ से हम आपको बहुत धन्यवाद देते जाते हैं। और इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे गुरुजी कहा करते थे कि हाथ एक दान से करो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। किसी को कुछ दो ना दो, पर दो शब्द, एक प्यार भरी मुस्कान दे दो। किसी को अगर किसी का कुछ काम करो तो ये भावना ना हो कि वक्त पड़ने पर वह हमारे लिए काम आएगा, बल्कि ऐसा कहो कि किसी का बुरा वक्त आए ही ना। कितनी बढ़िया सीख आपको मिली है आपके जीवन में आपके गुरु के हाथों से। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि विदी जी, मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उन्होंने कहा था कि जब भी कोई हमारे घर आता है और जब वह जाने लगी तो दरवाजे तक उसके साथ जाकर उसे विदा करूं, जिसे मैं आज तक निभा रही हूं। जी आजकल होता है कि कोई निकलता है और हम दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, पर पहले ऐसा था कि जब तक वह दिखना बंद ना हो जाए तब तक हम उसे विदा करते थे। कितनी अच्छी बात थी ना। इसके साथ हमारे श्रोता कहते हैं कि मेरी माता ने मुझसे कहा था कि किसी मजदूर का एक पैसा भी मत रखो, हो सके तो ज़्यादा दे देना। मैं इस बात को आज तक अमल में लाता हूँ, कभी किसी मजदूर या श्रमिक का कोई पैसा नहीं रखता हूँ। मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं वे कभी अलग ना हो पाए, ऐसा ही रहे। बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं किसी की हाय मत लो, यह सिखाया गया है इनके पिताजी के द्वारा। हमेशा हमारे पापा तो हमेशा कहते थे एक समय के पाबंद रहो, तरक्की उन्नति सदैव करोगे। बिल्कुल सही बात। एक और पिताजी कहा करते थे किसी से मत डरो, जो डर गया समझो मर गया। अच्छा बहुत अच्छी बात कहते थे, डरना तो बहुत गलत चीज़ है शायद। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि उनके जो जीवन में सीख है माता पिता के संस्कारों से टिकी है। उनके पिताजी ने कहा था कि बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, तुम्हारे शब्दों में किसी का रूह ना आहत हो। मेरी आत्मा में बसी है ये बात, वहीं पिता का अडिग मंत्र व्यापार हो या जीवन, ईमानदारी ही एकमात्र धर्म है, मेरी राह का दीपक। आज जो भी हूँ इन दो पवित्र विरासतों की बदौलत हूँ, इन्हीं के प्रकाश से अपना जीवन जी रहे हूँ। बहुत सही बात कही है। पिताजी ने कहा था बेटी किसी की बात पर विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं, फिर तुम आत्मविश्वास को जीत जाओगी। और विश्वास शब्द हमारे इस इबारत में भी है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि उनके नाना जी ने उन्हें सिखाया था, अंतिम समय में सीख गले लगाकर सीख दी थी कि ये संसार कुछ भी नहीं है, कर्म ही प्रधान है, सभी को साथ में लेकर चलना, किसी से भी जलन मत रखना। वो दिन मेरे लिए बहुत अहम रखता है। ऐसे ही जीवन में अहम रखते हैं ये सारी बातें, और ये ऐसे ही बनी रहें आप सबके साथ। मैं आपको अगला गीत सौंपना चाहती हूँ और उस गीत के

साथ में मैं एक प्रश्न और यहाँ पर जोर दे रही हूँ, और वो प्रश्न ये है, आज तक हमने कई लोगों के लिए मदद की होगी, कभी कोई ऐसी मदद जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आई और आत्मा में सुकून? बताइएगा, कभी कभी ऐसा लगता है ना, किसी को कुछ देकर हमारा पेट भर गया, ऐसा कब आपके साथ घटित हुआ था? जरूर से बताइएगा। और ये जो अगला गीत हम आपको सौंपने जा रहे हैं, ये गीत मैं जो जिस फिल्म से लिया गया, उस फिल्म का नाम आपको बता देना है। और ये तीन प्रश्न आपके साथ चल रहे हैं, उल्टा सीधा वाला, आपके माता पिता की सीख वाला, और कोई ऐसी मदद जिससे आत्मा की भूख मर गई हो थोड़े समय के लिए ही सही।

किया है और आपको बड़ा सुकून मिला है, उसे भी सबके साथ साझा कीजिए। तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो जानवरों के लिए दाना पानी की व्यवस्था तो कर सकते हैं, गर्मी बहुत है, सच बात है, हम तो पानी लेकर पी सकते हैं, कहीं से व्यवस्था कर सकते हैं, पर वो बेचारे अब उध कहाँ जाएंगे, उनकी मदद भी तो हमें ही करनी है ना, क्योंकि उनके जंगलों को साफ करके, उनकी नदियों को पाट कर, उनके समंदर को पाट कर हम उनकी जगह पर रहने लगे हैं, तो इस बात का ख्याल हमें ही उनके लिए रखना होगा। तो हम सभी अगर ख्याल रखें तो कितना अच्छा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सोना बड़ा कीमती है, सोना अर्थात नींद भी बहुत कीमती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया शब्द दिया, सोना सोना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि विधि, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत थक जाती थी, ससुराल में बहुत काम करना पड़ता था, तो मेरी माँ कहती थी कि काम करने से इंसान और मजबूत होता है। मुझे अपनी पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिलता था, तो पापा कहते थे कि थोड़ा सोने में से वक्त कम कर दो, पढ़ाई का वक्त निकल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ दिल में चाह होनी चाहिए, बस दिल की चाह पूरी करते जाइए। और हमने जो प्रश्न पूछा था उसके लिए हमारे श्रोता लिखते हैं कि अंदाज फिल्म मोटरसाइकिल पर हेमा मालिनी को बॉम्बे की मुंबई की सड़कों पर गाते हुए घुमा रहे हैं राजेश खन्ना। बिल्कुल सही है। हमारे एक और श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार इस प्रकार होना चाहिए कि जब वह अपनी कॉलोनी गली से निकले तो हर आदमी आपकी इज्जत करे, और वह भी किसी डर या दौलतमंद होने के कारण नहीं, बल्कि व्यवहार और नम्रता के कारण। कितनी अच्छी बात लिखी है। एक और श्रोता ने लिखा कि कोई भी काम छुपकर नहीं करना चाहिए, ऐसा उनके पिताजी ने उन्हें सिखाया। कितनी बड़ी सीख सिखा गए, छुपकर नहीं करेंगे तो गलत काम होगा ही नहीं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, इसे आप किस तरह से जी रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है। जिंदगी सहरा भी है, जिंदगी गुलशन भी है, प्यार में खो जाओगे तो जिंदगी मधुबन भी है। कितनी अच्छी बात आपने कही। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि माताजी पिताजी के गुजर जाने के बाद इनका भाई जो है वो पंडिताई करते रहे हैं, तो गांव में तीन बच्चों के साथ रह रहे थे और वो शहर में, और जब विकट स्थिति विश्व की आई थी उस समय रोजगार के अभाव में संकट था, तो आर्थिक जिम्मेदारी निभाई थी और आज वह संपन्न है पर उनकी बात नहीं भूला। बहुत सही बात है, मदद करने से जो खुशी मिलती है ना, खुशी कहीं नहीं होती, और मैं हमेशा करती रहती हूँ, कभी टीचर्स की, कभी दोस्तों की, कभी फैमिली की, इंसान को बराबर समझती हूँ, कभी कोई भी हो सबकी मदद करनी चाहिए। बस इतनी अच्छी बात आप लिख रहे हैं, मदद ज़रूर करिए मगर निस्वार्थ रखिए, फिर देखिए आपको कितनी खुशी मिलती है। ये हमारे श्रोता कह रहे हैं, पुराने कपड़े, पुराना सामान, बच्चों के खिलौने आदि जो कुछ हमारे काम का नहीं है, हम तो अनाथाश्रम में दे आते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बेचारों के माता पिता नहीं है, किसी बहाने उनके माँ बाप बन जाए तो उनको भी खुशी होगी। हमारे श्रोता ने लिखा कि उनके गुरु जी कहा करते हैं कीरत करो, अर्थात कीर्तन सत्संग करो, नाम जपो प्रभु जी का, वाहेगुरु जी का नाम जपते रहो, मंड रखो यानी मिल बांट कर खाओ, और इनके पिताजी ने भी यही सिखाया है इनको। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बात अजीब लग सकती है पर मेरे पिताजी मेरे से इसलिए नाराज रहते थे कि मैं हमेशा ईमानदारी सच्चाई का साथ देती हूँ, मैं 51 साल की हूँ और लोग मुझे अभी भी बेवकूफ़ समझते हैं। नहीं, सच्चाई का साथ देने वाले का साथ हमेशा उसका ईश्वर ज़रूर देता है, तो साथ देते रहिए, अच्छी बात है। और चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। हमारी श्रोता ने एक लिखा है कि मेरी माँ ने सिखाया है कोई कुछ भी बोले उसे मन पर नहीं लेना, हमेशा भूल जाओ, यही मानसिकता रखना। हमारे एक श्रोता तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन का बीड़ा उठाया है, उसके साथ लिखते हैं कि उन्होंने अपनी आँखें भी आँखों के बैंक में डोनेट कर दी हैं, आइज भी आइज बैंक में डोनेट कर दिए हैं। कितना अच्छा काम किया है, आपके बाद भी आपकी आँखें ये दुनिया देख सकेंगी। हमारे श्रोता लिखते हैं एक और, चाहे थोड़ा खाओ लेकिन जो खाओ वो अच्छा खाओ, ये बात पिताजी कहते थे और हमेशा हमें याद रहती है। बहुत बढ़िया बात है। हमारे एक श्रोता ने प्रश्न उठाया है, इस प्रश्न का उत्तर आप सब देने वाले हैं। अब ये प्रश्न मेरा नहीं, हमारे एक श्रोता का है, और वह प्रश्न ये है, आज बच्चों में नैतिक मूल्य कम होते जा रहे हैं, इसके लिए क्या हम माता पिता जिम्मेदार नहीं हैं? ज़रा इसका उत्तर आप दीजिएगा, और तब तक सुनिए अगला गीत, और अगले गीत में बता दीजिए कि इसके गायक कलाकार कौन है, गायक कलाकारों के नाम बताइए, और बताइए क्या बच्चों में की जो संस्कार अगर कम होते हैं तो उसके लिए माता पिता जिम्मेदार होते हैं, बताइएगा।

हम सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोलों से सजे हुए शंकर जय किशन के संगीत के साथ इस प्यारे से खूबसूरत से नायाब से गीत को जो फिल्म अंदाज से लिया गया है। और यही प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि ये फिल्म कौन सी है और आप सबने बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दिया। और हमारे एक श्रोता ने प्रश्न पूछा है कि मैं थोड़ी देर से जुड़ी हूँ, क्या चल रहा है बताइएगा उल्टा सीधा। तो हमने एक प्रश्न कहा था कि जैसे राही हीरा, राही का उल्टा होता है हीरा और उसका कोई अर्थ भी होता है, ऐसे ही कुछ शब्द अगर आपके दिमाग में आए तो आप सुझा सकते हैं। साथ ही हमने एक और प्रश्न पूछा कि माता पिता की सीख आप बताइए और ऐसा कुछ जो आपने

हम सुन रहे थे बातों बातों में फिल्म से यह गीत। अमित खन्ना ने इसे लिखा, राजेश रोशन ने संगीतबद्ध किया और हमने आपसे पूछा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, तो आपने तो हमें बड़ी सारी जानकारी दे दी। और उस जानकारी में पहले तो आपने बताया भी कि इसके गायक कलाकार अमित कुमार और लता मंगेशकर हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से बताया कि एक बेहतरीन पारंपरिक गीत है, वासु चटर्जी की एक बेहतरीन पारिवारिक रिश्तों को लेकर बनाई गई फिल्म है। इसके लिए हमारे श्रोता बड़े खुश होते हैं कि उनके गीतों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसके लिए भी हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि डेविड बूढ़ा और लीला मिश्रा को, जी को एक ईसाई वाला रोल किया, अमोल पालेकर और टीना जी के प्रेम चल रहा है, डेविड बूढ़ा मस्ती ले रहा है, लीला मिश्रा जी गजब ईसाई कल्चर है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात है। और अब चलते हैं हम हमारे संदेशों की तरफ जो हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं, और जल्दी जल्दी से हम हमारे संदेशों को पढ़ लेते हैं क्योंकि समय भी हो रहा है सुरीला सफर का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता पिता नहीं वस्तुतः नैतिक मूल्य गिरने का कारण स्वयं बालक का ही होता है। बिल्कुल सही बात है, हम इस बात को मानते हैं।

हमारे श्रोता ने लिखा है, आज की जनरेशन में नैतिक मूल्यों की कमी के कारण हर माता पिता हैं, क्योंकि हम उन्हें खर्च का पैसा दिया है, मोबाइल दिया है, अच्छे विद्यालयों में प्रवेश दिलाया, लेकिन हमने अपने संस्कार, हमारे गुरुओं के साथ के बारे में बैठकर शिक्षा नहीं दी है। घरों में अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ने को रखें, इस बात की वो सलाह देते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता पिता ही सबसे पहले जिम्मेदार हुआ करते हैं, समाज या माहौल उसके बाद में, क्योंकि पक्षी अपने चूजे को पंख निकल जाने से पहले तक पालता है, और जब पंख लग जाए तो उसके बाद वह आपके रोकने पर भी नहीं रुकेगा। पैदा होते ही शिशु के हाथ में मोबाइल आ जाता है, तो अपने हितों के चलते ऐसे में किसको दोष दें। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, मेरी मम्मी बोलती थी, जहाँ काड़ वहाँ हड़ा बाड़, जो आपके पास है उसकी ज़रूरत के हिसाब से खर्च करो, अपने आसपास के लोगों की मदद करो, ईश्वर कभी कमी नहीं आने देते। ये बात तो मैं अपने ऊपर भी लागू करती हूँ और इस बात का वो ख्याल रखते हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातों को लेकर इसमें लिखा है, और इसके साथ ही अभी जो हम चल रहे हैं उनमें हमने दो शब्दों के बारे में भी आपसे बात करी थी। तो राख का खरा का राख होता है, जो जितना खरा होगा वो राख नहीं बन पाएगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं। इसके साथ ही एक और शब्द आया कि जीना भी कला है। जीना का दो अर्थ होते हैं, एक होता है सीढ़ियाँ और एक होता है जीवन। एक और श्रोता ने लिखा है, नवजीवन का उल्टा सीधा दोनों एक जैसा होता है। हमारे श्रोता ने उत्तर दिया, हवा, वाह। एक ने लिखा, इस गर्मी में कोई हवा कर दे तो मुंह से वाह निकल जाती है जी। मन नम, हमारे श्रोता ने बड़ा अच्छा लिखा है, मन मन यानी चंचलता का प्रेरक है, तो अगर नम है तो आर्द्रता के लिए कहा जाता है। बिल्कुल बढ़िया बात कही आपने। इसके साथ हमारे एक श्रोता ने मन की बात लिख दी कि बहन जब ससुराल जाती है तो भाई को रोना आता है, और शायद अब वही समय वही काल आ रहा है कि बहनें अपने अपने ससुराल जाने की कोशिश करने लगी हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, नाम मना। कई लोग होते हैं जो अपने नाम को बताने के लिए मना करते हैं, और शायद वही सही मायने में बड़े प्रस्तोता होते हैं, बड़े कार्य को करने वाले होते हैं। और इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, बस सब मिलकर बस कर सकते हैं, ऐसा लिखा है बहुत सारी चीज़ें। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी, सबको खुश करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, दिखावे के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। अब हमारे श्रोता ने एक और श्रोता ने बात लिखी, मेरे पति देव को हमेशा मदद करने की आदत थी, एक बार उनके मित्र को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा तो मेरे पति ने उन्हें फोटोस्टेट मशीन खरीद कर दिया। आज बात को 20 साल हो गए, लेकिन उनकी माँ इस बात को याद करके कभी धन्यवाद देना नहीं भूलती है। बहुत बढ़िया बात है, बच्चे सबसे पहले अपने घर से सीखते हैं। व्यस्त जीवन शैली, काम के दबाव, अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण माता पिता अक्सर बच्चों को समय नहीं दे पाते। इसके अलावा माता पिता का आपस का व्यवहार और घर का माहौल सीधा बच्चों पर असर डालता है। स्कूलों में नैतिक शिक्षा नींव की कमी है। ये बहुत सारी बातें हैं जो हम सबको समझनी चाहिए। और आज के कार्यक्रम का ये गीत हम आपको सौंपते हैं, बस एक प्रार्थना करते हैं, मुस्कुराते रहिए और दूसरों के लिए भी मुस्कुराने की वजह बन जाइए। साथ दीजिए, हाथ दीजिए, और ये जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा।

हम सुन रहे थे गीत बड़े दिल वाले, फिल्म से लता मंगेशकर उदित नारायण की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देवर्मन के संगीत के साथ। सुरीला सफ़र कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप सब ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है लेकिन एक दूसरे के साथ का ठिकाना होता है। अपने बच्चों को संस्कारित कीजिए, क्योंकि यही पीढ़ी है जो भारत को आगे लेकर जाएगी। और इसी के साथ आज्ञा दीजिए विधि प्रवीण जैन को, नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, मुस्कुराओ। मुस्कुराने में पैसे नहीं लगते, लेकिन मुस्कुराने से खुशियां जरूर आती हैं। जीवन में भागा दौड़ है, चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, पर इस सब के बीच केवल एक चीज है जो आपको सदा के लिए खुशी दे सकती है, और वह है आपकी खिलखिलाती हंसी। तो एक बार जोर से खिलखिला लीजिए अपने जीवन में, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां हैं, काम हैं, कई सारी और मुसीबतें भी हैं। इन सबके बीच हमारे पास हमारा अपना बचता है, वो है मुस्कुराना और खिलखिलाना। तो हंसी एक ऐसा उपहार है जो हमें मिला है और जो हमें बनाता है भीतर से मजबूत। अगर कहीं हार रहे हैं तो मुस्कुरा लीजिए, वो मुस्कुराहट आपकी जीत की प्रेरणा बन जाएगी। कभी अगर जीवन में कोई समस्या सामने दिख रही है तो बस मुस्कुरा लीजिए, वह समस्या के लिए दवा बन जाएगी आपकी अपनी मुस्कुराहट। और कोई भी साइड इफेक्ट इसके है नहीं, यह शरीर को ही नहीं मन को भी स्वस्थ बनाता है। तो मुस्कुराइए और हंसिए जोर से ठहाके लगाकर।

एक शेर पढ़ा था कहीं कि हंसी के बिना ये जिंदगी अधूरी लगती है, हंसी के बिना ये जिंदगी अधूरी लगती है, मुस्कान हो तो हर मुश्किल भी आसान लगती है, हंसी हमें जोड़ती है, हमारे रिश्तों में मिठास भरती है, दिलों के बीच दूरियां कम करती है, और जब हम हंसते हैं तो ना ही हमारा मन हल्का होता है बल्कि आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। कभी देखा है दूर से आते हुए किसी अनजान व्यक्ति को एक प्यारी सी मुस्कुराहट दे दीजिए, वो मुस्कुराहट उसके साथ एक लंबी दूरी तक चलेगी और जाने कितने चेहरों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। तो मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराना आपके लिए सबके लिए

0: किसी ने क्या खूब कहा है कि गमों की धूप में भी छांव बन जाती है हंसी, गमों की धूप में भी छांव बन जाती है हंसी, हर दर्द को पल भर में भुला जाती है हंसी। तो जीवन में अगर कोई भी समय आपको मिलता है तो एक खास समय निकालिए अपने लिए और अपने परिवार के बीच, अपनों के बीच बैठकर जोर से ठहाके लगा लीजिए। ठहाके लगाने का मन नहीं है तो कम से कम मुस्कुरा ही लीजिए। कई बार ऐसा लगता है कि हंसी मजाक में कोई कुछ कह देता है तो हमें ऐसा लगता है हमारे लिए गलत कह दिया। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को भूलकर हम सकारात्मक रूप से लेकर अपनी आत्मविश्वास के साथ जीवन के प्रति हल्का फुल्का नज़रिया अगर रखें तो मुस्कुराना बहुत आसान होगा। तो मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए और कुछ इस बात की तरह कि मुस्कुराने की आदत डाल लो दोस्तों, ये वही दौलत है जो मुफ्त में मिलती है। तो आइए हम संकल्प लेते हैं कि दिन में कम से कम एक बार मुस्कुराएंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: उसे सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को हाइड्रेटेड रखने, दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचने और घर से निकलते वक्त पानी साथ रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो प्यासा हो उसे पानी पिलाएं और जानवरों व पक्षियों के लिए भी बाहर पानी रखें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि परिवार और प्रियजनों का हालचाल पूछते रहें और इन मुश्किल दिनों में संवेदनशीलता के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इस समारोह में 33 विभागों के करीब 14,000 छात्रों को उपाधि दी जाएगी। 285 मेधावी छात्रों को स्वर्ण और रजत पदक से नवाजा जाएगा, जिनमें 199 छात्राएं शामिल हैं। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। इससे पहले खराब मौसम के चलते राष्ट्रपति का नाथुला दौरा रद्द करना पड़ा था। खजुराहो के पश्चिमी मंदिर परिसर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने 100 दिवसीय काउंटडाउन सीरीज के 25वें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें करीब 2,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि योग और खजुराहो दोनों ही हमारी महान भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं।
1: योग आज केवल व्यायाम नहीं बल्कि वन अर्थ वन हेल्थ की भावना को साकार करने वाला समग्र जीवन दर्शन बन चुका है। मध्य प्रदेश सरकार घर घर योग हर व्यक्ति निरोग इस संकल्प के साथ योग और आयुष को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। काउंट डाउन इवेंट के माध्यम से देश भर में लाखों लोग योग से जुड़ रहे हैं और युवा पीढ़ी भी उत्साह से इसको अपना रही है।
0: इस बार 21 जून का मुख्य योग कार्यक्रम कोलकाता में होगा, जिसकी थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। भोपाल के भारत भवन में आज सदा नीरा समागम का शुभारंभ हुआ। जल संरक्षण, पर्यावरण और भारतीय संस्कृति पर केंद्रित यह 7 दिवसीय कार्यक्रम 2 जून तक चलेगा। इसमें इसरो और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं के विशेषज्ञ विमर्श करेंगे। शाम को नृत्य नाटिका, लोक गायन और नौसेना बैंड की सिम्फनी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज माता रमाबाई अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि माता रमाबाई ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर वंचितों के उत्थान और शिक्षा के प्रसार में अहम भूमिका निभाई। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लातूर के डॉ. मनोज शिरूरे पर आरोप है कि उन्होंने 3 छात्रों को रसायन विज्ञान के लीक प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं दूसरे आरोपी पुणे के कोचिंग फैकल्टी तेजस शाह को भौतिक विज्ञान के लीक प्रश्न मिले थे। इस मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 49 जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में इन दिनों गर्मी का कहर जारी है। कल 16 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार चला गया। खजुराहो में तो पारा 46.4 डिग्री तक पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। आज भी निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। राहत की बात यह है कि 29 मई से आंधी और बारिश का दौर शुरू हो सकता है और जून के दूसरे हफ्ते तक मानसून भी दस्तक दे सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में ग्रीष्मकालीन सर्वे में पूर्व और पश्चिम वनमंडल में कुल 148 गिद्ध दर्ज किए गए हैं। प्रदेश की पुलिस में कंप्यूटर संवर्ग के 89 पदों पर भर्ती के लिए सफल उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 7 से 9 जून तक भोपाल के लाल परेड ग्राउंड और जबलपुर के रांझी स्थित परेड ग्राउंड पर होगी। पन्ना में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 27 मई से 2 जून तक जिले के 191 तीर्थयात्री श्री द्वारका सोमनाथ जी की यात्रा करेंगे और आगरमालवा जिला चिकित्सालय में आयोजित बैठक में आगामी सिंहस्थ के दौरान जिला चिकित्सालय में 300 अतिरिक्त बेड की मांग शासन को भेजे जाने पर चर्चा की गई। इस बुलेटिन पे इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। अब दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा, ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री

0: श्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के

0: अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
1: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं

0: की गई है। इस बीच केरलम हाई कोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HAIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
2: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
1: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
3: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
4: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
1: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं पहला नगमा पैचू बावरा फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल हैं और नौशाद का है संगीत।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।
4: मेरे वतन से।

0: हम सुन रहे थे दाग फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे दीवाना फिल्म का यह गीत, मुकेश की आवाज में हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत, रामी धोबन फिल्म से हेमंत कुमार की आवाज में राम मूर्ति के बोल और हीरेन बोस के संगीत से सजा हुआ ये प्यारा सा नगमा।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत जलपरी फिल्म से। सुमन कल्याणपुर की आवाज में जफर राही ने इसे लिखा, सुरेश कुमार ने इसे संगीतबद्ध किया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। यह था कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत। और आज्ञा दीजिए मुझे इस कार्यक्रम से। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी सहेलियों सखियों को और सखा को दीपा माहेश्वरी
2: आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
3: क्या बात है आरती, हम देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे पसीने में तरम तर हो रही हो आप और भागते भागते आ रही हो, क्या बात है। पूरी सखियों पूरी पसीने में हो रही है ये ऊपर से लेके नीचे तक
2: क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है कि बता नहीं सकते। मतलब बाहर आप थोड़ी देर के लिए भी जाते हैं ना तो एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं, इतनी गर्मी है, इतनी उमस हो रही है।
3: बात तो बिल्कुल सही है और भाई देखो इसमें अपना सब है, हमारे सभी साथी बहुत ध्यान रख रहे हैं, हम सब भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार एक दूसरे को अगर याद दिला दिया जाए ना तो अच्छा रहता है। वो क्या कहते हैं ना, रिवीजन होते रहना चाहिए,
2: बिल्कुल होते रहना चाहिए। और गर्मी के ये जो दिन है ना इसमें पसीना जब बहता है, बहुत ज्यादा पसीना निकलता है जब हमारे शरीर से, तो बहुत ज्यादा हमें पानी की कमी अंदर हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहें, बहुत ज्यादा मत पिए लेकिन थोड़ा थोड़ा घूट घूट भर के पानी पीते रहें, तो शरीर में नमी बनी रहेगी।
3: और ऐसे पेय जो ठंडे होते हैं तो जैसे कि जल जीरा हो गया है या आम का पन्ना, इसका भी सेवन करते रहें, और अपना गन्ने का रस है इसका करते रहें, नारियल पानी लेते रहें, ताकि जो खनिज है मिनरल्स हमारे शरीर में पसीने के साथ साथ निकल जाते हैं उनकी कहीं पे भी किसी तरह से कोई कमी ना हो, और जरूरत ना हो तो भर दोपहरी में बिल्कुल बाहर ना निकले, है ना।
2: और साथ ही
3: 11 बजे के बाद से तो ऐसा लगता है कि धूप जैसे तप रही है और हम 5 मिनट के लिए भी खड़े नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसा लगता है कि नहीं आज तो जाना जरूरी है तो पूरे तरह से अपने आप को ढक कर जाए, हाथ पे सर पे भी हम स्टोल लगाती हैं महिलाएं, और अब तो बंडाना भी आ गए हैं जो कि हमारे सखा भाई सब इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत तरह के अलग अलग आ गए हैं, तो उन सबको आप अच्छे से बिल्कुल अपने शरीर
2: बिल्कुल अपने
3: पर
2: को पूरा ढक के निकले जिससे कि धूप जो है वो बहुत ज्यादा आपको परेशान ना कर सके। और साथ ही आप जैसे खीरा है, ककड़ी है, इस तरीके जो पानी वाले जो फल हैं, जो सैलेड हैं, वो आप जरूर खाएं, और खाने से ज्यादा आप इनका सेवन करें और पानी पिए, बहुत ज्यादा जरूरी है समय अपने आप को रखना।
3: जी, और खाने में भी ऐसा नहीं है भाई, मन क्योंकि छुट्टियों के भी दिन चल रहे हैं ना, बच्चे भी आए हैं घर में और मेहमान भी हैं, कुछ ना कुछ तो अलग अलग तरह के व्यंजन तो बनते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि तला भुना ना हो, पर अगर खाना भी पड़े तो उसको सीमित मात्रा में लें, और दूसरे दिन कुछ हल्का भोजन, हल्का इस तरह का रेसिपी बना लें,
2: कोशिश करें कि हल्का फुल्का ही खाएं जिससे कि कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इस मौसम में अगर हम बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं तो शरीर के ऊपर बुरा असर तो पड़ता ही है क्योंकि हजम नहीं हो पाता ना वो चीज
3: जी,
2: तो इसलिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा हल्का खाना खाएं। अगर एक टाइम आपने भारी भोजन किया है तो आप दूसरे टाइम बिल्कुल हल्का लें,
3: हल्का
2: वगैरह लें।
3: और बात जब इतनी व्यंजन की चल रही है तो हम ये भी बताते चलते हैं अपना श्रोताओं को, सखियों को, कि आज हम चावल के व्यंजन के बारे में बातचीत करेंगे।
2: तरह, तो तरह आपके के घर में
3: जी
2: तरह तरह के चावल
3: तरह
2: के व्यंजन,
3: तरह के चावल के व्यंजन आपके घर में कोई स्पेशल बनता है क्या, तो वो जरूर बताइएगा। वैसे संदेश आए हैं पर हम चाहते हैं आपके घर में अगर चावल का कुछ ऐसा बनाना हो जाए तो आप क्या बनाएंगी, हमारी सखियां बताएं और हमारे सखा भी बताएं कि उन्हें किस तरह का
2: बिल्कुल, क्योंकि आजकल सखा भी बनाते हैं।
3: हाँ बिल्कुल,
2: हर घर में सखा भी इसमें भोजन बनाने में अपनी पूरी सहायता करते हैं सब कामों में। तो आप बताइए आपको कौन सी ऐसी कौन सा ऐसा व्यंजन है बहुत ज्यादा पसंद है जो आप बना आते भी हैं और खिलाना आपको पसंद है।
3: बिल्कुल, और आरती आज हमने हमारे जो भी सखी सहेली परिवार के सारे श्रोताओं को एक शब्द दिया है आलोचना, तो शब्द यहाँ से स्टूडियो से आए हैं, एक आप

0: तक पहुंचे हैं, तो आप बताइए इस शब्द आलोचना के लिए आपके क्या विचार हैं, क्या अनुभव हैं और क्या आपको लगता है ये
1: आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि इसको सकारात्मक तरीके से भी समझा जा सकता है और नकारात्मक तरीके से भी इसके पहलू हो सकते हैं,
0: और उसकी वजह से कई सारे जिंदगी में हम लोग ने अलग अलग तरह के अनुभव भी सब लोगों ने उसको जिया है ना, तो वो जरूर बताइएगा। और साथ में देखिए बुजुर्गों में जो एक मोबाइल के प्रति प्रेम जो हम देखते आ रहे हैं, हम अपने घर के नीचे गार्डन में या कुछ ऐसा कॉमन एरिया होता है वहां देखते हैं बड़े, मतलब बच्चे तो मोबाइल की तरफ है ही आकर्षण, अब जो घर के जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं उन्हें भी मोबाइल देखने की आदत बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, बढ़ रही है आदत, उसके फायदे भी हैं क्योंकि वो सीख भी रहे होते हैं कि टेक्निक क्या है, किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करें, अगर हम घर में अकेले हैं तो क्या क्या चीजें हमें इसके लिए जानकारी होनी चाहिए। और कुछ हमारे बड़े ऐसे भी होते हैं वो जो बहुत आसानी से चल फिर नहीं सकते, तो उनके लिए ये एक मनोरंजन का साधन भी हो जाता है। देखिए इसके सकारात्मक विचार भी
1: हर चीज के दो पहलू होते हैं,
0: गुण हर एक चीज के सिक्के के तो दो पहलू हमेशा होते हैं। तो बहुत सारी राय हमारे श्रोताओं ने तो लिख भेजी, हम चाहते हैं आप और लिख के बताइए
1: कि इसमें नकारात्मक पहलू क्या है, इसके है? और सकारात्मक क्या है। और साथ ही आज हम बात करेंगे साड़ियों संसार लेकर आए हैं,
0: तो साड़ियों तरह की साड़ियां आज कहां चलने वाले हैं।
1: आज हम साड़ी लेकर आए हैं कलमकारी साड़ी जो आंध्र प्रदेश में बहुत की है,
0: बहुत सारी सखियों को ये प्रिय होगी साड़ी, मुझे तो पूरा विश्वास है। तो बहुत सारे संदेश लिखने हमने अपने श्रोताओं को कह दिए हैं,
1: तो गीत सुन लेते हैं पहले।
0: चलो चलते हैं।

0: यही तो सवाल हम आरती से कर रहे हैं कि भाई आरती आप हमारी कौन है?
1: हम आपकी सखी हैं और सभी सखियां जो हैं अब सुन रही हैं उनकी भी सखी हैं, सखाओं के भी।
0: तो हम सबकी हैं सखियां सहेलियां और ये संसार है बातों का, ज्ञान का, मनोरंजन का और गीतों के सफर का, जहाँ बहुत सारी हम बातें करते हैं, बहुत सारी जानकारियां देते हैं। आज हम कलमकारी साड़ियों के बारे में बता रहे हैं।
1: बिल्कुल, साड़ियों के तो बारे में सुनने के लिए वैसे भी हमारी जो सखियां हैं, जो सखा तो इसलिए उतारू रहते हैं कि भाई चलो हम कोई गिफ्ट कर देंगे अपने।
0: बिल्कुल।
1: तो इस वजह से तो हम आज लेकर आए कलमकारी साड़ी। तो आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती और मसूलीपट्टनम कलमकारी साड़ियों की उत्कृष्ट डिजाइन और सुंदरता के जो जन्म स्थान, मतलब यहीं से ये साड़ियां निकली हैं। ये साड़ी कॉटन, मलमल और सिल्क जैसे फैब्रिक में आती हैं और ये पहनने में बहुत ज्यादा हल्की, आरामदायक और क्लासी लुक देती हैं। क्योंकि हम लोग ऐसी साड़ियां ढूंढते हैं ना कि थोड़ी एकदम आरामदायक हो और बहुत ज्यादा भारी ना हो।
0: बिल्कुल, क्योंकि आरती रोजमर्रा में पहनने की आदत उतनी बची नहीं है ज्यादातर महिलाओं की, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल हल्की फुल्की हो, कंफर्टेबल हो और साथ में एक एक जो उनके लुक आए,
1: गरिमामय लुक आए।
0: तो कलमकारी साड़ियां कला और कहानी कहने की परंपरा का संगम है। ये हाथ से बनी होती हैं, ब्लॉक प्रिंटेड डिजाइनों के लिए ये साड़ियां हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। इनके अनूठे रूपांकन और जीवंत पैटर्न इन्हें पारंपरिक अवसर और आधुनिक पहनावे दोनों के लिए पसंदीदा बनाते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रिंट होती है और हाथ से बनी होती है, फूल होते हैं, कहीं पे जानवरों के डिजाइन होते हैं, कहीं पे ज्योग्राफिक पैटर्न होते हैं, तो बहुत
1: सुंदर लगती हैं
0: जी।
1: और कलमकारी शब्द फारसी शब्द कलम और करी से बना है, जो कि यानी कि कलम और कारीगरी
0: जी,
1: जिस तरह से इसमें कारीगरी करते हैं ना, जिसका अर्थ है कलम का शिल्प। ये प्राचीन कला जो शैली है वो 3000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उत्पन्न कलमकारी कला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके जटिल हस्तचित्रण या ब्लॉक प्रिंटिंग का टेक्निक अपनाई जाती है।
0: बिल्कुल, और परंपरागत रूप से अगर देखें तो इन साड़ियों में महाभारत, रामायण, पुराणों के पौराणिक दृश्यों को दर्शाया जाता है। अक्सर इनका उपयोग मंदिरों की पृष्ठभूमि के रूप में किया जाता था। उस समय समय के साथ साथ कला का यह रूप फिर धीरे धीरे विकसित भी हुआ। फिर इसमें पुष्प, पशु और जैसे हम बात कर रहे थे ना, ज्यामिति आकृतियों को, इनको भी सबको शामिल किया गया।
1: बिल्कुल, और इससे कलमकारी साड़ियां विभिन्न अवसरों के लिए एक बहुत ज्यादा बहुमुखी बन गई। मतलब आप किसी भी अवसर पर इनको पहन सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल हैं, प्राकृतिक रंगों के उपयोग से इन साड़ियों को उनके विशिष्ट मिट्टी जैसे रंग और जीवंत रंग मिलते हैं। और कलमकारी डिजाइन आमतौर पर सूती, रेशम और यहां तक कि ऑर्गेन्जा जैसे कपड़ों पर तैयार किए जाते हैं, जो आरामदायक भी होते हैं और सुंदर भी दिखते हैं
0: जी। अब एक अगर साड़ी बनानी होती है सखियों, तो उसमें कई तरह के चरण है, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसे पूरा करने के लिए अक्सर हफ्तों लग जाते हैं। अब इनमें जितनी जो मनमोहक कलाकृति है, उसमें कृष्ण रास लीला है, पार्वती, विष्णु या महाभारत, रामायण के दृश्य चित्रित होते हैं। ये दिव्य आकृतियाँ कलमकारी साड़ियों में एक आध्यात्मिक आकर्षण इसे जोड़ती है।
1: बिल्कुल, और अक्सर लोग जब मंदिर वगैरह जाते हैं तो इनको लेना पसंद करते हैं
0: जी।
1: और ये साड़ी कला के माध्यम से समृद्ध प्राचीन इतिहास को संरक्षित भी करती है। पौधों और सब्जियों से निकाले गए प्राकृतिक रंगों से इसे जीवंत रंग और अनूठी बनावट मिलती है। रंगाई और छपाई की प्रक्रिया के बीच एक निश्चित अंतराल कलमकारी साड़ियों की कारीगरी को और भी ज्यादा जटिल बना देता है।
0: बिल्कुल, और कलमकारी साड़ी बनाने में एक पीस को बनाने में आप ये समझिए कि 2 से 3 हफ्ता लग जाता है। बेहतर रंग अवशोषण के लिए कपड़ों को धोया जाता है, गोबर और दूध से उपचारित किया जाता है, गुड़ और लोहे के जंग से बने रंग का उपयोग करके वो काली रूपरेखा, जो एक उसमें बॉर्डर हमेशा जो इसमें आकृतियों की बॉर्डर होती है वो काले कलर की होती है, तो वो इस तरह से तैयार की जाती है। फिर जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रंगों को धीरे धीरे एक एक परत दर परत फिर लगाया जाता है
1: जी। कितना अलग ही तरीके का एकदम प्रोसेस है।

0: और हम देखिए ना जाके दुकान पे, फिर कितना बार्गेनिंग करते हैं,
1: हाँ
0: हम जानते ही नहीं कि साड़ी, अगर आप मतलब एक प्योर कलमकारी साड़ी लेने जाते हैं तो कितना उसमें
1: बहुत
0: उसमें
1: मेहनत है,
0: कितनी मेहनत है,
1: और
0: परिश्रम है।
1: बिल्कुल। और पीले रंग के लिए हल्दी का प्रयोग होता है, लाल रंग के लिए अनार का छिलका, और नीले रंग के लिए नील। प्रत्येक रंग लगाने के बाद धुलाई और सुखाने की आवश्यकता होती है। कुछ कपड़ों को रंग स्थायी रूप से लगाने के लिए उबाला जाता है। एक बार जब रंग कपड़े पर पूरी तरह से समा जाता है तो कारीगर हाथ से चित्रकारी करके या ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा डिजाइन बनाते हैं।
0: क्या बात है। और कलमकारी डिज़ाइनों को उत्तम फिनिशिंग और बारीकियां देने का काम केवल वर्षों के अनुभव और उत्कृष्ट कौशल वाले कारीगर ही कर सकते हैं। और डिज़ाइनों की रूपरेखा बनाने के लिए एक महीन नोक वाले ब्रश या स्याही से भरे लकड़ी के ब्लॉक का इसमें उपयोग किया जाता है।
1: जी, और रूपरेखा पूरी होने के बाद रंगों को भरा जाता है। फिर रंगों और प्राकृतिक बनावट को पक्का करने के लिए साड़ी को धूप में सुखाया जाता है। अच्छी तरह सूखने के बाद अतिरिक्त रंग को हटाने के लिए कपड़े को दोबारा धोया जाता है। और कलमकारी डिज़ाइन भारतीय पारंपरिक कला और रचनात्मकता की चिरस्थायी विरासत का सम्मान करते हैं।
0: जी, कलमकारी साड़ियाँ आमतौर पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती हैं, इसलिए इन्हें जब इनकी देखभाल होती है बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। इन्हें हमेशा अलग से धोइए, ठंडे पानी और हल्के डिटर्जेंट का प्रयोग करें। साड़ी को ज़्यादा देर तक पानी में न भिगोएं, क्योंकि इसको अगर आपने घर में धोया भी है, ड्राई क्लीनिंग नहीं कराया, घर में धोया भी, तो बस डालना है और बाहर निकाल लेना है। और इसे छाया में ही सुखाना है, तेज़ धूप में कभी नहीं सुखाना है। कम आँच पर उल्टी तरफ से ही इस्त्री इसे घरना है।
1: बिल्कुल, और सही देखभाल करने पर कलमकारी साड़ियाँ वर्षों तक चलती हैं। समय के साथ ये और भी मुलायम होती जाती हैं और इनके रंग भी बरकरार रहते हैं। क्योंकि सब कुछ हाथ से बनाया जाता है, इसलिए कोई भी दो साड़ियाँ पूरी तरह से एक जैसी नहीं होती। मामूली अंतर ही इसकी प्रामाणिकता का सूचक होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और इसके जो नेचुरल रंग है, आध्यात्मिक डिज़ाइन, कलात्मक प्रक्रिया, समृद्ध परंपरा, संस्कृति और कला का उत्सव मनाते हैं। विकास, सद्भाव, संरक्षण और दिव्य आकर्षण का प्रतीक प्रत्येक कलमकारी साड़ी पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी बयां करती है। और ये सच में ये साड़ियाँ इतनी सालों तक चलती हैं कि हाँ, नानी माँ को दे सकती है, माँ अपनी बेटी को दे सकती है, तो आपके लिए एक धरोहर के रूप में ये साड़ी बनकर आती है।

0: हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल होता है ना,
1: बिल्कुल,
0: कि साड़ियों के बिना हमारा मन ही नहीं लगता,
1: मन ही लगता। और अब हम आ जाते हैं अपने अगले विषय पे।
0: हाँ, वो भी तो कुछ ऐसी चीज है जिसके बिना बिल्कुल
1: मन नहीं लगता है
0: भाई। बात हम सिर्फ बुजुर्गों की या बड़ों की कर रहे हैं, लेकिन सबका हाल कुछ
1: बच्चे बूढ़े जवान सबका एक ही एक ही है बिल्कुल, जिसके लिए सब लोग मतलब जिसके बिना जी नहीं सकते हैं, वो है मोबाइल।
0: बिल्कुल। और ये स्मार्टफोन ना आरती हमारे जीवन का जैसे एक अभिन्न अंग सा बन गया है।
1: जी,
0: जीवन को आसान बनाने के लिए हम तरह तरह के गैजेट्स पे देखो ना आजकल निर्भर होते ही चले जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लोग अपने कामों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर विश्वास भी करते थे, लेकिन आज हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण गैजेट है वो है हमारा स्मार्टफोन।
1: जी, चाहे कॉल करना हो, चैट करना हो, खरीदारी करनी हो, पैसों का लेन देन करना हो या कुछ और, हमारा स्मार्टफोन सब कुछ संभाल लेता है। बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल का जो शौक है वो उनके लिए एक वरदान और अभिशाप दोनों ही हो सकता है। सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के जरिए बुजुर्ग अपने दूर रहने वाले बच्चों और रिश्तेदारों से आसानी से जुड़ सकते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि वरदान की तरह है।
0: बिल्कुल सही कहा। और ये किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या मदद की जरूरत पड़ने पर मोबाइल एक जीवन रक्षक साबित होता है। इसके अलावा मदद पहुंचाने के लिए जीपीएस से उन्हें ट्रैक करना भी आसान हो जाता है। मोबाइल पर वो अपनी पसंद के पुराने गाने हो या भजन हो, धार्मिक प्रवचन हो या समाचार, जो भी चाहें आसानी से देख सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, घर बैठे ऑनलाइन बिल जमा करना, दवाइयां मंगाना या बैंकिंग से जुड़े काम करने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बस एक क्लिक पर वो सारा काम बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। कई मोबाइल फोन में स्वास्थ्य संबंधी एप्स भी होते हैं जिससे बुजुर्ग व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की निगरानी भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और साथ ही दवाओं का समय पता लगा सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से जुड़ सकते हैं। मोबाइल की ई पुस्तकें भी होती हैं, संगीत वीडियो जैसे कई मनोरंजक गतिविधियों ये हमें प्रदान करते हैं। तो बढ़ती उम्र में दिमाग को भी सक्रिय रखना पड़ता है ना, तो उस वो भी रहता है और मनोरंजन भी हमारे बड़ों को मिलता रहता है।
1: बिल्कुल। और मोबाइल फोन अब महज विलासिता के उपकरण नहीं रह गए हैं, ये जीवन रेखा की तरह बन गए हैं जो बुजुर्गों को अनेक लाभ पहुंचाते हैं। संचार और आपातकालीन सहायता से लेकर ऑनलाइन खरीदारी और बैंकिंग तक ये उपकरण कई ऐसे फायदे प्रदान करते हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल, सभी उपकरणों की तरह तकनीक को समझना और सही तरह से इसका उपयोग करना जरूरी है। लेकिन आज जिस तरह से युवाओं के साथ बुजुर्गों में फोन का प्रेम बढ़ रहा है, वो दूसरों से बातचीत करने के बजाय स्क्रीन देखने में, हम ऐसा देख रहे हैं कि स्क्रीन देखने में समय उनका ज्यादा बीतता है और इससे अवसाद हो सकता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत ज्यादा समय तक अगर इन सब चीजों में लगे रहते हैं ना, तो एक जो हमारा जो दिमाग है ना वो उसमें लगे लगे अवसाद का शिकार होने लगता है, डिप्रेशन सा होने लगता है हमें,
0: क्योंकि वो बाहरी दुनिया से ऐसा लगता है जैसे कट से गए और घंटों फोन पे गर्दन झुकाए अगर देखते रहते हैं तो एक किसी और ही दुनिया में चले जाते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: और वो हमारे शारीरिक बनावट पे भी बुरा असर डालता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि एक ही तरीके के उसमें हम बैठे रहते हैं, एक ही तरीके के पोज बनाए हम बैठे होते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से परेशान करता है। और हम सभी ने बाहर घूमते फिरते देखा ही है कि लोग अपने फोन में इतना मगन रहते हैं कि वो अपने काम का आनंद ही नहीं ले पाते। और जब बुजुर्ग लोग परिवार के साथ समय बिताते हैं या अन्य गतिविधियों में स्क्रीन से चिपके रहते हैं तो वो खुद को और अपने प्रियजनों को उन यादों से वंचित कर देते हैं जो जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बन सकती थी, जब वो साथ में सबके बैठ के बातें करते करें।

0: या बच्चों के साथ में खेलें, या उनसे कुछ सवाल पूछें, उन्हें अपने अनुभव बताएं। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो खेलते हैं अपने दादी दादा के साथ में, तो वो जो समय है वो उनका रह जाता है।
1: बिल्कुल, वो कहीं छूटता सा चला जा रहा है। एक रिपोर्ट भी आई आरती इसमें कि अब बच्चों की तरह बुजुर्ग में भी फैमिली टाइम के दौरान सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग के साथ साथ AI चैटबॉट से चैटिंग में लगे रहते हैं। ये इस तरह की रिपोर्ट आई है। और एक और रिपोर्ट आई है कि अगर स्मार्टफोन, टैबलेट और TV समेत सारे डिजिटल डिवाइसेस को मिला लिया जाए तो बुजुर्ग लोगों का स्क्रीन टाइम युवाओं से ज्यादा
0: बिल्कुल
1: हो रहा है।
0: ये शोध में सामने आया है कि बुजुर्ग युवाओं से ज्यादा फोन देख रहे हैं, और बहुत ज्यादा फोन देखने की वजह से फोन से निकलने वाली जो नीली रोशनी होती है, वो जो ब्लू लाइट कहते हैं जिसे, वो जो नींद लाने वाला हार्मोन होता है वो उसको रोकती है, जिससे रात में ठीक से नींद नहीं आ पाती और सारे दिन की दिनचर्या बिगड़ जाती है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती ना तो सारा दिन अजीब सा रहता है, बिल्कुल सुस्ती छाई रहती
1: और
0: है
1: और हम शिकायतें करते रहते हैं आज हमारी नींद अच्छे से नहीं हुई, आज हम परेशान से हो रहे हैं। तो एक कहीं कारण ये भी देख लेना चाहिए कि कहीं देर रात तक हम फोन पे तो नहीं बैठे हुए।
0: बिल्कुल, और बुजुर्गों में फोन की लत डिजिटल डिमेंशिया भी तनाव वाला भी और तनाव भी पैदा कर रही है, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन टाइम से दिमाग पर दबाव पड़ता है, भूलने लगते हैं हम चीजों को।
1: हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल सही। और भूलने की आदत और चिड़चिड़ापन देखो ना बढ़ता चला जाता है। सोशल मीडिया या वर्चुअल दुनिया में समय अधिक बिताने से वो जो असल की दुनिया है उसमें अकेलापन उनका बढ़ने लग जाता है, डिप्रेशन का कारण बन जाता है फिर ये। इसके अलावा घंटों गलत तरीके से झुक कर बैठे रहना, फोन चलाने से गर्दन, रीढ़ की हड्डी, आप ये देखिए सब में उनमें दर्द की ये शिकायतें करने लगते हैं।
0: और फोन में उलझे रहने के कारण लोग टहलना बंद कर देते हैं, जिससे घुटनों के दर्द और मोटापे की समस्या घेर लेती है, और लगातार छोटी स्क्रीन देखते रहने से आंखों में सूखापन, जलन और धुंधलेपन की समस्या भी हो जाती है। और बहुत से बुजुर्ग अक्सर तकनीकी रूप से इतने ज्यादा बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं, क्योंकि शहरों में छोड़ दीजिए गाँव में या और किसी ऐसी जगहों पर जहाँ पे बहुत ज्यादा वो तकनीकी रूप से उसमें सुदृढ़ नहीं हुए हैं, तो वो परेशानियों का कारण भी बन सकता है।
1: बिल्कुल, और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण बुजुर्ग अक्सर ऑनलाइन ठगों के जाल में भी फंस सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और फंस भी जाते हैं। ऐसे में लॉटरी, बैंक या सस्ते सामान के जो लुभावने संदेश आते हैं उसके चक्कर में भी आ जाते हैं। उसके बदले में वो अपनी गाड़ी, जो कमाई होती है मेहनत से कमाया हुआ पैसा, वो सब गवा बैठते हैं। तो बड़ों के पास समय खूब तो रहता है, लेकिन ऐसे यूजर्स के लिए कंपनियां एंडलेस गेमिंग के कंटेंट को डेवलप कर रही है।
0: ऐसे तो, गेम बना रहे हैं ना वो लोग कि जिससे कि वो गेम में लगे रहे, फिर अगला लेवल करना है, अगला लेवल करना है, जैसे कि बच्चों में होता है।
1: हाँ,
0: वैसे बुजुर्गों के लिए भी अलग तरीके की गेम्स बनाए जाने कि वो अगले लेवल पे जाने के लिए पैसा लगाएं, तो जिससे कि उनको
1: तो फायदा और उनको लुभावना और आकर्षित करने वाली चीजें हो जाती है और वो फंस जाते हैं उसमें। तो अपनी पैसों को भी संभाल के रखें, वो ध्यान रखें कि हम इन सब चीजों से।
0: और सबसे बड़ी बात है दीपक कि हमको वास्तविक दुनिया से ज्यादा जुड़ना चाहिए बजाय इस तरीके के वर्चुअल दुनिया में रहने के।
1: बिल्कुल, और इसी को लेके देखो ना कई सारे संदेश हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। ये एक संदेश कहता है कि बड़े बुजुर्गों के हाथ में मोबाइल आने के अनेक फायदे हैं। वो अपने पुराने मित्रों से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर मुलाकात हो जाती है, शरीर साथ नहीं देता है मोबाइल लेकिन तो साथ देता है, वो आपस में परिवार के साथ भी जुड़े रहते हैं, मोबाइल आने से उन्हें बहुत फायदा हुआ है।
0: बिल्कुल, और एक कविता भी एक हमारी सखी ने लिखकर भेजी है जिसको हम पढ़ लेते हैं। गुजरे हुए जमाने में घर के बड़े बुजुर्ग करते थे चिट्ठी पत्री मुलाकातों का इंतजार, जीवन सीधा साधा था, यारों का मेला भी था, तब गप्पों की नगरी में कोई नहीं अकेला था, सब सुख दुख के साथी थे, होठों पे मुस्कानें थी, जब से आए नेट की आंधी सब उसमें उड़ चले, उसने इससे सीखा उससे सीखा, ज्ञान का पान कर लिया, अब तो व्हाट्सएप चैटिंग करते करते थकते नहीं हैं उनके हाथ, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया में खूब रंग जमाते हैं, हंसी मजाक और किस्से जमकर खूब सुनाते हैं, नींद उड़ गई उनकी लेकिन रातों को भी बतियाते हैं, डर है इतना हमको कहीं ना हो वो बीमार, फ्रॉड कॉल्स में फंसे कभी ना हो जी का जंजाल, डॉक्टर से सब हाल बताकर मिनटों में दवा मंगाते हैं, बुजुर्ग बने हैं बड़े सियाने दवा खोज कर खाते हैं, उस पीढ़ी से इस पीढ़ी के दौर में वो रम जाते हैं, नए जमाने के संग चलकर वे खूब मजे उड़ाते हैं। ये कविता उन्होंने भेजी है,
1: क्या बात है, बहुत सुंदर कविता। और बातों का ये सिलसिला जारी रखते हैं एक अंतराल के बाद।
0: जी,

0: हम अंतराल के बाद एक संदेश सुनते हैं और फिर बातों का सिलसिला जी जारी रखेंगे।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: हमारे एक श्रोता ने संदेश लिखा है कि भाई देखिए, मोबाइल बड़े हो या बुजुर्ग या बड़े, सबके लिए अच्छा तो नहीं है हर वक्त इसका इस्तेमाल करना,
1: बिल्कुल,
0: पर घर में कुछ कुछ घर के लिए इसमें ये होता है कि क्लेश भी हो जाता है, जैसे कि पड़ोस के बुजुर्ग हमेशा मोबाइल पर भजन कीर्तन सुनते रहते हैं और वो भी थोड़ी ऊंची आवाज में, हमेशा उनका मोबाइल ऑन रहता है घर में भी और

0: मोबाइल बड़े हो या बुजुर्ग या बड़े, सबके लिए अच्छा तो नहीं है हर वक्त इसका इस्तेमाल करना,
1: बिल्कुल,
0: पर घर में कुछ कुछ घर के लिए इसमें ये होता है कि क्लेश भी हो जाता है, जैसे कि पड़ोस के बुजुर्ग हमेशा मोबाइल पर भजन कीर्तन सुनते रहते हैं और वो भी थोड़ी ऊंची आवाज में, हमेशा उनका मोबाइल ऑन रहता है घर में भी, और उनके घर के भी सदस्य चिढ़ जाते हैं और इसी तरह बातों को लेकर के माहौल कुछ गर्म हो जाता है। वो ये कहती हैं कि अगर आपके पास, आप उनके पास प्यार से उनको ये कह दिया जाए कि 2 घंटे मोबाइल बंद कर दीजिए, बच्चों का पढ़ने का समय है, या 2 घंटे आप हमारे साथ बैठिए बातें कीजिए, तो उन्हें लगता है हमारे सखी को वो हमेशा मोबाइल पर नहीं बैठे रहेंगे। और साथ में ये भी कहती हैं कि कुछ गलती उनकी भी नहीं है, या यूं कहिए कि कुछ इस तरह की समस्याएं हो जाती है, जैसे मोबाइल पर पूरा वॉल्यूम इसलिए उस पर सुनते हैं क्योंकि उन्हें कम सुनाई देता है। साथ में कहती हैं फ़ायदा तो मुझे यही नज़र आता है कि कुछ कुछ बातें करते रहते हैं, भजन कीर्तन सुनते रहते हैं, कभी कभी फिल्में भी देख लेते हैं, तो ठीक है, अति हर चीज़ की बुरी होती है, उसके चलते उनकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी आंखों में ड्राइनेस आ जाता है, तो जब समय पर दवा नहीं मिलती तो उसके लिए भी वो हल्ला करते हैं, तो हर चीज़ का एक संतुलन उन्हें ज़रूरी है।
1: ये जो चीज़ें हैं इनकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए, बड़े लोगों के लिए ही बुरी हैं, अगर कोई इफ़ेक्ट होता है, अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो सभी के लिए, बच्चे हों उनकी भी आंखों पर ख़राब असर पड़ता है, बड़ों के लिए भी, है ना। तो कहने का मतलब बस इतना है कि आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझें, समझ के तब उसका उपयोग करें, ताकि आप किसी इस तरीके की चीज़ों में ना फंसें, जैसे गेम्स हैं या इस तरीके के जो विज्ञापन आते हैं, जो लॉटरी निकला या आपके ऐसे इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो उसमें ना फंसें, ठीक है, जिससे कि वो इतनी अपनी पूरी उम्र लगा के वो जिस पैसे को कमाते हैं वो अपनी कमाई को इस तरह गंवा ना दें, बस कहने का ये मतलब है, और बेहतर होगा इस तरीके की चीज़ों को हम समझें।
0: और एक और संदेश आया है कि बुज़ुर्गों में बढ़ता मोबाइल प्रेम और या फ़ायदे, तो वैसे देखें तो मोबाइल का जो सही उपयोग करता है उसके लिए सही है, पर बड़े जो हमारे घर के बूढ़े हैं वो लोग मोबाइल चलाते हैं तो क्या बुराई है, वो कुछ देर कुछ देख लेते हैं, सीखते भी हैं कुछ दुनियादारी की बातें, उनका समय एक तरह से अच्छी तरह से गुजर जाता है, इस उम्र में कुछ बुरा तो वो शायद सीखते भी नहीं हैं, कुछ इस तरह से एक उन्हें लगता है कि एक तरह से अच्छा है मोबाइल फ़ोन बड़े बुज़ुर्गों के लिए।
1: नहीं, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल, ये हम कह भी ये नहीं कह रहे कि वो कोई चीज़ बुरी है, सिर्फ उन अपने शरीर का ध्यान रखते हुए चीज़ें करें, अपनी आंखों का ध्यान रखते हुए चीज़ें को करें, तो कोई चीज़ इस तरह से बुरी नहीं, बल्कि और फ़ायदेमंद है,
0: बल्कि
1: वो अपना दवाइयाँ मंगा सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं या जो जिनसे वो बात नहीं कर पाते, जा नहीं पाते मिलने, उनसे बातें कर सकते हैं, उन्हें देख के बातें कर सकते हैं वीडियो कॉल पर, बहुत फ़ायदे हैं। नुकसान बस इतना है कि बहुत ज़्यादा अगर उसका उपयोग करेंगे तो आंखों में या उसी पोस्चर में एक ही तरीके से बैठे हुए रहेंगे तो शरीर में परेशानी आ सकती है, और दूसरी चीज़ें चलना फिरना, जो आपसी बातें करते हैं वो चीज़ें छूटने लगती हैं कहीं पीछे, और वो इतना पर कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उनको लगता है कि हाँ उसको मोबाइल को देखते देखते कि अगर कि हम ये चीज़ कर पाते, काश हम, तो वो अवसाद में भी आने लगते हैं। बस ये चीज़ें जो बुरा असर अगर आप पे नहीं डाल लें तो वो उसका उपयोग बहुत अच्छा है,
0: बिल्कुल सही
1: जब तक आप,
0: और जो अकेले रहते हैं घर में सीनियर सिटीजन
1: जी,
0: उनके बच्चे बाहर हैं या नहीं उनके किन्हीं कारणों से उनके साथ रह पाते हैं, तो उनके लिए इसका बहुत फायदा है
1: जी, बिल्कुल,
0: कि वो अपने बच्चों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं, यहाँ तक कि कई कई घरों में वो नहीं CCTV टाइप लगा दी जाती हैं ताकि वो अपने आप को दिखा सकते हैं, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं, और टेक्नोलॉजी सीखने में बुराई नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: बस अगर उसका सही तरीके से संयमित इस्तेमाल करना
1: के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी है, हर इंसान के लिए जो भी इन सब इन गैजेट्स का उपयोग कर रहा है, सभी के लिए चीज़ें हैं
0: जी।
1: और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो बुजुर्गों के लिए मोबाइल बहुत फायदेमंद होता है, मोबाइल के जरिए वो लोगों से जुड़ पाते हैं और कुछ काम स्वयं कर पाते हैं, जैसे बैंकिंग है, डॉक्टर से परामर्श करना है, टिकट बुक करना है, और बताती हैं कि वो मेरे पापा भी पहले छोटा फ़ोन चलाते थे, लेकिन कुछ वर्ष पहले जब हमने उन्हें स्मार्टफोन लेकर दिया तो उन्होंने बहुत जल्दी उसे चलाना सीख लिया, अब सुबह उठकर उसका सबसे पहले यही काम उनका रहता है कि वो वीडियो कॉल करके अपनी बहन से बात करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं, इसके अलावा वो विविध त्योहारती भी फोन भी जो होता है उसको भी फोन पर ही सुनते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये।
0: तो चलो विविध भारती का ही कुछ एक गीत सुनते हैं।

0: तो अब हम कहाँ आ गए हैं?
1: अब हम दूसरे सेगमेंट पर आ गए हैं। अपने विषय है हमारा, जो हमने शब्द दिया था अपने श्रोताओं को कि आप इस पर अपने विचार लिखें, वो है आलोचना।
0: बिल्कुल, और बहुत सारे विचार आए हैं, बहुत सारे उन्होंने अपने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं। ये पहला संदेश कहता है कि अगर सकारात्मक हो तो उसे समीक्षा कहते हैं। किसी किताब, कविता, नाटक, फिल्म या कार्यक्रम की भली या बुरी विशेषताएं सहज सुंदर शब्दों में सूचित करना। आलोचना अगर जानबूझकर नकारात्मक वृत्ति से हो तो उसे कहते हैं बुराई, जिसमें ऐसे आलोचना ही ज्यादातर दिखाई देती है, जिसमें मत्सर अहंकार की गंध आती है।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि भाई आज का शब्द आलोचना है, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है, और ऐसा देखा जाता है कि लोग वाह वाह तो सुनना चाहते हैं लेकिन आलोचना नहीं, ये लोगों की प्रियता की बात है। फिर वो है ना कि मीठा मीठा गप और तीता तीता थू, आलोचना ऐसे ही तिक्त रसयुक्त ऐसी चीज है जो, किंतु जो लोग आलोचना सुनने के प्रेमी होते हैं तो वो लोग अपने में उससे कुछ सुधार भी कर लेते हैं। इस दृष्टिकोण से आलोचना एक सुधार का कार्य भी करती है।
0: क्या बात है, अच्छी उन्होंने जानकारी हमें हमारे श्रोता ने लिख भेजी। अब एक ये संदेश कहता है कि आलोचना किसी कार्य के अच्छे और बुरे दोनों पहलू को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है और उन्हें दूर करने के लिए मत देती है। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। बिना किसी निष्पक्षता या भेदभाव के होनी चाहिए आलोचना, रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ आपके रिश्ते अगर बिगड़ जाते हैं, बल्कि मतलब रिश्ते बिगाड़ देता है ये, बल्कि तरीके से की जानी चाहिए कि सामने वाला इंसान उसे अपनी कमी सुधारने के लिए उसके बारे में सुनने का उसको मौका मिले और फिर वो उसे दूर करने में मददगार साबित हो।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना का सही अर्थ केवल किसी की कमी निकालना नहीं बल्कि किसी व्यक्ति विचार या कार्य को गहराई से समझकर उसके गुण और दोष को का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। अगर आलोचना सही भावना और अच्छे उद्देश्य से की जाए तो इंसान को आगे बढ़ने और खुद को सुधारने की प्रेरणा देती है, लेकिन जब आलोचना केवल अपमान या निंदा के लिए की

0: है तो मन को चोट पहुंचाती है, और हमें आलोचना से घबराने की बजाय उसे सीख की तरह से लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी कमियां वही लोग बताते हैं जो हमें बेहतर बनता देखना चाहते हैं। और साथ ही हमें अपने किसी भी आलोचना करते समय अपने शब्दों पर विनम्रता और सम्मान बनाए रखना चाहिए, और सच्ची आलोचना वही है जो इंसान को तोड़े नहीं बल्कि उसे और भी बेहतर बनने की राह दिखाए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने,
1: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि आलोचना तब अच्छी होती है जब मन में कटुता के भावना हो, सलाह हो, सुझाव हो, तब आलोचना लाभदायक मार्गदर्शक बन जाती है, सामने वाला हमेशा कृतज्ञ होता है।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना किसी भी कार्य के अच्छे और बुरे पहलू दोनों को दिखाती है, ये सिर्फ एक बुराई नहीं है बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है, उनको दूर करने के लिए मत देती है कि आप कैसे दूर कर सकते हैं इस चीज़ को। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है, ये बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए, और आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए कि किसी के साथ आपके रिश्ते बिगाड़ दे, बल्कि इस कैसे की जानी चाहिए कि वो सामने वाले को अपने कमी को सुधारने में मदद कर सके।
1: तो अब क्या करना चाहिए?
0: एक गीत सुनना चाहिए।
1: चलिए

0: आरती देखो, हमारे श्रोता कह रहे हैं कि भाई हमारे सिर्फ होश नहीं उड़े हैं, अब हमें कुछ तृप्त भी कीजिए क्योंकि हमें अब कुछ खाने की इच्छा हो रही है।
1: खाने की इच्छा, तो आज हम लेके आए चावल के व्यंजन जो हमारे श्रोताओं ने खूब अच्छे से बहुत अच्छी ढेर सारी रेसिपी भेजी है जिसको हम जाके घर पर भी बना सकते हैं। तो
0: पहली रेसिपी कौन सी बताने वाली हैं आप?
1: पहली रेसिपी मैं बताने वाली हूँ गाजर और चावल की खीर।
0: क्या बात है,
1: मीठी मिठास से शुरुआत करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम गाजर और 1/4 कप

चावल और 1.5 लीटर दूध और आधा चम्मच इलायची पाउडर, 10 काजू भीगे हुए, 1 चम्मच घी और स्वाद अनुसार चीनी। आवश्यकता के अनुसार ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए होगा आप वो से ले सकते हैं। और साथ ही इसकी विधि बता देते हैं। तो सबसे पहले गाजर को धोकर कद्दूकस कर लीजिए, फिर छोटे चावल को धोकर 30 मिनट तक पानी में भिगा कर रखें, काजू को भी पानी में भिगा कर रखें, फिर 2 चम्मच चावल और काजू में थोड़ा सा दूध डालकर उसको दरदरा पीस लीजिए। एक तरफ एकदम सिम पर फ्लेम पर दूध को उबलने के लिए रख दीजिए। अब एक कढ़ाई या पैन में 1 चम्मच घी डालकर गर्म कर लीजिए, फिर कद्दूकस किए हुए गाजर को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर आप भून लीजिए। अब इसमें आप दूध डाल दीजिए और तब तक पकाइए जब तक कि खीर थोड़ी गाढ़ी ना होने लगे। अब इसमें काजू का पेस्ट डालकर 2 मिनट और पकाइए, फिर इलायची का पाउडर और अपनी पसंद के जितने भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप इसको डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यदि खीर ज्यादा गाढ़ी लग रही हो तो आप ऊपर से आधा कप दूध डालकर 1 मिनट और पकाइए।

0: और उसके बाद फटाफट फटाफट चलाइएगा ताकि वो दूध उसमें एब्जॉर्ब होने लग जाएगा और इसमें मावे का स्वाद आ जाएगा। और इसी समय चीनी डालें और अच्छे से मिक्स करके धीरे धीरे चीनी मेल्ट होने लगने लगे तब तक आप उसको चलाइए। अब इसके बाद आपके पास जो पाउडर है आप वो पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं और फिर आधा घी जो बचा है वो उसमें आप डालिए और फिर से इसमें जो भुने हुए बादाम हैं काजू हैं जो आपने भून के रखे हुए हैं चाहे तो भून लीजिए ना चाहे तो आप थोड़ा दरदरा पीस के भी उसको डाल सकते हैं और काजू किशमिश को अलग से घी में उसको थोड़ा सा भून लीजिए वो डाल लीजिए। फिर इलायची को चीनी डालकर मिक्सी जार में पीस लें और ये पीसी हुई इलायची भी इसमें डाल दीजिए और फिर छिलके सहित इसको आप मतलब पीस लीजिए अलग से तो खूब अच्छे से ये इलायची पाउडर बन जाती है। इसके बाद अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो आपने भून रखे हैं उसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ठंडा होने पर लड्डू इसके बांध लीजिए। आप देखिए कि चावल की जो चावल के आटे के पिन्नी है ये बनकर तैयार हो गई है।
1: बहुत ही बड़े लगते होंगे और
0: हाँ बिल्कुल
1: जी बिल्कुल। और अब एक हम छोटा सा एक ले लेते हैं।
0: चलिए
1: तो वो मैं बताते हैं कि चावल का डोडा इसमें बताते हैं कि बहुत ही अच्छा बनता है जिसमें टमाटर की चटनी या दही के साथ खाया जाता है। ये सादा भी बनता है और हरी लहसुन के पत्ते हरी धनिया के पत्ते प्याज के पत्ते टमाटर आलू बारीक कटे हुए मिलाकर नमक मिर्च डालकर गूंथ लेते हैं और हाथ से थपथपाकर तवे पर सेकते हैं। चाहे तो बेल कर भी बना सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है खाने में।
0: चलिए तो हम इसको भी खाकर देखेंगे बनाकर देखेंगे लेकिन अभी तो सुन लेते हैं हम ये गीत।

0: आरती, देखो ना, बातों का सिलसिला तो लगता नहीं कि कहीं खत्म हो सकता है ना, लेकिन हमारा समय की जो सुइयां
1: समय है, हमें सीमित समय दिया गया है बात करने के लिए,
0: तो आज तो हम लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि कल दो सखियां आकर के फिर ढेर सारी बातें करेंगे और बहुत सारा होगा मनोरंजन। आप सभी को दीपा माहेश्वरी
1: आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनीता दुबे को। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता दुबे। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में आके। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। और जो विविध भारती का जो पेनिट्रेशन जो रूरल में है, वो शायद ही किसी भी दूसरे रेडियो चैनल का है। और चूंकि हमारे भारत के खुद गवर्नमेंट का है, तो इसका जो सेल्फलेस वर्क है वो कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। और मेरे लिए गौरव की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया है आज।
0: क्या बात है, अपने बारे में सबसे पहले थोड़ा बताइए कि आप किस इलाके से आती हैं और मेडिकल की फील्ड में आप कैसे गई हैं?
1: वैसे तो मेरा इलाका पूरा भारत ही है
0: जी,
1: लेकिन ऑफ कोर्स मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में ही हूँ। और ऑफ कोर्स बोरीवली ही नज़दीक में है आपके स्टूडियो के पास। और क्योंकि हम लोग का नेटिव प्लेस भदोही से है,
0: बनारस के पास।
1: पहले बनारस होता था, अभी वो भदोही हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया। और थोड़ी पढ़ाई मेरी वहाँ पर भी हुई है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे लड़कियों का एजुकेशन न के बराबर था। तो आई एम फर्स्ट चाइल्ड टू डू 12th। उसके बाद जो भी पढ़ाई हुई, चाहे वो मेडिकल की हुई या हमारी जितनी पब्लिक वर्क है, वो डेफिनेटली हर एक चीज़ में पहला ही है। लेकिन मैं

0: नहीं हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे, हमारे दादाजी ने शुरू किया था सेवाश्रम इंटर कॉलेज, जो 1923 में बनी थी, और उसके माध्यम से, और आज एक डिग्री कॉलेज भी उस गांव में है जहाँ पे बीएड है, आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर्स हैं, ऐसे लोग वहाँ से पढ़ के बाहर निकल रहे हैं और देश भर में नाम कमा रहे हैं और कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ज़रूर मैं पहली थी, लेकिन आखिरी नहीं हूँ। और जिस तरह से काम हमारी संस्था, हमारी मेडस्केप इंडिया कर रही है, उसके इंस्पिरेशन से कई लड़कियाँ हर एक फील्ड में, इवन उस कॉलेज के लड़के भी, बहुत सारे देश को डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
1: जी, एक ऐसे परिवार से आप आती हैं जिसका ताल्लुक एजुकेशन से है, और मेडिकल फील्ड में आने के दौरान वो क्या फोकस था कि जिंदगी में आगे मेडिकल की दुनिया में क्या करना है?
0: पहले तो पता नहीं था कि डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि
1: जी
0: डैड इतना जानकारी नहीं थी, बट उनके मन में अपने खुद के बाकी मेरे भाइयों को डॉक्टर बनाने की कल्पना रखते थे। और 12th के बाद अच्छे मार्क्स आए, और वहाँ से थोड़ी ऐसी चेंज आई एक्चुअली वीकन से, कि वहाँ पे एक बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज आई मेरी फैमिली में, कि उन्होंने मेडिकल कराना चाहते थे और मैं पायलट बनना चाहती थी। तो डैड बोले कि आपको ड्राइवर क्यों बनना है, नीचे का ड्राइवर ऊपर का ड्राइवर। और जब मैंने बोला कि आप पूछे कि आप क्यों बनना चाहते हो, तो उस टाइम क्या होता है 12th स्टैंडर्ड में, ऐसा भी होता है कि आप थोड़े से जो जो यूनिफॉर्म पायलट के होते हैं, जो लाइफस्टाइल होती है, वो आपको काफ़ी एज ए नो टीन एजर
1: अट्रैक्ट
0: काफ़ी
1: करती है।
0: अट्रैक्ट करती है। तो ऑलवेज एक कल्पना थी कि हम ऐसा करें, तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन डेफिनेटली डैड ने बोला वाइट, तो वाइट तो पता चला एप्रिन भी वाइट होता है, और इमिडिएटली मेरा मेडिकल एडमिशन भी हो गया। तो वहाँ से एक नई दुनिया शुरू हुई, जो मेडिकल की, जो काफ़ी सीरियस स्टडीज़ और हार्ड वर्क, आज भी वर्ल्ड की सबसे टफ स्टडी में मेडिकल ही मानी जाती है। और जो कि आई थिंक, अगर मेडिकल मैंने नहीं लिया होता और आज जो भी काम कर रही हूँ, उसका सारा स्वरूप जो स्टार्ट हुआ है, डेफिनेटली वही उसका एक ओरिजिन था। तो आई थिंक ईश्वर ने ज़्यादा बड़ी प्लानिंग की थी, मेरे छोटे आँखों से उस समय नहीं दिख रही थी, बट
1: जी,
0: आई एम वेरी थैंकफुल और प्राउड कि मैं मेडिकल की।
1: आप रेडियोलॉजी की एक्सपर्ट हैं, और जब आप मेडिकल कॉलेज से निकली तो क्या मिशन था आपके जहन में कि मुझे क्या करना है?
0: एक बहुत क्लियर था कि जो भी मैं करूं वो सेवा हो, ह्यूमैनिटी के ऊपर मेरा पहले से सेंसिटाइज भावनात्मक तरीके से, मुझे बचपन में ही पता था कि मैं पब्लिक के लिए काम करूंगी। मेडिकल ने वो ज़रूर रास्ता दिखा दिया, जिसमें ये बता दिया कि आपको जो सेवा है, जो आपके मेडिकल के द्वारा बहुत बड़े स्केल में हो सकता है, तो वहाँ से शुरू ही। रेडियोलॉजी की ब्यूटीफुल चीज़ ऐसी है कि हमें सब दिखता है, हम डार्क में भी देख सकते हैं। एक जो शरीर पूरी तरह से नॉर्मल दिखता है, उसको स्कैन के द्वारा उसकी एबनॉर्मलिटी बता सकते हैं, कैंसर है या किसी भी तरह का, पेट में पानी भरा हुआ है या बच्चा है, ऐसा ब्यूटीफुल यू नो ब्रांच हमारा जो रेडियोलॉजी, आपको विजडम और एनालिटिकल पावर देता है, जो आपको देख सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब जब एक बार आप प्रॉब्लम आपको पता चल जाती है, तो आप सॉल्यूशन पे भी उतनी गहरी से काम कर सकते हो। आई थिंक ये जो ब्रांच है, वो टोटली मुझे लगता है बहुत ही ब्लेस्ड आइडेंटिफाइड है ईश्वर के द्वारा मेरे लिए, क्योंकि आज भी जो भी हम प्रॉब्लम देखते हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो, हमारे आसपास हो, उसमें सोचने के साथ साथ उसके सॉल्यूशन में भी काम करने की ताकत आई थिंक मुझे MBBS ने और रेडियोलॉजी ने दिया हुआ है।
1: क्या बात है, आगे और बातचीत करेंगे, लेकिन यहां इस कार्यक्रम का पहला गाना हम लेना चाहते हैं, तो बताइए आपकी पसंद का पहला गाना कौन सा होगा?
0: मेरा ऑल टाइम फेवरेट है आशाएं।
1: ओ, इकबाल फिल्म का गाना है।
0: हाँ, ये मुझे बहुत पॉजिटिव फील कराता है, और मुझे लगता है कि ये हर एक कॉमन पर्सन से जुड़ी हुई सॉन्ग है और सबसे
1: जी
0: रिलेट होता है।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये आशाओं से भरा गाना हमने अभी सुना, और मैं जानता हूं कि रेडियोलॉजी की फील्ड में काम शुरू करने के बाद आपने बहुत अलग अलग तरह की मुहिम छेड़ी, जहां आपने डॉक्टरों के भले के लिए काम किया, गर्ल चाइल्ड के लिए काम किया और फिट इंडिया के लिए भी काम किया। तो ये जो आपकी मुहिम है, ये कहां से आपके जहन में आया? क्योंकि जो मेडिकल का आपका अपना प्रोफेशन है, ये आपको इतना बिजी रखता है कि बाकी कुछ सोचने का वक्त कैसे मिला आपको?
1: मैं 2007 में प्रोफेसर फॉर्मर APJ कलाम को मिली थी जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बोला था कि आपको, जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तो वो मुंबई में, हम राजभवन में मिले, तब उनका कहना था कि आपको कोई भी, मतलब जो स्पेशली जो भारत में सबसे मेजर प्रॉब्लम है हेल्थ के प्रिवेंशन का, डिसीज़ प्रिवेंशन का, अगर आप रूरल हेल्थ में जाएंगे, मेरे गांव में भी जाएंगे, अगर मैं जाती हूँ 200 पेशेंट देखती हूँ तो उसमें कई पेशेंट ऐसे निकलते हैं, कैंसर के लिए निकलते हैं, एस्थमा के निकलते हैं और स्किन के प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम। तो उनका मन था कि हमने एक न्यू इंडिया का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है 14 पिलर, और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें काम करिए। और चूँकि आप डॉक्टरों के लिए काम कर रहे, क्योंकि मेरे बहुत सारे पहले ही 2011 में हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन मेडस्केप इंडिया है जो 21 मेडिकल बॉडी को एक साथ लाया, जिसमें हर स्पेशलिटी के लोग, चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, डेंटल, आयुर्वेदा, फिजियो, ऑल केम टुगेदर।
0: इसका मकसद क्या था मेडस्केप इंडिया का?
1: ये ऐसा मिशन था कि सारे डॉक्टर हर ब्रांच के एक साथ आए और होलिस्टिक जो मेडिकल है उस पर सहयोग दें और अपनी स्ट्रेंथ, जैसे मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपने रेडियोलॉजी का एक्सपर्टाइज करूँ, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है हार्ट के लिए काम करे, होम्योपैथिक प्रिवेंशन में काम करे, आयुर्वेदिक, जो सब एक साथ एकजुट कर आए और अपने विचारों को, और ऑफकोर्स एक मेरा मिशन भी था।

0: गर्ल चाइल्ड, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में ही बहुत बिजी रहते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि कोई और भी सोशल वर्क करें जो उनके फील्ड के बाहर हो. तो इसके द्वारा लोगों को जोड़ा. 2008 में हमारा पहला सेव द गर्ल चाइल्ड शुरू हुआ था, क्योंकि वो फीमेल फिटिसाइड से शुरू हुआ था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान हुआ या हरियाणा हुआ, ये सब जगह पे गर्ल चाइल्ड रेशियो, सेक्स रेशियो बहुत लो था 2008 में. तो उस विषय को, क्योंकि मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट थी, लोग सोनोग्राफी के लिए आते थे, तो पहला क्वेश्चन जो ऑलरेडी मदर हैं, ऑलरेडी जिनको बेटी हैं, वो ज़रूर पूछती थी कि डॉक्टर मेरा बच्चा क्या है. तो डेफिनेटली वो मुझे इंटरनली, क्योंकि आप खुद लड़की हो, उत्तर भारत से हो, आपने वो लड़कियों की ज़िंदगी देखी हुई है, तो आपके मन में था कि आप अपने इस पर्टिकुलर नॉलेज को लोगों को एजुकेट करने के लिए यूटिलाइज करेंगे. तो मेडस्केप का भी एक बड़ा रोल है कि वो डॉक्टरों को इन्वॉल्व करके पेशेंट जब आते हैं तो उनको किस तरह से उनका माइंड पॉजिटिव करें, गर्ल चाइल्ड के बेनिफिट्स बताएं, गवर्नमेंट्स के प्लान बताएं, किस तरह से उन्हें जोड़ें, ताकि वो अपनी बेटी को पैदा करने के लिए डरे नहीं. क्योंकि आज भी हम बोलें या ना बोलें, अनजाने में डाउरी है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आज भी एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारी कम्युनिटी में चलता है. और बेटे को आज भी लोगों ने उसी लेगेसी की तरह देखा हुआ है. डेफिनेटली 2008 में आप जब बोलोगे कि क्या स्थिति थी, और आज 2026 में बोलोगे तो क्या स्थिति थी, वो बहुत एक देखा जाए तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि सब इन्वॉल्व हो गए इस मिशन में. गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट आया, खुद महिलाओं ने महसूस किया कि मैं लड़की होके कैसे दूसरी लड़की को नेगेटिवली सोचूं. वुमेन में थोड़ा वुमनहुड बढ़ा, महिलाओं के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़े, एजुकेशन आया, अवेयरनेस आया. तो डेफिनेटली आज जो लड़कियाँ कर रही हैं वो फ्रीडम है. आज हमारा सोशल मीडिया उन्हें हेल्प कर रहा है, तरह तरह की चीज़ें अवेलेबल है जो स्पॉट पर उनको एम्पावर करती है. पहले ऐसा नहीं था, माँ बाप डरते थे कि एजुकेशन नहीं हुआ, अगर ज़्यादा एजुकेशन हुआ तो उनके एज की लड़का मिलेगा कि हाँ मिलेगा कि नहीं, फिर मिला तो घर अच्छा है कि नहीं, तो उनके कई सारे क्वेरीज थे. बट जिस तरह से एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया में, उससे एटलीस्ट पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मेरी बेटी को परिवार नहीं मिला, एटलीस्ट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है बिकॉज वो एजुकेटेड है, आज भी मेरा मोरल सपोर्ट रहेगा. बट उस टाइम नहीं था, जब जो एरा में मैंने जो देखा था एज अ चाइल्डहुड, कि जो लेडीज़ थी वो ज़्यादातर आपको हाउस होल्ड वर्क की ट्रेनिंग देना चाहती थी, ताकि आप अच्छे से लोगों को संभाल सको, क्योंकि उनका मानना था कि पेट के द्वारे दिल पे राज करते हैं, उनके मन में ये था. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुकिंग, हाउस होल्ड वर्क को दिखाते थे. ऐसा नहीं कि हाउस होल्ड इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो इक्वली 360 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे हाउस होल्ड भी आपको देखना है, एटलीस्ट मैनेज करना है आपको, आपको करियर भी देखना है, आपकी फैमिली भी देखनी है, और आपका कोई मिशन है. वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने को उस तरह से प्रिपेयर करते हो, एजुकेशन से, स्किल से, इन्वॉल्वमेंट से, सपोर्ट से. तो आई थिंक दैट इज चेंज टूडे.
1: जी, इस संस्था को बनाने और लोगों को इससे जोड़ने के लिए, खासतौर पर एक्सपर्ट्स को जोड़ने के लिए, किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा?
0: कोई भी रास्ता है वो कभी इजी नहीं होता है. इवन हम घर पे भी अगर एक डिनर भी होस्ट करते हैं तो उसमें कई प्रिपरेशंस होते हैं, कई चैलेंजेस होते हैं, बट एंड रिजल्ट बहुत स्मूथ लगता है. तो मुझे ऐसा मानना है कि जब आप संस्था बनाए थे तो डेफिनेटली वो एजुकेशनल और मेडिकल हेल्प के लिए बनाया था, बट वो धीरे धीरे पूरे जो दायरा है मेडस्केप इंडिया का, वो पूरी मैसिवली मेजर इशू जो भी महसूस हुआ गर्ल चाइल्ड का हुआ, तो आज हम एजुकेशन पे काम करते हैं. शुरू किया था फीमेल फिटिसाइड से, स्किलिंग से, सारे हेल्थ के, बट नाउ टुडे वी आर स्पॉन्सरिंग द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड. वो कोविड से शुरू किया है. फिर हमारे वी डॉक्टर्स कैंपेन था जो COVID-19 में काम कर रहा था, और पूरे देश के 17 स्टेट में हमारे मेडिकल के सपोर्ट चल रहे थे. इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन था, टेली ICU पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगे थे. 60% जो डेथ था वो रिड्यूस हुआ टेली ICU डालने के बाद. फिर हमारा फिट महाराष्ट्र गेटवे ऑफ इंडिया पे प्रोग्राम हुआ, जो स्पेशली हेल्थ और फिटनेस को अवेयरनेस के लिए हुआ, और फिट महाराष्ट्र बलून फेस्टिवल भी हुआ. और ये मकसद इसलिए था कि जब हम कोविड में वो 2-3 साल जो डिप्रेशन, जो हमारे जो लॉसेस हुए, हमारे जो मेंटल स्टेटस था, हमारी पूरी कम्युनिटी का ओवरऑल, उसमें ये थॉट प्रोसेस था हमारा कि अब नेगेटिविटी जा रही है, बलून रिलीज किया, सारे अपने वर्ड्स लिखे, और पॉजिटिविटी गेटवे ऑफ इंडिया के से आ रही है. ऑफ कोर्स पूरी CM से

0: टीसीएम, हेल्थ मिनिस्टर सारे एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन जो टेली आईसीयू टेलीमेडिसिन का था उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था।
1: क्या बात है।
0: तो इसी तरह से हमारा फिट इंडिया भी प्रोग्राम है जो 2014 में शुरू हुआ, पायलट प्रोजेक्ट, और फिर उसमें 5 पिलर, ऑफकोर्स कलाम साहब को हमने एज अ मेंटोरिंग, एज अ गाइडेंस रखा। उनका इतना सिंप्लिसिटी था और देश के लिए जिस तरह से सोचते थे मुझे कहीं ना कहीं जरूर इंस्पायर किया, क्योंकि उन्होंने पहला वर्ड बोला था कि आप सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी के लिए क्यों कर रहे हो, मेडस्केप नेशनल अवार्ड लाए हो, हैंड राइटिंग कैंपेन डॉक्टर्स का कर रहे हो, इतने सारे डॉक्टरों के लिए ही आपके ज़्यादा दिख रहे हैं, तो वाई डोंट यू थिंक अबाउट 126 बिलियन पीपल, आप उनके बारे में सोचिए। तो आई थिंक वही एक फिट इंडिया का बहुत बड़ा आविष्कार हुआ हम लोगों के द्वारा, और
1: उन्होंने एक तरह से विस्तार दे दिया।
0: हाँ, उन्होंने दिया एक्चुअली मिशन, दिया एक शब्द दिए कि कभी भी आपका विजन इतना छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कितने भी हुए बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वही जो डॉक्टर आज के देश में है वही 140 बिलियन को केयर कर रहे हैं, उसी के सहारे पूरा देश हमारा हेल्दी है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो प्रिवेंशन हो, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हमारी खुद की ब्रांच हो। तो आई थिंक एक बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया कि एक विचार को उन्होंने एक पिलर बनाया, जो हमारी 5 पिलर, जैसे उन्होंने 14 पिलर बनाया तो उनसे इंस्पायर करके हमने 5 पिलर प्रोग्राम फिट इंडिया का है।
1: जी, फिट इंडिया के बारे में और भी बात करेंगे, यहाँ आपकी पसंद का एक गाना सुनते हैं।
0: जीतेंगे जीतेंगे ये एक गाना है जो बहुत इंस्पायर्ड करता है, और उसमें हमारे देश की जो एनर्जी है और जो पॉजिटिविटी है इस गाने में मुझे महसूस होता है। जब भी आप देखते हो अच्छा फील होता है, सुनते हो तो भी अच्छा फील होता है। इनफैक्ट हमारे डॉक्टर्स क्रिकेट लीग में वो गाना बहुत बार बार बजता रहता
1: अच्छा,
0: है
1: अच्छा।
0: हमारे 2012 से हमारा डॉक्टर्स क्रिकेट लीग भी अक्रॉस इंडिया डॉक्टर्स उसको प्ले करते हैं। 3,500 डॉक्टर, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर, इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ भी है, और 2 साल से तो इंटरनेशनली भी हो रहा है, नेक्स्ट हमारा मलेशिया में है, लास्ट ईयर दुबई में था, तो जीत भी रहे हैं। तो आई थिंक जीतेगा वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है गाना, आप इसे प्ले कर सकते हैं।

0: 83 फिल्म का ये गाना हमने सुना जो भारत की जीत की बात करता है, और आप फिट इंडिया कैंपेन चला रही हैं और उसके अलावा ढेर सारे कैंपेन आप अलग अलग चला रही हैं, तो मुझे इसके बारे में और दूसरे कैंपेन के बारे में भी बताइए कि उनके ख्याल किस तरह से आए और कैसे आपने उस दिशा में काम करना शुरू किया, डॉक्टर सुनीता।
1: एक्चुअली आप ये होता है कि जैसे यू हैव क्लियर बहुत विजन है कि प्रॉब्लम अगर कभी दिखती है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, जैसा कि कलाम साहब का बोलना था। तो जैसे कि CPR जो लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है, और वो इंस्पिरेशन मेरा मेडिकल स्टूडेंट, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में थी कार्डियक डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर मैं ऑलरेडी CPR क्रिटिकल केयर तो हम लोग देखते ही थे, तो वहाँ पे मैंने CPR तो हम लोग डेली करते थे, डीप फिब्रिलेशन ये सब करते थे। तो हमने पहला CPR मैंने गांव में किया था जहाँ पे एक लेडी कोलैप्स हो गई थी।
0: और ऑल द क्या हुआ था वो, क्योंकि वो घटना थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: ऐसा था कि उनकी फैमिली में एक डेथ हो गया था और जो उनकी वाइफ थी वो जीना नहीं चाहती थी, यंग लेडी थी, एक बेटे के साथ थी, तो वो जीना नहीं चाहती थी तो कूद गई थी। और चूंकि वो कंडोलेंस का टाइम था तो वहाँ पे मैं भी पहुँची थी, और उसी टाइम उनको ऑलमोस्ट गांव वालों लोगों ने डिस्क्लेयर कर दिया कि लड़का तो गया और ये भी गई, लेकिन मैंने वहाँ पे CPR किया, उनके रिलेटिव के द्वारा माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दिया और फिर वो सर्वाइव हुई। पास के मेडिकल शॉप से हमने इमरजेंसी मेडिसिन भी मंगाई, उसको दी और सर्वाइव किया, और वो आज एक स्टेबल महिला है। लेकिन उसके साथ ही कई बार ऐसा हुआ कि हम ये BKC हमारे मुंबई में ही, एक बार मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो देखा कि एक कार रुकी है, भीड़ रुकी हुई है, बहुत सारे लोग एक आदमी को ज़मीन पर डाल के रोड पर भीड़ लगा के बैठे हैं, तो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि वो कोलैप्स हो गया। मैंने उनका पल्स देखा तो पता चला, CPR किया, थोड़ा स्टेबल हुआ, एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस एशियन हॉस्पिटल में लेके गई तो उनकी जान बच गई। ICU ने बोला आपने राइट ली, उनको CPR दिया। दो बार फ्लाइट में भी हुआ, एक इंडिगो फ्लाइट में हुआ, एक और फ्लाइट में हुआ जो दिल्ली से आ रही थी, तो एक पेशेंट कोलैप्स हो गया, तो नॉर्मली बोलते हैं डॉक्टर ऑन बोर्ड फ्लाइट में, तो जब अनाउंस किए तो उसमें मैंने जाके उनको CPR किया और स्टेबल हुए। फिर इनफैक्ट दो और पेशेंट की हालत ख़राब हो गई थी वहाँ पे, क्योंकि थोड़ी पैनिक हो जाता है ना फ्लाइट में, थोड़ी पैनिक हो जाता है, तो सीनियर सिटीजन को हुआ था, तो वो भी एक जान बचाए। जब फ्लाइट रुकी तो उसको एम्बुलेंस आई, लेके गई। अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली बैंगलोर जा रही थी तो वहाँ पे भी जब रनवे शुरू हुआ तभी एक पेशेंट एक लेडी के साथ थी, वो कोलैप्स हो गया, सडनली गिर गए, तो फिर वही होता है ना डॉक्टर ऑन बोर्ड, तो डॉक्टर सुनीता दुबे गए और उनको CPR किया, स्टेबलाइज किया, और लकली क्या था रन पे ही था तो उसको रुका गया और पेशेंट को शिफ्ट किए घाटकोपर में, ही वॉज स्टेबल लेटर ऑन। तो
0: लेकिन अगर ये कितनी ज़रूरी है, आपने इतनी सारी घटनाएं बताई कि किस तरह से आपने इमरजेंसी में CPR देके लोगों की जान बचाई, आम जनता के लिए ये अवेयरनेस और ये करते आना, ये सीखना कितना इम्पोर्टेंट है और इसके लिए आप क्या कर रही हैं?
1: पहले तो कि जो CPR ट्रेनिंग था हमारा, लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों ने कई सारे बच्चों को लिटिल डॉक्टर स्कूल में जो करते हैं, बच्चे अगर सीख लेते हैं, एक बच्चा सीखता है 20 को और सिखाता है तो हम उसको लिटिल डॉक्टर बनाते हैं। उससे में हमारे दो फायदे होते हैं, एक तो डॉक्टर इंस्पायर्ड होता है कि हाँ मैं लिटिल डॉक्टर हूँ, और आगे भी एजुकेशन के लिए इंस्पायर्ड होते हैं, प्लस वो जान भी बचाते हैं। एक मेरा ही स्टूडेंट जो हमारी ही संस्था के द्वारा सीखा हुआ, जब उनकी प्रिंसिपल सडनली कोलैप्स हुई, इमीडिएटली वो बच्चा तुरंत CPR दिया और वो लेके गए। बाद में लोगों ने पूछा कहाँ सीखा, तो प्रिंसिपल ने कॉल किया कि आप हमारे पूरे स्कूल के लिए करिए। ऐसे होता है, आप लिफ्ट में जा रहे सडनली कोई कोलैप्स होता है, इट्स वेरी टेक्स वेरी सेकंड पीपल टू कोलैप्स व्हेन हार्ट फेल्स, तो यू नो उस टाइम जो इसका है। तो अभी हमने मिशन निकाला हुआ है कि भारत एक ऐसा देश बनना चाहिए कि वो पहला लाइफ सेवर डिक्लेयर हो वर्ल्ड में। तो डेफिनेटली हमने गवर्नमेंट में भी कई चिट्ठी लिखी हुई है, आज से नहीं 2014 से, तो अभी लास्ट फ्यू ईयर से, जैसे मनसुख मांडविया थे उन्होंने भी एक्टिवली इस मैटर को लेकर CPR किया, हमारे पास फोटो आए, अभी करंट जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं उन्होंने भी CPR किया, उसके पहले डॉक्टर भारती थी वो भी MOS की मिनिस्टर थी, तो कई लोगों ने CPR को एक्सेप्ट किया। और प्लस मेरी हर प्रोग्राम में

0: या स्टेशन होता है,
1: जी जी
0: तो ये सर्टिफाइड प्रोग्राम है, हार्डली 5 मिनट लगता है उसको एक्सप्लेनेशन के लिए, आप कभी भी कार्डियोलॉजी से ऑनलाइन सीख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली करने के लिए आप इसको 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है, और एक बार सीख लिए तो आप साल में एक बार और रिपीट कर सकते हैं। अगर आप लाइफ में एक भी जान बचा पा रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और अगर हमारे देश में अगर देख पहले 2% ही था और हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक 25% हमारी पॉपुलेशन को CPR आनी चाहिए
1: जी।
0: तो वो एक अच्छा मकसद है। एक जमाने में मैं 2000 की बात कर रही हूँ कि कार्डियोपल्मोनरी रिसैसिटेशन बोलने के लिए लोगों को डिफिकल्ट जाता था। CPR क्या है बहुत एक्सप्लेन करने के लिए टाइम जाता था
1: जी।
0: लेकिन चाहे वो मेरा खुद मेडिकल मेरी कम्युनिटी हो या पुलिस हो या फिर गवर्नमेंट हो या फिर एक एम्प्लॉई हो वॉचमैन हो, आज लोग इजीली बोल पा रहे हैं कि CPR करना है।
1: तो लोगों में ये अवेयरनेस
0: बहुत,
1: ये कितनी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है,
0: बहुत अवेयरनेस आया हुआ है बट एडॉप्टेशन नहीं आया है और इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि हमें एक ने बोला अरे डॉक्टर हम CPR मुझे तो आता था लेकिन मैं डर लग रहा था कि मैं उसकी कहीं छाती की हड्डी नहीं तोड़ दूं, तो उसको ये जेन्युइन डर था। तो मैंने बोला देखो अगर आप CPR नहीं करोगे तो छाती की हड्डी टूटने की भी कुछ फायदा नहीं, हड्डी टूट सकती है और रिपेयर भी हो सकती है लेकिन जान वापस से नहीं आ सकती है। अगर अभी आप CPR कर रहे हो और समझो 1, 2, 3, 1 में आपने देखा पहला तुरंत किसी ने कॉल कर दिया एम्बुलेंस को बुलाओ, जब तक एम्बुलेंस आएगा तब तक आप CPR करो। एक बार में चेस्ट के कॉर्नर में एक पॉइंट है वहां पे आप 100 बार 1 मिनट में पुश करो और जब तक करते तब तक एम्बुलेंस आएगा आपका पेशेंट चला जाएगा, एटलीस्ट आपने एफर्ट तो डाला। अगर आपने 30-60% चांसेस है कि डेथ प्रिवेंट हो जाएगा और पेशेंट सर्वाइव हो जाएगा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारे भारत के लोगों में इतनी ताकत है कि चाहे वो चीज़ें जाने या ना जाने वो कोशिश बहुत करते हैं। मैंने कोविड में वो कोशिश देखी, समाज ने किया, डॉक्टरों ने किया, गवर्नमेंट ने किया और हम एक हो जाते हैं कभी कभी। तो इस पर्टिकुलर मुहिम में भी अगर आप एक जन की भी जान बचा सकते हो इस 5 मिनट के स्किल से, तो मुझे लगता है, और हमारी संस्था हर कॉर्नर में सिखा रही है, देश के हर कोने में CPR दे रही है, ट्रेनिंग रही है और इजिली मॉड्यूल्स हैं, तो मैं टोटली ओपन हूं कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ओपन है कि कभी भी सिखाया जा सकता है आपको।
1: बिल्कुल। तो इस कार्यक्रम को देश दुनिया के कोने कोने के लोग सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगी कि वो कैसे CPR सीखें और जरूरत पड़ने पर लोगों को दें भी?
0: बहुत ही सिंपल है, इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यूट्यूब में भी बहुत अभी एग्रेसिवली ऑल ओवर वर्ल्ड ये फर्स्ट एड की एक टेक्निक है जो हो रही है। तो इसमें बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, आप सीख कर उसको कर सकते हो, डरना नहीं चाहिए क्योंकि जिस टाइम पे कोलैप्स कोई होता है तो उसकी लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, न कि डर कि मैंने कोशिश नहीं की।
1: लोग अपने शहरों में किससे सीख सकते हैं ये?
0: आई थिंक जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी आसपास हॉस्पिटल हैं वहाँ पे डॉक्टरों को CPR आता ही आता है, वहाँ पे जाके बैच बना के कर सकते हैं, या फिर हमारे मेडस्केप इंडिया के ऑफिस में फ़ोन करके अगर CPR सीखना चाहते हैं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन medscapeindia@gmail.com पे आप मेल भेजोगे तो हम कैसे कर सकते हैं, वी विल लाइन अप फॉर यू।
1: अच्छा, अब यहाँ पर एक गाना लाइन अप करते हैं।
0: मैं आपको गर्ल चाइल्ड एंथम के लिए बोलूँगी, जो मैंने 2008 में गाना प्लान किया था, लिखा भी था, समीर अंजान जी लिखे थे, तो वो ऐसा गाना था कि बच्चे पेट में से बेटी बोल रही है, 2008 की कल्पना सोचिए कि 2008 में बोल रही है कि मेरी माँ मुझे बचा टाइप, नो ऐसे गाना था। सो अभी जो, क्योंकि वो गाना किसी न किसी रिसोर्स की कमी की वजह से नहीं बन पाया, तो जब ये 2026 में बना तो ये टोटली स्टेडियम सेलिब्रेटिंग सॉन्ग था।
1: वाह वाह।
0: और बेटियों का जयकारा जो बेटियों के अचीवमेंट्स को दर्शाता है और लोगों को बताता है कि अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पे आपकी बेटी अपनी काबिलियत को न साबित करे और सिस्टम का स्ट्रॉन्ग पार्ट न हो। तो बहुत सेलिब्रेटिव सॉन्ग है जिसको हम लोगों ने मिलके बनाया हुआ है, समीर इसमें शान जी ने भी गाया, कई सारे लोग इस गाने को आवाज़ दिए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आप इसको ज़रूर प्ले करिए।
1: बिल्कुल।

0: बहुत ही शानदार गाना हमने सुना डॉक्टर सुनीता, और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 2026 और यहाँ से आगे की यात्रा है, इसमें आपका फोकस क्या है, किन चीज़ों पर आप ज़्यादा काम कर रही हैं?
1: वैसे फिट इंडिया में भी कैंसर स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट का था, बट एज आई सेड कि रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ को यूट्राइन कैंसर था, तो आई वॉज एबल टू डिटेक्ट अर्ली. तो उनका यूट्रस निकाला, रोबोटिक सर्जरी हुई और वो आज एक हेल्दी और फिट एंड फाइन है. सिमिलरली मेरे फादर को भी रिसेंटली कैंसर हुआ, बट वो आए बहुत लेट, उन्होंने ओवरलुक किया. सो आई एम वर्किंग ऑन अ तारा कैंसर. सो ये तारा कैंसर का पोस्टर लॉन्च हो चुका है डॉक्टर्स डे पे, और पूरा ये प्रोग्राम इस कमिंग डॉक्टर्स डे पे आएगा, जिसमें हम लोगों को अर्ली डिटेक्शन से लेके प्रिवेंशन, अवेयरनेस. और आप देखे होंगे, आज मैं सुबह भी जब सोनोग्राफी कर रही थी, आज एक मैमोसोनोग्राफी सुबह में 3 पेशेंट थे जिसमें 2 को CA था, तो वो जो लेडीज थी उनको पता नहीं था कि मैं बाद में जाऊंगी, अरे कैसे, यू नो, लाइक अभी भी वो स्टिग्मा है
0: जी.
1: जब तक बड़ा गांठ नहीं हो जाए.

0: आई एम वर्किंग ऑन अ तारा कैंसर. सो ये तारा कैंसर का पोस्टर लॉन्च हो चुका है डॉक्टर्स डे पे, और पूरा ये प्रोग्राम इस कमिंग डॉक्टर्स डे पे आएगा, जिसमें हम लोगों को अर्ली डिटेक्शन से लेके प्रिवेंशन, अवेयरनेस. और आप देखे होंगे, आज मैं सुबह भी जब सोनोग्राफी कर रही थी, आज एक मैमोसोनोग्राफी सुबह में 3 पेशेंट थे जिसमें 2 को सीए था, तो वो जो लेडीज थी उनको पता नहीं था कि मैं बाद में जाऊंगी, अरे कैसे, यू नो, लाइक अभी भी वो स्टिग्मा है
1: जी.
0: जब तक बड़ा गांठ नहीं हो जाएगा, जब तक कुछ इशू नहीं हो जाएगा और तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी, तब तक आते नहीं है लोग कैंसर के मामले में. तो ये अर्ली डिटेक्शन से लेके, और कभी कभी पैसे के वजह से भी पेशेंट नहीं आता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसकी कल डायग्नोसिस हो जाए, अगर उनका रिपोर्ट आ भी जाता है और डायग्नोसिस हो भी जाता है, तो भी पेशेंट उसको छुपाते हैं. वो सोचते हैं कि मेरी इस ट्रीटमेंट की वजह से फैमिली पे बर्डन होगा. पर मेरा आप लोगों को ये बोलना है कि आपको कोई भी बीमारी छुपाने के बदले में डिटेक्शन करनी चाहिए और डॉक्टरों के पास जानी चाहिए, न कि यूट्यूब से तांत्रिक के पास और यू नो गूगल के पास. ये सब आपकी ट्रीटमेंट का जरिया नहीं है. आपको खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी खुद का. मैंने माना है, जो मेरे महसूस में हुआ है, कि जो आपका जो शरीर है वो आपका एक्चुअल में मंदिर है. हम बाहर जाते हैं पूजा करने के, लेकिन ये आपका शरीर ही ईश्वर ने दिया है, जिसको आपको, आपकी जो आत्मा है वो आपकी भगवान है. तो आत्मा के बारे में आपको सोचना है, और उसकी पूजा के लिए जो उसके आसपास जो ईश्वर ने शरीर दिया है, चाहे वो लीवर हो, आपका किडनी हो, या आपका पैनक्रियाज हो, इंटेस्टाइन हो, या एनी बोन, एवरीथिंग, उनके रख रखाव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है. तो आपको उसको अर्ली डिटेक्शन, समय समय पे जांच करना, और शरीर आपका संकेत देता है बीमारी का, और आपको भी मालूम है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है सही नहीं है, नॉर्मल नहीं है. और ये संकेत को अनदेखा मत करिए अपनी जिम्मेदारियों के सामने कि नहीं नहीं आज मेरे बेटे की शादी हो जाए तब मैं ये करूँगी, अरे मैं उस जगह जाऊँगी उसके बाद करूँगी. कि मैं पेशेंट से सुनती हूँ कि आज रिसेंट जो सुबह की पेशेंट थी, मुझे बोली कि मैंने उनको बोला कि यू हैव अ लंप, उनका 3 सेंटीमीटर का वैस्कुलर लंप था. तो मुझे बोलती नहीं नहीं अरे मुझे तो गांव जाना है, मैं नेक्स्ट मंथ आऊँगी, तब मैं बायोप्सी करूँगी, तब मैं ये करूँगी. मुझे 5-10 मिनट तो उनकी यही बात चली. तो पूरे उसमें उनके हेल्थ का कोई उनका रोल नहीं
1: था, प्रायोरिटी नहीं थी,
0: प्रायोरिटी नहीं दिया था उन्होंने. वो सिर्फ बोली थी, अरे थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा था, अब मैं गाँव जा रही हूँ 6 महीने के लिए, तो ऐसे ही जाँच कर लिया. तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ एजुकेटेड होने के बाद, इवन मेट्रो सिटी में फैसिलिटी होने के बाद भी लोग अपना केयर नहीं करते हैं. अगर आप कॉस्मेटिक बोलोगे चले जाएंगे सर्जरी कराने के लिए, बोटॉक्स लगाने के लिए, फेशियल के लिए, ब्लीचिंग, वैक्सिंग, सब चीज़ के लिए, बट अगर हेल्थ का कोई उनका एक नीड है तो वो नहीं जाते हैं. और उस पर कटौती भी करते हैं, क्योंकि मैं, एक हॉस्पिटल भी है मेरा, आर्यन हॉस्पिटल, जहाँ पे मैंने देखा है कि लोग अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इतने बहाने करते हैं, ट्रीटमेंट को टाइमली, उसका फॉलोअप उसके. तो वो मुझे बोलना था कि आप अपने शरीर के संकेत को पहचानिए, और अपनी जानकारी जो भी है मेडिकल की, वो रेगुलर चेकअप पे कर. 30 के बाद आपको साल में हेल्थ चेकअप करना है. अगर आप महिला हैं तो आपको अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को टच करना है, गांठ देखना है, कुछ गड़ तो नहीं रहा है. अगर कुछ लगता है फिर आप क्लिनिकल डॉक्टर के पास जाइए. और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप किसी झोला छाप या किसी वर्बल या मेरे पास होता था किसी लेडी की बात में, या जिसको जानकारी न हो, मेडिकल मॉडर्न जानकारी न हो स्पेशली आई एम टेलिंग, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए.
1: आजकल तो क्या हो रहा है कि लोग बहुत सारी रीलें देख लेते हैं और सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स की मदद, या इंटरनेट पर कुछ देख लिया और अपनी डॉक्टरी खुद कर ली. ये बेहद खतरनाक है,
0: ये बहुत खतरनाक है. अब एक अभी लास्ट वीक में एक पेशेंट हमारी आई थी, उसको पेट में दर्द था, तो उसने गूगल किया कि मेरे को फोटो उसने गूगल में डाल दिया चैट जीपीटी में. चैटजीपीटी ने बोला उसको कि भाई ये एरिया में यहाँ पे आपका किडनी आता है, और आपको किडनी का यू नो, और वो ओबेसिटी की मेडिसिन ले रही थी, एक मेडिसिन ले रही थी ओबेसिटी, कुछ हर्बा लाइफ ले रही थी. तो उसको एक्चुअली किडनी का कैंसर था, लेकिन उसने अपना गूगल इलाज ऑलमोस्ट 6-7 महीने किए, और जब आई तो काफ़ी टॉक्सिक थी. अभी तो टाटा में भेजा हुआ है. बट मैं ये बोल रही हूँ कि जो लोग होते हैं, वो जो सोशल मीडिया होता है, वो

0: एल्गोरिदम पे चल रहा है, वो नंबरिंग पे चल रहा है, वो एक सोल्ड इन्फॉर्मेशन है. ऑथेंटिक जो डॉक्टर्स हैं वो लोग अगर आपको गाइड करते हैं तो, और जब तक आपका डॉक्टर आपको क्लिनिकली न देखे और आपको इन्वेस्टिगेशन आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आपके जो प्रॉब्लम्स हो उसके हिसाब के आपको जांच न कराए और फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है. ये बहुत इम्पल्स जरूर आता है कि हम रील इतना एडिक्टिव है, इट इज़ सो एडिक्टिव एट टाइम यू फॉरगेट, टाइम सेंस भी ख़त्म हो जाता है. बट दीज आर थिंग्स आर मार्केट एंड यू हैव टू यूज़ इट इन अ पॉजिटिव वे. आपको ये सब चीज़ जो अवेलेबल है देश में, गूगल है या फिर इंस्टा है, वो पॉजिटिव चीज़ उसकी यूज़ करनी चाहिए, न कि उसको पूरी तरह से फॉलो करके मिसडायग्नोस करके. क्योंकि आज भी जब हम बैठे रहते हैं तो आजकल बहुत सारे डॉक्टर लिख रहे हैं कि अगर आप गूगल के डॉक्टर से आ रहे हो तो तुम्हारी फीस 6 बार ज़्यादा है, मतलब एज अ जोकिंगली. बट ये ट्रुथ है कि इतना ओवर एजुकेट आते हैं कि जब एक्चुअल डायग्नोस उनको पता चलता है, अरे मुझे तो सिर्फ बीपी गैस्ट्रिक पेन था और कुछ बेसिकली मेरा सोनोग्राफी नॉर्मल आ गया, लेकिन गूगल ने तो बहुत बड़ी बीमारी बता दी आपको
1: जी.
0: आपको तो इतना दूर पहुंचा दिया, आपने दवाई भी ले ली, खा भी लिए. तो बहुत सारे जो काउंटर मेडिसिन जो हम लेते हैं कि मुझे पेट में दर्द है तो साइक्लोस्पाजम ले लिया, कोई और मेडिसिन ले ली, और वो क्लिनिकली आपको किसी एक्सपर्टाइज डॉक्टर ने नहीं लिखी है तो उसके साइड इफ़ेक्ट हुए
1: जी.
0: उस साइड इफ़ेक्ट के चलते ये हुआ, और कितना भी कंट्रोल आप करते हो आज भी काउंटर पे मेडिसिन लिया जा सकता है.
1: बिल्कुल.
0: और जो पेशेंट है भारत के वो जुगाड़ू पेशेंट है. उनको हर जुगाड़ आता है. इवन मेरी मम्मी या मदर इन लॉ, अगर मैंने उनको एक बार पेट की दवाई दर्द की दी है तो नेक्स्ट टाइम मैं गांव में गई तो आधी गांव वो पेट की दवाई दर्द में खा रही थी.
1: सेम दवा.
0: हाँ, सेम दवा. सो ये बहुत ही कॉमन इशू, ये मेरे घर की नहीं है, हर घर की है. क्योंकि उनके घर में डॉक्टर है तो उनको पता है कि हाँ ये पेट दर्द का है, ये उल्टी का है और ये दर्द का है, तो वो फिर भी थोड़े डायग्नोस्ड एरिया में जा रहे हैं. बट मेनी ऑफ द हॉस्पिटल से दवाई बची हुई है, एक्सपायरी दवाई खा लेते हैं पेशेंट, क्योंकि अरे उसमें पैसा गया हुआ है, उससे मोह है. तो ऐसी बहुत सारी डेली बेसिस पे हमारे पास एज अ डॉक्टर केस आता है कि यहाँ पे ये दवाई खा ली और कॉम्प्लिकेशन हो गया. और हॉस्पिटल में जब स्टेज देखा है मैंने डॉक्टर पेशेंट का, उनके ऊपर सारी दवाइयाँ फेल हैं. क्योंकि हर एक चीज के लिए उन्होंने अपनी इम्यूनिटी बना ली है, और द टाइम कम्स व्हेन यू नीड द मेडिसिन मोस्ट, उस टाइम आपके ऊपर कोई दवाई नहीं काम कर रही, क्योंकि आउट ऑफ द काउंटर से आपने जो भी दवाई ली उसके साइड इफेक्ट नहीं पता थे, उसके कॉन्ट्रडिक्शंस और उसके यूजेस नहीं पता थे, तो वो कई सारी दूसरे ऑर्गन्स पे डैमेज करके चली आई हैं.
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी बातें आपने बताई डॉक्टर सुनीता. और यहाँ एक और गाने की जगह है, और मुझे अंदाज़ा है कि अपने पिता से आपको बहुत प्यार रहा है और एक गाना आप उनको डेडिकेट करना चाहती हैं.
0: मेरे डैड बचपन में काफ़ी, जैसे कि डेफिनेटली वो सबके फादर करते हैं, बहुत ट्रैवल करते थे और बहुत सारे काम करते थे. जैसे एक नॉर्मल परिवार का जो जिम्मेदारी होता है वो देखते थे, लेकिन ये बात मुझे इम्पॉर्टेंटली ये फील हो रहा है कि विश्व में जितने भी बच्चे हैं ये रिलेट कर सकते हैं कि जो फादर होते हैं एक आसमान की तरह होते हैं, या आप सोचे एक पहाड़ की तरह होते हैं, और सामने ही होते हैं, हमें दिखता नहीं है. जब वो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, और वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है उनके जाने के बाद, वो मतलब ये कभी प्लेस नहीं हो सकता. एक डीप वैक्यूम, या आप उनकी बातों से इंस्पायर हों या उनको याद करें, लेकिन वो पेन जो डीप है वो कभी नहीं जाता है. वो प्रैक्टिकली मैंने महसूस किया. और अगर आपके डैड बहुत इंस्पिरेशनल हो, बहुत वेल लर्न हो, तो उनकी बातें आपके कानों में गूंजती रहती हैं, जो कि बहुत प्रैक्टिकल होती है. और आपके माँ बाप को छोड़कर कोई भी आपको वो नहीं बताता जो हार्श है. आपको बहुत पिंकिश लाइफ लोग दिखाएंगे, आप भी बहुत अच्छा सोचते हो, बट जो डैड थे वो आपको रियलिटी चेक कराते थे. तो उस टाइम जब वो जाते थे, बहुत जब मिस करते थे एज अ चाइल्ड, तो ये गाना मैं बहुत गाती थी,
1: पापा जल्दी आ जाना,
0: पापा जल्दी आ जाना. ये गाना मुझे बहुत रिलेट होता था, एंड एज अ किड आई यूज्ड टू सिंग अ लॉट.
1: सुनते ही गाना

0: डॉक्टर सुनीता, बहुत सारी बातें हमारी हो रही हैं और आपने बताया कि कितनी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मेडिकल की दुनिया की जिनको लेकर आप लगातार अवेयरनेस का काम कर रही हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब थोड़ा सा भी खाली वक्त मिलता है तो क्या कर रही होती हैं आप?
1: खाली वक्त में आई प्ले लॉन टेनिस, आई एम अ किक बॉक्सर ऑल्सो।
0: अच्छा।
1: सो मोस्टली खाली वक्त एज सच नहीं है, बट डेफिनेटली आई ऑलवेज आई एम वर्किंग एट होम ऑल्सो। आई विल डू माई होमवर्क, प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, स्पेंडिंग टाइम विद माई किड, एंड यू नो क्वाइट डीपली रूटेड हूँ, फैमिली ओरिएंटेड आई एम, बट डेफिनेटली आई हैव अ वेरी ग्रेट फैमिली ऑल्सो। द किड्स आर वेरी गुड, मदर इन लॉ इज वेरी लविंग केयरिंग, फादर इन लॉ बहुत यू नो लाइक ऑल आर वेरी नाइस, एंड आई स्पेंड टाइम, आई लाइक टू राइट ऑल्सो। सो अभी जो सबसे बड़ा मेरा 4 साल का सबसे बड़ा काम चल रहा है, प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल हेल्थ केयर प्रोविजन पे काम कर रही हूँ, तो उस पर भी काम करती हूँ। एंड आई ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग और लिसनिंग, सॉन्ग तो ज़्यादा नहीं है बट ऑफ सॉन्ग है। बहुत रेयरली आई वॉच मूवी विद माई फैमिली, बहुत रेयरली, अगर पूरी फैमिली देख रही है तो ही मूवी।

0: मैंने टीवी कभी देखा ही नहीं एज अ चाइल्ड ऑल्सो, कभी टीवी देखा नहीं, ज्यादा आउटस्कर्ट, बहुत ज्यादा न्यूज भी पढ़ना पसंद नहीं है बिकॉज दे डिस्टर्ब मी।
1: जी बिल्कुल। तो इन सारी गतिविधियों से आप अपना वक्त निकालती हैं। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि ये डॉक्टर्स डे पर आप कुछ और चीज़ें लॉन्च करने जा रही हैं, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है, क्या तैयारियां हैं आगे की, क्या मिशन है?
0: इस साल ये डॉक्टर्स डे दिल्ली का ही प्रोग्राम है, हर साल दिल्ली में ही होता है, पिछली बार विज्ञान भवन में हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ, अभी ये 1 जुलाई को होगा दिल्ली में। और इस प्रोग्राम में कैंसर एक हमारा बहुत बड़ा फोकस्ड एरिया है और सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर जो चल रहा है नेशनल हमारा बिल उसके बारे में, और कई एमिनेंट अक्रॉस वर्ल्ड लोग आने वाले हैं इसमें, और क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्रोग्राम है इसमें आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट एक जो मिशन है जो प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल बिल जो हमने 2023 में शुरू किया था, जो आज देश का ऐसा मुहिम बन गया है जिसमें देश के 58 मेडिकल बॉडी हर स्पेशलिटी के 8200 इंस्टीट्यूट और 78 MP पार्लियामेंटेरियन सपोर्टिंग, और रिसेंटली एक MP फोरम भी सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर के लिए फॉर्म किया जिसमें 34 MP एक वीक में ज्वाइन हुए टू सपोर्ट आवर मिशन। बेसिकली मिशन ये है कि जब डॉक्टर ड्यूटी पे रहता है तो उसको एक इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए जो पीसफुली पेशेंट पे फोकस होकर ट्रीटमेंट करे, कि जिसके वजह से एक सिस्टम आए और एक स्पेशलाइज लॉ डॉक्टरों के लिए आए और एक नेशनल बिल आए जो डॉक्टरों को उनके ड्यूटी पे सुरक्षित रह सके और वो काम होके अपनी नॉलेज को ट्रीटमेंट में यूज़ करें, न कि कियोस में यूज़ करें। और पेशेंट अगर सेफ तभी होगा जब डॉक्टर सेफ है, तो ये डॉक्टरों की कोई डिमांड नहीं है। अगर भारत चाहता है, हमारे देश चाहती है कि हमारे पेशेंट सेफली ट्रीट हों, तो उन्हें एक सेफ इन्वायरमेंट अपने डॉक्टर को देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के डॉक्टर, इवन प्राइवेट डॉक्टर उतने ही इक्वल हैं, और डॉक्टरी में कोई जेंडर नहीं होता है कि लड़की है डॉक्टर, लड़का है डॉक्टर, सबको इक्वल सेफ्टी की राइट है और फंडामेंटल राइट है जो मिलनी चाहिए, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और चाहे वो लोकसभा कमेटी हो या राज्यसभा कमेटी हो या फिर पिटीशन कमेटी हो, हेल्थ कमेटी हो, सब में ये बातें चल रही हैं। और मैं एक जरूर बहुत अच्छी फीलिंग है मुझे इस बात के लिए कि जो हमारे भारत के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका मेरा एक्सपोजर पहले नहीं था, ये लोग इतने अच्छे हैं, समझ के तुरंत ही हेल्प करने के लिए हाथ एक्सटेंड किए हैं, वो किसी भी पार्टी के होने दो, वो अप्रिशिएशन मेडिकल फ्रेटर्निटी के माइंड में हमारे इस मिशन के द्वारा एज अ पॉजिटिव, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
1: जी,
0: शी हर सेल्फ की हाँ ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इसे होना चाहिए
1: जी।
0: तो ये बहुत बड़ा चीज़ है और वी जस्ट प्रे, और आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि डॉक्टर की सेफ्टी के लिए आप भी आवाज़ करिए और सी टू इट की वो सिस्टम बने और सेफली हमारे डॉक्टर अपना काम करें।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए और इतने सारे मुद्दों पर हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए, बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच।
1: आज के मेहमान कार्यक्रम में ये थी बातचीत डॉक्टर सुनीता दुबे से। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन काजल बदरगे और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।

तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता। सुनना न भूलिए शनिवार।

0: दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन जवान।

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत
1: अंक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

प्यार दर्द का दूसरा नाम है। उस दर्द का एहसास भी भला लगता है। प्यार के लम्हे बड़े छोटे होते हैं। उन लम्हों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेने को जी चाहता है। उन लम्हों को जीना चाहते हैं हम, कुछ यूं कि ये मुलाकात फिर हो न हो। चलो इन्हें संजो लें अपनी जिंदगी के दामन में, कुछ यूं कि छोटी सी जिंदगी में कई सदियों का प्यार समा जाए।

प्यारा सा साथ, भला सा साथ, भला सा एहसास, भली सी आवाज, भली सी सूरत, भला किसे नहीं भली लगती है। मिलता है ऐसा सलूना सा साथ तो जीवन की बगिया महक उठती है। हर शाख की कोपलें हरी हो उठती हैं, मन में खिल उठते हैं रंग बिरंगे फूल।

रात भर झड़ती रही चांदनी आसमान से, रात भर सितारे खेलते रहे अटखेलियां चांद से, रात भर हवा गाती रही उदास गीत, पत्तियां सरसराती रहीं और कानाफूसी करती रहीं पेड़ों से, रात भर जुगनू भटकते रहे किसी की खोज में, रात भर यादों के दिए झिलमिलाते रहे मन के आंगन में, रात भर इंतजार करते रहे किसी के आने का।

यादों के रंग से सजाए हैं ख्वाब, मालूम है कुछ ख्वाब कभी पूरे नहीं होते, कुछ ख्वाबों का ताल्लुक हकीकत से नहीं होता। ये ऐसे ख्वाब हैं जिन्हें हम देखते हैं और अपने दिल के करीब रखना चाहते हैं, ये ख्वाब सिर्फ इंतज़ार होते हैं।

यादें हमारी जिंदगी का आईना होती हैं। उसमें नजर आते हैं बीते समय। यादों का एक सिरा पकड़ते हैं कि बस चलचित्र की तरह जमाने भर की बातें हमारी आंखों के सामने ठहर जाती हैं। कई बार यादों का दामन थाम हम घंटों बैठे रहते हैं, खुद से गुफ्तगू करते भूल जाते हैं खुद को। वक्त का कौन सा सिरा आज है यही नहीं याद रहता। गुजरा जमाना है या है हकीकत। कुछ यादें हमें इतनी अजीज होती हैं कि उन्हें हम हर पल जीना चाहते हैं।

वही रात होगी, वही चांद, वही सितारे, वही आसमान, ये हवाएं, लेकिन मंजर सूना सूना सा होगा। कहीं कुछ कमी महसूस होगी, यूं लगेगा ये चांद नहीं है रोशन, मध्यम है सितारे, खामोश है हवा, उदास है आसमान। कहीं कुछ कम होगा, कहीं कुछ नम होगा, होगा सिर्फ यादों का मंजर।

FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। आपको सुनवाते हैं निमाड़ी लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम, और आज आप सुनेंगे राजा राम गोलकर और उनके साथियों के गाए कुछ पारंपरिक लोकगीत।

0: गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
1: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
2: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
1: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
2: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
3: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

0: आप सुनी रहा निर्माण की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं राजाराम गोलकर और साथियों से पारंपरिक निमाड़ी लोक गीत।

आकाशवाणी खंडवा।

आप सुनी रहा नी मार की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

आपने सुने पारंपरिक निमाड़ी लोकगीत कलाकार राजाराम गोलकर और उनके साथी। FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, यह है आकाशवाणी का खंडवा केंद्र। शाम के ठीक 6 बजे हैं, आपको सुनवाते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार, आदाब और स्वागत है आप सभी का। जिंदगी की भागदौड़ में कभी कभी कुछ पल ऐसे होते हैं जहां सिर्फ सुकून हो, थोड़ी सी मुस्कान हो और अपनेपन की मीठी सी आवाज हो। तो उन्हीं खूबसूरत पलों को लेकर मैं हाजिर हूं आपके बीच, आपकी साथी, आपकी दोस्त भावना डोंगरे। कहते हैं कि आवाज में वो ताकत होती है जो दूर बैठे इंसान को भी अपना बना दे। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? आगे कार्यक्रम को बढ़ाने से पहले रोज की तरह पूछ लेते हैं आज के सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न। तो जल्दी से नोट कीजिएगा हमारा आज का पहला प्रश्न, प्रसार भारती के नए चेयरमैन कौन है? और हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, ISRO यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ कर रखिए, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत में।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी अपने गौरवशाली 90 वर्षों की प्रेरणादायक यात्रा पूरी कर रहा है। 90 वर्षों का यह सफर केवल आवाज का सफर नहीं, बल्कि भावनाओं, संस्कृति, शिक्षा, ज्ञान और समाज को जोड़ने वाली एक अनमोल विरासत का सफर है। बच्चों को शिक्षा दी, युवाओं को दीक्षा दी और देश को एक सूत्र में बांधे रखा। दोस्तों, एक समय था जब घर के आंगन में रखा छोटा सा रेडियो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ देता था। समाचार हो, गीत संगीत हो, खेती किसानी की बातें हो या बच्चों के शैक्षणिक कार्यक्रम, आकाशवाणी हर दिल की आवाज़ बन चुकी थी। और आज इन्हीं यादों, अनुभवों और शिक्षा में आकाशवाणी की भूमिका को समझने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री रायचंद नागड़ा उत्कृष्ट विद्यालय खंडवा की सम्मानीय शिक्षिका डॉक्टर भारती पाराशर मैम को। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
5: नमस्कार, मैं डॉक्टर भारती पाराशर श्री रायचंद नागड़ा उत्कृष्ट

0: विद्यालय में लगभग 25 वर्षों तक मैंने सेवाएं दी और शिक्षा विभाग में 35 वर्ष तक अच्छा शिक्षकीय अनुभव मेरा रहा है। तो आकाशवाणी केवल आकाशवाणी नहीं है बल्कि हर भारतीय के रग में बहने वाली एक ऐसी आवाज़ है जिसने उसकी भाषा को, उसके जीवन को संस्कारित किया है, भाषा को समृद्ध किया है। इसलिए आकाशवाणी हम सभी के हृदय में बसने वाली वो ध्वनि है जिसे हम हर पल रेडियो के माध्यम से सुनते आए हैं।
1: मैम, आज जब आकाशवाणी अपने गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा पूरी कर रहा है, तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि आप एक शिक्षिका होने के नाते आप आकाशवाणी की इस यात्रा को किस रूप से देखती हैं?
0: मैं इस समय अपने जीवन के 64 वर्ष पूर्ण कर चुकी हूँ। बाकी इन 64 वर्षों की यात्रा में मैंने आकाशवाणी को बहुत बहुत पास से देखा है और इतना ज़्यादा अनुभव किया है कि मैं शब्दों में उसका उल्लेख नहीं कर सकती। इतना कह सकती हूँ कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना सिखाया है, मेरी भाषा को समृद्ध किया है और इसीलिए मुझे अच्छे से याद है अपने शिक्षकीय जीवन का। जब मेरा पहला लेसन था, मैं पुनासा हायर सेकेंडरी स्कूल में अपना पहली कक्षा ले रही थी जब मैं, और 12th क्लास को मैं पढ़ा रही थी, तो मेरी कक्षा समाप्ति के बाद पीछे से जो कमेंट आया था उसमें विद्यार्थी कह रहे थे, और इसी के साथ आकाशवाणी के समाचार यहाँ समाप्त होते हैं। उस समय मुझे लगा कि आकाशवाणी केवल मुझे नहीं बल्कि सारे ही जो भारतवासी हैं उन सभी के जीवन में बहुत प्रभाव डालती है और इसीलिए आकाशवाणी मुझे बहुत पसंद है।
1: मैम, मेरा अगला प्रश्न ये है आपसे कि आपके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में आकाशवाणी की क्या सबसे बड़ी भूमिका रही है?
0: देखिए, शिक्षा के क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो समय समय पर आकाशवाणी ने विद्यार्थियों के लिए ऐसे विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं जिनमें मीना की दुनिया से लेकर जो बहुत सालों पहले तक भी प्रसारित होता था और वर्तमान में जीवन कौशल एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम सरकार का चलता है, उसके तहत हम नैतिक शिक्षा से लेकर विद्यार्थियों के लिए जो कोर्स दिया गया है उनका, उस कोर्स को भी आसानी से उन कक्षाओं के माध्यम से जो आकाशवाणी से प्रसारित होता है उससे हम विद्यार्थियों को बहुत सारी चीज़ें एक साथ पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ प्रसारण होता है और वो विद्यार्थी उनको आसानी से सीख लेते हैं। और मुझे अच्छे से याद है कोरोना के समय में भी आकाशवाणी ने बहुत ही मजबूत भूमिका निभाई थी। जो प्रसारण होते थे उससे गांव-गांव में विद्यार्थी शिक्षा से उतने ही जुड़े हुए थे जितने विद्यालय आने पर।
1: मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है, क्या आपको अपने बचपन में रेडियो सुनने की कोई खास बात आज भी याद है?
0: हाँ, असल में क्या होता था कि हम लोग जो है मम्मी पापा के साथ, मेरे पिताजी को भी गाने का बहुत शौक था
1: जी,
0: तो पिताजी भी रेडियो लगा लेते थे तो हम उन्हीं के साथ साथ कई गानों को हमने उनके साथ साथ सीखा है। और साथ में उस समय मुझे अच्छे से याद है जब क्रिकेट की कमेंट्री आती थी और हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो हम कॉलेज की क्लास बंक करके जाते थे और मेरी एक फ्रेंड थी उसके घर पे रेडियो चलता रहता था तो हम उस कमेंट्री सुनने के लिए, तब सुनील गावस्कर खेला करते थे, तो हम लोग कॉलेज छोड़कर जाते थे और आकाशवाणी से जो प्रसारण होता था मैच का सीधा प्रसारण होता था वो सुनने के लिए इतना मज़ा आता था कि वैसी कमेंट्री शायद अब नहीं होती थी। तो आकाशवाणी ने क्या क्या नहीं दिया है ये तो मैं शब्दों में बखान नहीं कर सकती हूँ, पर हाँ आकाशवाणी है तो हम सभी खुश हैं।
1: मैडम, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में आकाशवाणी किस प्रकार मददगार रही है?
0: विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में उनके सर्वांगीण विकास के लिए किस प्रकार से भाषा का प्रयोग होना चाहिए, शब्दों का उच्चारण कैसे होना चाहिए और कौन सी बात कैसे और कब कही जानी चाहिए, तो आकाशवाणी से जो प्रसारण होते हैं वो प्रसारण हर स्तर के होते हैं। आप आरंभ से लेकर, सुबह आकाशवाणी जब आरंभ होता है तो पंचांग से लेकर आप समाप्ति तक के सारे कार्यक्रमों में यदि आप देखेंगे तो जो बच्चे उसको लगातार सुनते आ रहे हैं वो उन सारी चीज़ों से परिचित हैं जो आकाशवाणी विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहती है या बड़े लोगों तक पहुंचाना चाहती है, जिसमें अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से ये आकाशवाणी की विशेषता

0: कि हर वर्ग के व्यक्ति के लिए यहाँ से प्रसारण किए जाते हैं।
1: मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि पहले जब इंटरनेट और मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तब जानकारी प्राप्त करने में रेडियो कितना महत्वपूर्ण हुआ करता था?
0: रेडियो की महत्ता आप इस तरह से समझ सकती हैं कि यदि मुझे अच्छे से याद है, मेरे नाना का गांव अपने खंडवा के पास एक मांडला करके जगह है, तो यदि गांव में किसी व्यक्ति के पास रेडियो या ट्रांजिस्टर कहा जाता था उसको, तो वो ट्रांजिस्टर लेकर जब वो साइकिल पर निकलता था व्यक्ति, तो ऐसा लगता था कोई बड़ा अरबपति व्यक्ति निकल रहा है। गाँव के सारे बच्चे उनके पीछे पीछे भागते थे फुल आवाज़ में, जो है वो पूरी आवाज़ चालू करके, और ये बताते थे कि मेरे पास आकाशवाणी है, मेरे पास रेडियो है, मेरे पास ट्रांजिस्टर है। तो आकाशवाणी जो है उसने रेडियो के माध्यम से हर घर हर परिवार में अपना एक अलग स्थान बनाया है।
1: मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि रेडियो के माध्यम से बच्चों में सामान्य ज्ञान बढ़ाने में क्या फ़ायदे रहे हैं?
0: बहुत सारी जानकारियाँ जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, कई बार ऐसा होता है कि जो समाचार पत्र हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, जिनमें ज्ञान तो बहुत दिया होता है, परंतु सब बच्चे इसको पढ़कर याद नहीं कर सकते। और हमारी जो भाषा है उसका पहला ही बिंदु ये है कि हम भाषा को सुनकर याद कर लेते हैं। तो आकाशवाणी से जो ज्ञानवर्धक बातें बताई जाती हैं, वो बच्चे रोज़ रोज़ जब सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, तो सुन सुनकर हमने बहुत सारी चीज़ों को आकाशवाणी से ही याद किया है। इसलिए चाहे कोई दिवस हो, या किसी व्यक्ति का जन्मदिन हो, या किसी व्यक्ति के अचानक मृत्यु का समाचार हो, मुझे अच्छे से याद है गणतंत्र दिवस की जो रैली निकल रही थी, जब लातूर में भूकंप आया था, तो गणतंत्र दिवस की रैली निकल रही थी उस समय, और हम सभी लोग रैली में थे, पर चूंकि गांव में रेडियो बहुत बड़ी चीज़ होता है, तो हमको वहाँ रेडियो में यह समाचार मिल गया था कि लातूर में बहुत बड़ा भूकंप आया है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आकाशवाणी हर क्षण की जानकारी जो हमको देती है, समाचार 8 बजे के हों या रात के 9 बजे के समाचार हों, वो पूरी जानकारी हमको इस माध्यम से मिल जाती है।
1: आपके समय में परिवार के साथ बैठकर रेडियो सुनने का अनुभव कैसा होता था?
0: अरे इतना मज़ा आता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। बीच में रेडियो रख लिया जाता था, आजू बाजू सब अपने अपने खाने की थाली लेकर बैठ जाते थे, विविध भारती आता था, और जो अच्छे अच्छे गीतमाला, मुझे याद है बिना का गीतमाला आती थी, और देर रात तक अमीन सयानी की आवाज़ सुनना इतना मज़ेदार होता था। और साथ में जो उसमें गीत आते थे, क्योंकि शास्त्रीय संगीत हमारे घर में बहुत बजता था, तो शास्त्रीय संगीत पर आधारित जितने गीत थे, उन गीतों को हमने ऐसे याद कर लिया था जैसे वो हमारे कोर्स में आने वाले हों। इसलिए रेडियो हम सबकी पहली पसंद है।
1: मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि आकाशवाणी ने देशभक्ति और संस्कारों को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभाई है?
0: आप यकीन नहीं करेंगी, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, हमारे राष्ट्रीय पर्व जब भी आते हैं, उसके पहले से 8 दिन पहले से माहौल इस तरीके का बनाया जाता था कि उससे हर व्यक्ति के अंदर देशभक्ति का जुनून हो जाता था। जो देशभक्ति के गीत बजते थे, उन गीतों को किसी को सिखाना ही नहीं पड़ा, और हम बड़े मज़े से गाते थे, कर चले हम फिदा जान तन साथी हो, चाहे कोई सा भी गीत हो। आप यदि हमसे कहेंगे कि देशभक्ति के कौन कौन से गीत हैं, तो हम आपसे कहेंगे अरे हमें सब गीत याद हैं, क्योंकि हम उनको रोज़ रोज़ जब वो बजते थे समय पर, तो उनको हम सुनते थे समय पर, और बड़ा मज़ा आता था। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि देशभक्ति और हमारे संस्कार, संस्कारों की बात यदि करूं तो सुबह का प्रातः का नमन हो, या आस्था के स्वर हो, या तो रामचरितमानस हो, संस्कारों को आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि निभाई है तो आकाशवाणी ने ही निभाई है। चाहे वो हमारी निमाड़ी लोक संस्कृति को बढ़ावा देना हो, हमारे सिंगा महाराज के भजन हो, या हमारी निमाड़ी की जो गीत हैं, लोक पारंपरिक लोक गीत, उन सबको आकाशवाणी ने इतना तवज्जो दी है, इतना महत्व दिया है कि जन जन के मुख पर वो गीत इतने सहजता से गाए जाते हैं कि हम उसको शब्दों में बखान नहीं कर सकते।
1: क्या पहले के समय में परीक्षा की तैयारियां, शैक्षणिक जानकारी के लिए रेडियो को सुना जाता था?
0: हाँ बिल्कुल सुना जाता था। जो अच्छे वक्ता होते थे, आकाशवाणी की एक विशेषता है, ये लोगों को जिसको कहते हैं ना हीरे तराशती है आकाशवाणी, तो अच्छे

0: अच्छे लोगों को अपने कार्यक्रम में शामिल करना ये आकाशवाणी की सबसे बड़ी विशेषता है। तो जो अच्छे लोग होते थे, अच्छे वक्ता होते थे, अपने जिले के अच्छे लोगों को लाना और विद्यार्थियों को जो परीक्षा का डर है, परीक्षा का भय है, उससे मुक्त कराने के लिए उनके जो विचार, उनका जो मोटिवेशन, वो जिस प्रकार से प्रभावी संभाषण करते थे, उससे विद्यार्थियों का डर कई हद तक समाप्त भी होता था। इसलिए आकाशवाणी बहुत अच्छे कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए भी समय समय पर प्रसारित करती आई है।
1: मैम, आप ये बताइए कि आपके अनुसार रेडियो और मोबाइल और अभी के समय में टीवी और मोबाइल तो सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों में क्या अंतर है?
0: देखिए, टीवी और मोबाइल जो है वो ऐसी चीज़ें प्रसारित कर पा रहे हैं, ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जिनको हम विद्यार्थियों तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं, परंतु आकाशवाणी कार्यक्रम जो है वो इतने व्यवस्थित होते हैं कि कौन से उम्र के लोगों के लिए किस चीज़ को कितनी मात्रा में पहुंचाना जाए, ये चीज़ विशेषता है आकाशवाणी की। और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि रेडियो और जो बेहतर माध्यम रेडियो है बजाय मोबाइल और टीवी के, रेडियो से अच्छा कोई माध्यम हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेडियो में उतनी चीज़ें प्रसारित की जाती थी जो उस समय की आवश्यकता, समकालीन परिस्थितियों के अनुसार जो चीज़ें विद्यार्थियों तक पहुंचाना है, युवाओं तक पहुंचाना है, वृद्धों या बुजुर्गों तक पहुंचाना है, ये आकाशवाणी अच्छी तरह समझती थी। और इसीलिए आकाशवाणी के कार्यक्रम आज भी जन जन में उतने ही लोकप्रिय हैं बजाय मोबाइल या टीवी के।
1: मैडम, मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस उपलब्धि पर आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगी, यदि आकाशवाणी है तो हमारी भाषा समृद्ध होगी, संस्कारवान रहेगी, क्योंकि आकाशवाणी ही एकमात्र ऐसा संदेशवाहक, ऐसा तंत्र है जो हर व्यक्ति की हर समय की जो आवश्यकता है उसको समकालीन परिस्थितियों को याद रखते हुए, ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए वो आवश्यकताओं को पूरा करती है। जबकि जो टीवी पर और मोबाइल पे जो कार्यक्रम दिए जाते हैं इस हद तक के होते हैं कि वो उस उम्र के बच्चों या लोगों को बहुत पसंद नहीं आते हैं, पर चूंकि रेडियो की, आकाशवाणी की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, वही मोबाइल और टीवी का भी, चूंकि बढ़ते हुए प्रचार प्रसार के माध्यमों के अनुसार आज के समय में इनकी आवश्यकता बढ़ गई और इन सबके पे ताजी और आ गए AI, तो निश्चित रूप से, पर इन सबके बीच भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए, आकाशवाणी ही इस देश का, इस भारत माता की आत्मा है, जान है, आकाशवाणी है, तो भारत समृद्ध है, संस्कारवान बना रहेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आकाशवाणी कभी भी बंद ना हो, क्योंकि आकाशवाणी की जो कार्यक्रम है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो इतनी अच्छी हैं कि वो हर व्यक्ति को अवसर प्रदान करते हैं। और मेरे जैसे वक्ता यदि बने हैं तो आज आकाशवाणी की एक बहुत बड़ी विशेषता के कारण ही मैं एक कुछ अच्छा बन पाई हूँ। मैं आकाशवाणी को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं 2007 से निरंतर आकाशवाणी के कार्यक्रमों में सहभागिता कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आकाशवाणी है तो हम सभी बहुत समृद्ध होंगे, सभी भाषाई हमारी समृद्धता बनी रहेगी।
1: अंत में आकाशवाणी और शिक्षा के रिश्ते को आप एक पंक्ति में कैसे व्यक्त करेंगी?
0: आकाशवाणी ने ज्ञान के माध्यम से जिस संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण किया वो केवल आकाशवाणी ही कर सकती थी। एक शिक्षक की आवाज़ 20, 40, 50 बच्चों तक जा सकती है, किंतु आकाशवाणी एक साथ ग्रामीण क्षेत्रों के दूरस्थ अंचल में निवासरत कितने लोगों के पास पहुंचने का काम करती है। इसलिए आकाशवाणी ही सबसे श्रेष्ठ माध्यम है, संस्कारवान, एक राष्ट्र के निर्माण में जो भूमिका होना चाहिए वो आकाशवाणी की भूमिका सबसे महती भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए जन जन तक जो पहुंचाया जा सकता है वो संदेश हम आकाशवाणी से ही प्रसारित करते हैं। जिस तरीके से प्रातःकालीन सूरज के उदय से अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार जैसे ही आकाशवाणी का

0: शुरू होता है, वंदे मातरम शुरू होता है। ऐसा लगता है कि हमारा देश, पूरा देश जाग गया है, क्योंकि वंदे मातरम के साथ पंचांग और आस्था के स्वर को साथ ही जब रामचरितमानस की पंक्तियों का प्रसारण होता है तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान बन जाता है, क्योंकि वहाँ के युवा वृद्ध सभी लोग रामचरितमानस की चौपाइयों को उसी तरह गुनगुनाने लगते हैं। और इस तरीके से विविधा से लेकर युवा वृद्ध सभी लोग जो है, चाहे वो हमारे किसान भाई हों या नारी जगत में महिलाएं हों, हर व्यक्ति अपने लिए अपने पसंदीदा कार्यक्रम को आकाशवाणी के माध्यम से सुनना चाहता है। आकाशवाणी के 90 वर्ष ना हो, आकाशवाणी के 190 वर्ष पूर्ण आकाशवाणी करे। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ, इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, आकाशवाणी का सूरज हमेशा चमकता रहे, दमकता रहे।
1: मैम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमें और हमारे सभी साथियों को, और जितने भी युवा दोस्त हमारे सुन रहे हैं और जितने भी लोग ये आकाशवाणी सुन रहे हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा कि इतनी अच्छी जानकारी आपने दी और आप हमारे कार्यक्रम और स्टूडियो में उपस्थित हुई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं डॉक्टर भारती पाराशर आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, आपने मुझे स्टूडियो में आमंत्रित किया, धन्यवाद।
1: आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आज?
0: भारत को किला है, लता मंगेशकर जी, उनका जो लोकप्रिय गीत है, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, क्योंकि मेरी पहचान भी मेरी आवाज़ ही है, तो मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे।
2: No!

बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के गौरवशाली संकल्प अपने सफर के 90 बेमिसाल वर्ष पूरे कर रहा है। 90 साल यानी करीब 9 दशक, इसी का हम आज जश्न मना रहे हैं, जिसने भारत को बोलना सिखाया, जिसने आज़ाद भारत की पहली सांस को देश के कोने कोने तक पहुंचाया, जब टेलीविज़न के पर्दे बैनूर थे और मोबाइल का नामो निशान नहीं था। तब लकड़ी के उस छोटे से बक्से में बंद रेडियो हमारे परिवार का सबसे बड़ा सदस्य हुआ करता था। क्या आपको याद है वो दौर जब घर के किसी एक कोने में मेज पर सजे उस रेडियो सेट के ऊपर बकायदा एक सूती कपड़ा या कवर ढका होता था, रेडियो चालू होने से पहले कि वो हल्की सी सरसराहट और फिर अचानक एक भारी आवाज, ये आकाशवाणी है। इन शब्दों को सुनते ही सभी लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। 1947 की वो ऐतिहासिक रात, युद्ध का वो दौर जब देशवासी को सीमाओं का हाल जानने के लिए रेडियो कान लगाकर सुनते थे। सुख हो या दुख, युद्ध हो या क्रांति, या फिर खेती में कृषि जगत की बात हो, आकाशवाणी हर समय साथ रहती है। आकाशवाणी सिर्फ गानों का पिटारा नहीं रहा, यह हमारी संस्कृति का रखवाला भी रहा है। याद कीजिए रविवार की वो सुस्त दोपहर, जब घर के आंगन में सन्नाटा होता था और अचानक गूंजती थी हवा महल के नाटकों की तान, वो झनकार, वो सैनिकों के लिए जयमाला कार्यक्रम, सीमाओं पर तैनात जवानों के लिए आकाशवाणी ही उनके घर की चिट्ठी हुआ करती थी। शास्त्रीय संगीत के उस्तादों से लेकर सुदूर गांवों की लोक गायिकाओं तक, अगर किसी ने पहली बार मंच दिया है तो वो आकाशवाणी ही है। आज जमाना बदल गया है, हमारी जेबों में स्क्रीन आ गई है, इंटरनेट का माया जाल है, लेकिन वो सुकून, वो मर्यादा और शुद्धता आकाशवाणी की आवाज में ही है। वो आज के इस शोर वाले दौर में कहीं और मुमकिन ही नहीं है। आज भी देश के प्रधानमंत्री जी जब मन की बात करते हैं तो वो इसी आकाशवाणी के माध्यम से देश के आखिरी गांव के आखिरी इंसान तक पहुंच जाते हैं। 90 साल का यह सफर गवाह है कि माध्यम बदलते हैं पर मोहब्बत नहीं बदलती। 90 वर्षों का यह सफर सिर्फ सहारा नहीं, आपका भी है। आपके लिखे वो खत, वो पत्र, वो पोस्टकार्ड और आपकी वो अनगिनत फरमाइशें, उन्हीं से तो आकाशवाणी का यह वजूद बना है। हम कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं, और जब तक हवाओं में सुर जिंदा है ना, आकाशवाणी धड़कन बनकर गूंजता रहेगा।

आइए अब आपको बता देते हैं प्रश्नों के उत्तर। हमारा आज का पहला प्रश्न था, प्रसार भारती के नए चेयरमैन कौन हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है प्रसून जोशी। हमारा आज का दूसरा प्रश्न था, ISRO यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसका उत्तर है बंगलुरु। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के साथ दीजिए अनुमति आपकी दोस्त भावना डोंगरे को। नमस्कार।

श्रोताओ, आपने सुना युववाणी कार्यक्रम FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी का खंडवा केंद्र। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आज नई फिल्मों के गीत लेकर हाजिर है आपका दोस्त विद्याधर मुले। नमस्कार श्रोताओं।

बर्फी। इस फिल्म से हम सुन रहे थे रेखा भारद्वाज की आवाज में सईद कादरी के बोल प्रीतम का संगीत था। और अब एमएम कीरवानी का संगीतबद्ध एक गीत आपको सुनवाते हैं। ये गीत वरुण ग्रोवर का है, राग पटेल की आवाज, फिल्म का नाम आर आर आर।

आकाशवाणी खंडवा से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विद्याधर मुले के साथ फिल्म संकेत। बॉबी जासूस, इस फिल्म का एक ड्यूएट आवाज श्रेया घोषाल और पापॉन की।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

प्यार करा। जब हैरी मिर्च से चल इस फिल्म का गीत हम सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। और अब प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, मोहित चौहान और सुनिधि चौहान की आवाज, फिल्म शुद्ध देसी रोमांस।

0: ना कहना कि तेरे मेरे बीच में क्या है,
1: क्या है
2: तुम्हें पता तो है क्या है
0: कि तेरे मेरे बीच में क्या है
1: बातें।

0: श्रोताओं, विद्याधर मुले के साथ आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी खंडवा है, शाम के 7 बजने को है। आइए सुने दिल्ली से हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल हैं। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है।

0: इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने के दर्द में बदल गया है। जापानी संसद ने आज विदेशी संकट से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में एक है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन से मुकाबला खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
3: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूं और कहाँ दूं।
2: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
3: क्यों?
2: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
3: वो कैसे?
2: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
3: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
2: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
3: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
2: आप कब आ रहे हैं?
3: आकाशवाणी खंडवा पर।
4: सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

जी हाँ श्रोताओं, आपने चुना है 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी खंडवा को। आपके प्यार का साथी निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

0: आप बने रहिए हमारे हमसफर और सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
2: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही।

0: मतलब
1: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
2: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
3: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

0: FM 101.2 MHz पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। शाम के 7:10 होने को हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश भर में बढ़ती गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने और हाइड्रेटेड रहने की अपील की। केंद्र सरकार ने सार्थक पीडीएस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी, जिसके लिए 25,530 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। खजुराहो में केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज एयर एम्बुलेंस एमपी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। अब समाचार विस्तार से। देश भर में बढ़ती गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को हाइड्रेटेड रखने और दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचने और घर से निकलते वक्त पानी साथ रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो प्यासा हो उसे पानी पिलाएं और जानवरों व पक्षियों के लिए भी बाहर पानी रखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। समारोह में 33 विभागों के करीब 14,000 छात्रों को उपाधियां प्रदान की गईं। 285 मेधावी छात्रों को स्वर्ण और रजत पदक से नवाजा गया, जिसमें 199 छात्राएं शामिल रहीं। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में सार्थक पीडीएस योजना को अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत एआई, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर पीडीएस संचालन को आधुनिक बनाया जाएगा। सार्थक पीडीएस योजना की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज, राज्य में जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन को बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय मौल्या बागची की पीठ ने कहा कि

0: निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत एसआईआर कराने की पूर्ण शक्ति रखता है। एक्ट्रेस टुषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में भोपाल कोर्ट ने आरोपी पति समर्थ सिंह को 29 मई तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई की टीम उसे लेकर घटनास्थल का निरीक्षण भी करने गई। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में रिटायर्ड जज और सास गिरबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की नई भाषा नीति पर रोक को लेकर कोई भी दिशा निर्देश देने से इनकार कर दिया है। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में सीबीएसई को जवाब देने के लिए नोटिस दिया है। सीबीएसई की नई नीति के मुताबिक कक्षा 9-10 के लिए स्टूडेंट्स को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, जिसमें 2 भाषाओं का नेटिव इंडियन लैंग्वेज होना जरूरी है। इसी नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15-16 जुलाई की तारीख दी है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। खजुराहो के पश्चिमी मंदिर परिसर में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिवसीय काउंटडाउन सीरीज के 25वें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में करीब 2000 लोगों ने भाग लिया। श्री जाधव ने घोषणा की कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस बार की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। इस मौके पर श्री जाधव ने कहा कि
2: आज खजुराहो और छतरपुर केवल अतीत के प्रतीक नहीं बल्कि योग अध्यात्म और भारतीय परंपरा के और पुनर्जागरण के जीवित केंद्र के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहे हैं। आधुनिक युग में योग हमारे जीवन का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग बनकर उभरा है। योग एक प्रगतिशील और स्वस्थ समाज की आधारशिला है।
0: उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मंत्रालय में एयर एम्बुलेंस एमपी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इसमें एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए अनुरोध की प्रक्रिया अब और सरल व तेज हो जाएगी। पोर्टल में रियल टाइम ट्रैकिंग, डिजिटल सेवा अनुरोध और समयबद्ध अनुमोदन अलर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे के 2 कोचिंग संस्थानों के शिक्षक शामिल हैं। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर भोपाल में आज कांग्रेसजनों ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए। राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रोशनपुरा चौराहे पर स्थापित पंडित नेहरू की प्रतिमा पर पुष्पार्चन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल करके नरेंद्र मोदी एप्लीकेशन या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव 29 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। प्रदेश ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 13,36,000 किसानों से 103,48,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर देश में पहला स्थान हासिल किया है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोविड काल को छोड़कर विगत 10 वर्षों में यह सर्वाधिक गेहूं उपार्जन है। वहीं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 16 जिलों में पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक 39,975 उपभोक्ता पंजीकृत हो चुके हैं और उनके खातों में 311,64,00,000 रुपये से अधिक की सब्सिडी जमा कराई जा चुकी है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा जिलों में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कल प्रदेश के 16 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री या उससे अधिक दर्ज किया गया। इसमें खजुराहो सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार 28 मई तक गर्मी अपने चरम पर बनी रहेगी, लेकिन 29 मई से मौसम बदलना शुरू होगा और कई जिलों में आंधी व बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। विभाग का कहना है कि 10 से 16 जून के बीच मानसून प्रदेश में दस्तक दे सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं भोपाल स्थित अनुसंधान संस्थान 3 से 5 जून तक भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें

विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों के 60 प्राध्यापक भाग लेंगे। खरगोन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की ठिपगांव शाखा में 41 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आने पर बैंक प्रबंधन ने 3 कर्मचारियों को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। शिवपुरी जिले में बाल श्रम रोकथाम को लेकर कलेक्टर ने दुकानों, ढाबों, कारखानों में बाल श्रमिक न होने की जांच करने और होने पर कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। पेयजल समस्याओं की सतत निगरानी और हैंडपंप संधारण संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए आगरमालवा में जिला स्तरीय नियंत्रण कंट्रोल रूम बनाया गया है। कटनी में IHSFDP योजना के तहत प्रेमनगर बस्ती में बने आवासों पर 8 अनाधिकृत कब्जों को जिला प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया। राजगढ़ में आज जिला पंचायत सभाकक्ष में जल संचयन जन भागीदारी अभियान के तहत तकनीकी मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन किया गया। शहडोल जिले में खरीफ फसल की बोनी का लक्ष्य 3000 हेक्टेयर बढ़ाकर धान की बोली का लक्ष्य 1,50,000 हेक्टेयर किया गया है। खंडवा जिला चिकित्सालय सह चिकित्सा महाविद्यालय में विश्व तंबाकू निषेध सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम कलेक्टर ने आज CM हेल्पलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलाधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। और IPL में अब से कुछ देर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। जो टीम जीतेगी वह शुक्रवार को गुजरात टाइटन से भिड़ेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला सभी भाई बहनों का आपकी बहन तरुणा शुक्ला की राम राम। भाई बहन, शासन की ओर से बहुत सी लाभकारी योजना चलाई जा रही, उनमें से एक योजना छे प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार का द्वारा बेटी न का भविष्य का सुरक्षित करने का लेन शुरू करी गई। यह एक बहुत लाभकारी न लोकप्रिय छोटी बचत योजना छे। यह योजना मुख्य रूप से बालिकाओं की पढ़ाई न शादी का खर्चा न का पूरा करने में उनका माता पिता की आर्थिक मदद करे। इन योजना को लाभ लेने का लेन बालिका का माता पिता या कानूनी अभिभावक बालिका का नाम से खातो खोली सके। खाता खोलने का समय बालिका की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। एक बच्ची का नाम पर एकज खातो खोली सकाय। न एक परिवार की केवल दो बच्ची न खाता खोली न इन योजना को लाभ ले सकाय। एम न्यूनतम राशि 250 रुपया हर साल जमा करनु पड़े, न अधिकतम जमा राशि 1.5 लाख रुपया हर साल जमा करी सकाय। यह राशि नगद चेक डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन ट्रांसफर का माध्यम से किसी भी तरह से आप जमा करा सको। यह राशि 15 साल तक जमा करनु पड़े। एक सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर से ब्याज दियो जाए। खाता खोलने की तारीख से 21 साल का बाद या फिर बालिका की शादी की यदि तारीख निकले तो उस समय यदि बालिका 18 साल की हुई गई हो तो जमा राशि आप निकाली सको। 18 साल की उम्र पूरी होने का बाद बालिका की उच्च शिक्षा का लेन आप पिछला साल तक जितनी जमा राशि हुई ओको 50% राशि निकाली सको, लेकिन पूरी राशि 21 वर्ष का बाद या शादी होने पर निकाली सको। तो भाई बहनों, आप भी इन योजना को लाभ लेना का लेन अपनी बच्ची का खाता जरूर खोल जाओ।

अब हम आपसे कार्यक्रम सामान्य ज्ञान को प्रश्न पूछें, तो सामान्य ज्ञान को आज को प्रश्न आपको बताई देवाएं। आज को सामान्य ज्ञान को प्रश्न छे, मल्टी क्रॉप प्लांटर कृषि यंत्र से काई लाभ छे। प्रश्न एक बार सुन लियो, मल्टी क्रॉप प्लांटर कृषि यंत्र से काई लाभ छे। इन प्रश्न को उत्तर हमेशा की तरह हम बतावांगा कार्यक्रम का अंत में। तब तक आप कार्यक्रम को आनंद लियो न इन प्रश्न का उत्तर पर विचार करता रहो। भाई बहनों, हमारा निमार में गर्मी का दिन नमा पानी की कमी रहे, और एकालीन वैज्ञानिक जो छे खेती कालीन ड्रिप सिंचाई पद्धति सबसे ज़्यादा लाभकारी बतावज, और बहुत सा किसान भाई ड्रिप सिंचाई पद्धति से खेती कर सिंचाई करी भी राज खेत में। ड्रिप सिंचाई तो हम करा, लेकिन ड्रिप की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, न रख रखाव कैसे होनी चाहिए, ए पर ध्यान देनो भी बहुत जरूरी रहे। ड्रिप सिंचाई पद्धति हमारा निमाड़ में कम पानी में ज़्यादा उत्पादन कालीन सबसे उपयुक्त रहे। निमाड़ की मिट्टी, जलवायु, बदलता जल स्तर, ऐसी स्थिति में ड्रिप सिंचाई पद्धति किसान भाई ने कालीन एक वरदान का रूप में है। इन पद्धति से पानी की हर बूंद सीधा पौधा की जड़ तक पहुँचे। ड्रिप से 40-70% तक पानी की बचत हो, फसल न की समान रूप से तेजी से वृद्धि हो, फसल का उत्पादन न गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो, न खरपतवार कम उगने से लागत भी कम लगे, बिजली न मेहनत भी कम लगे, गर्मी में भी मिट्टी की नमी को संतुलन बनेल रहे। हमारा निमाड़ में केला, मिर्च, कपास, पपीता, टमाटर न सब्जी फसल नम ड्रिप पद्धति से किसान भाई अच्छा उत्पादन ले राज न लाभ कमाई राज। ड्रिप पद्धति बहुत लाभदायक छे, लेकिन जरूरी छे कि ड्रिप गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता वाली ड्रिप लाइन फिल्टर न पाइप लंबा समय तक टिकाऊ बनेल रहे, न पानी का दबाव कभी संतुलित बने न रखे। अच्छे ड्रिप सिस्टम में मजबूत न यूवी प्रोटेक्टेड पाइप रहे, ड्रिप उच्च गुणवत्ता वालों रहे, फिल्ट्रेशन सिस्टम बेहतर रहे, पानी का समान रूप से वितरण हो, न ज़्यादा समय तक सर्विस दे। ड्रिप गुणवत्ता जितनी जरूरी छे और तो ड्रिप सिस्टम को रख रखाव भी जरूरी छे। समय समय पर फिल्टर का साफ करता रहना चाहिए, पाइपलाइन में कहीं भी लीकेज तो नहीं है एक देखता रहना चाहिए। ड्रिप यदि चोक हुई गई हो तो ओखा फ्लशिंग करना चाहिए, पानी का साफ रखना का लेन एसिड या क्लोरिनेशन उपचार करना चाहिए, फसल का सीजन का बाद पाइप का सुरक्षित रखना चाहिए। सही रख रखाव रखांगा तो ड्रिप सिस्टम कई साल तक अच्छी तरह काम करेगा, न बार बार सुधारने में रुपया पैसा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। ड्रिप का माध्यम से घुलनशील खाद उर्वरक पौधा का सीधा जड़ तक पहुँचे, जेका से खाद की बचत हो, न फसल की वृद्धि भी अच्छी हो। ड्रिप का साथ साथ यदि हम मल्चिंग कराएं तो मल्चिंग करने से नमी लंबा समय तक बनेल रहे, खरपतवार कम हो, न कीट न रोग न से भी बचा हो। एक साथ ऑटोमेशन सिस्टम भी कुछ किसान भाई लगावे, ऑटोमेशन सिस्टम लगाने से पानी न खाद दोनों को हम नियंत्रित कर सकें। तो भाई बहन, ड्रिप का माध्यम से सूक्ष्म पोषक तत्व जैविक घोल दई न फसल की गुणवत्ता न बाजार मूल्य का हम बढ़ा सकें। तो आप भी ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाई न फसल को अच्छा उत्पादन लियो, लेकिन हमेशा ड्रिप की गुणवत्ता की जांच करी लियो, न ओको रख रखाव भी सही ढंग से करो, तो आप अच्छी तरह से आर्थिक लाभ ले सको। आगे अरु बातचीत करांगा, पहले आओ सुनी लेवा मोहन पुजारी को गायल यो भजन।

0: भाई बहनों, अभी अपन सुनी रहा था मोहन पुजारी को गायल यू भजन। आओ सुना भेंट वार्ता, जेको विषय छे बायोगैस संयंत्र और इसके लाभ। इना विषय पर जानकारी दे रहा है ग्राम मोटक्का माफी का युवा प्रगतिशील कृषक अंतिम पटेल। तो आओ सुना बायोगैस संयंत्र और इसके लाभ, इना विषय पर जानकारी।
1: किसान भाइयों, राम राम। किसान भाइयों, हमारे किसान भाई खाद उर्वरक के रूप में गोबर का प्रयोग करते हैं और गोबर के उपयोग से ही बायोगैस और बायोगैस स्लरी बनती है।

0: तो बायोगैस संयंत्र और इसके लाभ, इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए आज हमारे साथ फोन पर जुड़े हैं ग्राम मोटका माफी के युवा प्रगतिशील कृषक अंतिम पटेल जी। अंतिम पटेल जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: अंतिम जी, आज का हमारा विषय है बायोगैस संयंत्र और इसके लाभ। तो
1: जी
0: सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने बायोगैस संयंत्र कब बनवाया था?
1: मैंने 2010 में बायोगैस संयंत्र अपने पशुधन जहाँ बांधे जाते हैं जिसे हम बाड़ा बोलते हैं वहाँ पे बनवाया था। और वहाँ पे बनवाने के बाद अभी कंटिन्यू 2010 से आज की तारीख तक भी वो अच्छे से चल रहा है और अच्छे से काम कर रहा है।
0: अच्छा, तो ये बायोगैस संयंत्र बनाने के लिए कितनी जमीन की जरूरत पड़ी हमें?
1: ये सब अलग अलग हिसाब से होता है। जैसे मेरे यहाँ 6 घन मीटर का है जिसमें लगभग 15 बाय 15 की जो भूमि होती है, 15 फीट लंबी, 15 फीट चौड़ी, इसमें उसका निर्माण हुआ है।
0: अच्छा,
1: और जैसे भी यदि बड़ा बनाना चाहो तो जमीन का चुनाव घन मीटर के हिसाब से किया जाता है कि कितने घन मीटर का आपको बनवाना है, आपके पशु कितने हैं, आपके पास पशुधनों के हिसाब से होने वाले गोबर, जो गोबर होता है, तो उस गोबर के अनुमान से आप बना सकते हो कि आपके परिवार कितना बड़ा परिवार है। उस परिवार के हिसाब से आप बड़ा भी बना सकते हो, 10 घन मीटर तक का भी बना सकते हो। और बड़े बड़े प्लांट भी होते हैं इसके, तो लगभग 6 घन मीटर का मेरे घर के लिए तो अच्छा था और अच्छा चल भी रहा है। अलग अलग घन मीटर का भी होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास 4 भैंस, आपके पास 4 पशु है तो 4 पशु से नहीं कर सकते। ये 2 से लगाकर 100 घन मीटर तक बना सकते हैं। तो आपकी सहूलत के हिसाब से कि आपके पास पशु कितने हैं, कि आपके पास क्षेत्र कितना है, उस क्षेत्र के हिसाब से आप निर्माण करवा सकते हैं।
0: अच्छा, तो 6 घन मीटर का जैसे आपने बनवाया है तो इसके लिए कितने पशुधन की जरूरत पड़ी?
1: मेरे पास जैसे 10 से 12 पशुधन है जिसमें 2 बैल है और 7 भैंसे हैं और गायें हैं और बाकी जो बच्चे बछड़े हैं वो भी, तो लगभग टोटल 12 से 14 यदि पशु हैं तो हम अच्छे से 6 घन मीटर का चला सकते हैं।
0: अच्छा, और ये बायोगैस संयंत्र कितने प्रकार का होता है?
1: 2 प्रकार के ये होते हैं, जैसे तैरते ड्रम नुमा होता है जिसे हम फ्लोटिंग ड्रम बोलते हैं, और एक होता है
0: अच्छा
1: स्थिर गुंबद नुमा जिसे फिक्स ड्रम बोलते हैं।
0: अच्छा
1: किसान अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे बनवाता है। जैसे मेरे पास जो है वो गुंबद नुमा है जिसे हम फिक्स ड्रम बोलते हैं, ये जमीन के अंदर होता है और उसका जो गुंबद होता है वो जमीन से बाहर होता है, और उसमें उसके साइड से इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। एक इनपुट ऊपर की साइड होता है और आउटपुट जिससे हमारी गोबर की सैलरी निकलती है वो नीचे की ओर होता है।
0: अच्छा ये तो आप
1: जी
0: गुंबद नुमा जो संयंत्र होता है उसके बारे में बताया,
1: हाँ,
0: जो फ्लोटिंग है उसमें ये प्रक्रिया किस तरह से होती है?
1: फ्लोटिंग की क्रिया भी लगभग ऐसी ही होती है, पर वो जमीन के अंदर नहीं होता, वो जमीन के ऊपर होता है और वो जो गोबर का घोल होता है उस पर तैरते हुए होता है। तो क्या होता है कि जब गैस बनती है तो वो ऑटोमेटिक उठने लगता है, हमें पता चलता है कि हमारे जो गोबर गैस में जो गैस है वो अच्छे से बन रही है और उसमें आउटपुट और इनपुट दोनों लगभग एक ही स्थिरता में होते हैं। तो जैसे ही वो उसमें गैस अधिक होती है, आउटपुट से उसकी जो सैलरी होती है वो बाहर निकलना चालू हो जाती है।
0: अच्छा, और जो हमें गोबर की जरूरत पड़ती है तो उसकी मात्रा दोनों में समान होती है?
1: हाँ, लगभग तो दोनों में सामान्य होती है। एक बार जो चढ़िंग अवस्था में हम जब गोबर घोलते हैं तो उसके लिए हमें गोबर इकट्ठा करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में इतना गोबर मिल जाएगा और एक दिन में ही भर जाएगा, उसमें 1 ट्रायली से 1.5 ट्रायली मतलब लगभग 2 से 3 टन तक भी गोबर घोल बनाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है कि पहले तो हम आसपास के जो हमारे किसान हैं जो पशुधन पालते हैं उनको बोल दिया करते हैं कि भैया आप 2-3 दिन का जो गोबर है उसे इकट्ठा करके रखिए और उस पर पर्याप्त नमी बनाकर रखिए। तो उससे क्या होगा कि जब एक साथ उसको घोलने की भरने की जब बारी आती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा डूम होता है, 6 घन मीटर बहुत बड़ा हो गया, तो उसे हम अपने पशुओं के गोबर से तो नहीं भर पाएंगे, पर जब एक बार भरने के बाद उसके प्रतिदिन जो रूटीन में गोबर होता है उसकी लिमिट होनी चाहिए कि 10 से 12 पशुओं के गोबर होता है उसका घोल बना के फिर उसमें हम चलाते हैं, तो प्रति डे फिर वो बनना चालू कर जाता है और फिर गोबर भी कम लगना चालू हो जाता है।
0: अच्छा, यानी जब शुरुआत होती है उस समय हमें अधिक गोबर की जरूरत होती है।
1: जी
0: अंतिम जी, गोबर गैस संयंत्र जो आपने बनाया तो उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, किस तरह बनाया जाता है ये?
1: इसके जो कारीगर होते हैं, मैंने जब 2010 में बनाया था जब सरकार की योजना के अंतर्गत था ये, और सरकार के अंतर्गत मुझे उसमें अनुदान राशि मिली थी,
0: अच्छा
1: तो उनके जरिए बनाया था। जो बनाने वाले कारीगर हैं, ईट सीमेंट और सरिया से उसका अच्छा सा निर्माण करके उसे बनाया गया। उसके बाद फिर हमने गोबर इकट्ठा करके फिर उस पर गोबर चलाया। एक नल की आवश्यकता होती है, एक वाल की आवश्यकता होती है, गोबर गैस के एक चूल्हे की आवश्यकता होती है, और आप गैस को किस तरीके से इस्तेमाल में ले सकते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अलग अलग तरीके से इसे किसान इस्तेमाल में लेता है, कोई रोशनी के लिए, कोई ईंधन के लिए, कोई आंतरिक ऊर्जा के लिए लेता है। तो देसी खाद का भी काम अच्छे से हो जाता है, साथ ही साथ बायोगैस का भी हमको बहुत अच्छा उपयोग मिलता है और ये वातावरण को शुद्ध बनाए रखता है।
0: जी
1: इसमें
0: हाँ,
1: कोई ऐसी समस्या नहीं होती, क्योंकि इसमें 2 ही प्रकार की गैस होती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और दूसरी मेथेन होती है। तो मेथेन का जो प्रतिशत भाग होता है वो लगभग 50 से 60% होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 35 से 40% के लगभग इसमें होती है, और अन्य गैस भी सहायक होती है। तो इन 2 गैसों से जब बायोगैस आती है जो हमारे घरों में आती है, और उससे हम जब रोटी बनाते हैं उस, तो रोटी भी

0: स्वादिष्ट होती है।
1: जी हाँ, आपने जैसे 6 घन मीटर में बनाया है तो
0: हाँ
1: इससे जितनी बायोगैस हमें मिलती है वो आपके घर के लिए पर्याप्त होती है?
0: बहुत बहुत अच्छे से। अब मैं इसका किलो से तो नहीं बता सकता, पर लगभग जब चलती है ना तो कम से कम 4 से 5 घंटे तक कंटिन्यू चलता है। तो 4 से 5 घंटे कंटिन्यू चलना तो बहुत हो गया। और जैसे ही हमने गोबर घोला, गोमूत्र और ये भी जैसे डलता है, तो जैसे आप उधर गोबर अच्छे से घोलोगे वैसे ही इधर गैस अच्छे से मिलना चालू हो जाएगी। पहले क्या था कि जब स्टार्टिंग की थी, स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छा चलता था, लगभग 6 6 7 7 घंटे तक चलता था, कंटिन्यू चलता था। पर अब क्या है कि थोड़ा थोड़ा जैसे लंबा समय हो गया है तो आप उसे एक बार फिर से क्लियर करके, अंदर साफ करके, फिर उसमें से पोताई करके फिर को उसे चालू करना है। बोलते हैं ना कि रिसाइकलिंग करना जरूरी होता है, तो इसकी
1: जी
0: रिसाइकलिंग नहीं, फोड़ना नहीं है, इसे अंदर इसकी फिर से सर्विस करके फिर से इसको चालू करना है। क्योंकि नीचे कभी कभी क्या होता है, पत्थर बैठ जाते हैं, कुछ बैठ जाता है, तो गैस जो उठाऊ गैस का होता है, जो गैस बनती है वो कम बनना चालू हो जाती है।
1: अच्छा अंतिम जी, बायोगैस संयंत्र में जब गोबर भरते हैं तो गोबर के अलावा और क्या-क्या चीजें डाली जाती है?
0: जैसे हमारे पास गोबर है, गौमूत्र है,

0: करके फिर से इसको चालू करना है, क्योंकि नीचे के भी कभी क्या होता है, पत्थर बैठ जाते हैं, कुछ बैठ जाता है, तो वो गैस जो उठाऊ गैस का होता है, जो गैस बनती है वो कम बनना चालू हो जाती है।
1: अच्छा अंतिम जी, बायोगैस संयंत्र में जब गोबर भरते हैं तो गोबर के अलावा और क्या क्या चीज डाली जाती है?
0: जैसे हमारे पास गोबर है, गौमूत्र है, और ऐसे जो कूड़ा कचरा है, जैसे फूल होता है, छाछ होती है, इन्हें हम डालकर गैस का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें हमें इसी से मिल जाती है कि गोबर भी हमें हमें पशुधन से मिल जाता है,
1: जी
0: और इनके साथ हमें जैसे हमारे यहाँ छाछ होती है, जो सड़ी गली छाछ होती है वो डाल देते हैं, जैसे फूल होते हैं तो फूल जो सड़े गले फूल होते हैं या फल फ्रूट जो जिनके छिलके हो गए हैं उन्हें भी डाल सकते हैं, तो वो क्या है कि जितना डलेगा उतनी मैथेन सक्रिय हो जाएगी, और मैथेन जितनी तेज तरीके से बनेगी उतनी अच्छी गैस चलेगी।
1: ये पशु अपशिष्ट के साथ ही आप जैविक अपशिष्ट भी डालते हैं,
0: हाँ जी,
1: तो इनको डालने का कोई क्रम है क्या कि पहले गोबर की परत होना, फिर फल फूल, फिर गोबर, या कभी
0: जैसे
1: भी डाल सकते हैं हम?
0: कभी भी तो मुख्य तो गोबर ही है,
1: जी
0: और जब गोबर से हम करते हैं उसके बाद हम इन चीजों को ऐड करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो चलता चला जाएगा। यदि हम प्रारंभिक अवस्था में ऐड करेंगे तो हो सकता है वो नीचे बैठ जाए, और नीचे बैठने के बाद समस्या उत्पन्न हो जाए।
1: जी और बायोगैस संयंत्र जो बनाया आपने, तो गैस के साथ साथ हमें और क्या क्या चीजें मिलती है इससे?
0: जैसे
1: जी
0: हमारे पास गोबर होता है तो बहुत सारे किसान क्या करते हैं, गोबर के कंडे बनाते हैं, जिससे कम ऊर्जा दर्शाता है, दूसरा ईंधन का नुकसान, और आखिरी में मिली तो राख, यही
1: जी
0: हुआ,
1: हाँ
0: और वातावरण को खराब किया अलग। मगर उस गोबर का यदि हम सही तरीके से इस्तेमाल करें या बायोगैस के संयंत्र से इस्तेमाल करें तो दो चीज मिलती है, एक तो बायोगैस मिलती है और एक बायोगैस सैलरी से देसी खाद मिलता है, और बायोगैस से भी हमें और चीजें मिलती है, जैसे रोशनी, ईंधन और यांत्रिकी ऊर्जा। यांत्रिकी ऊर्जा पे बात करूं तो इससे भी दो प्रकार की ऊर्जाएं मिलती है, एक तो ईंधन इंजन चलाने के लिए, और दूसरी होती है बिजली उत्पादन हेतु, जैसे हमारे घर में हम लाइट चला लें या कुएं का इंजन चलाना हो, ऐसे ऐसी काम इससे हम कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा और सुगम उपयोग है, और खर्च भी इससे हमारा बच जाता है।
1: जी हाँ और यदि हम लागत की बात करें, तो आपने जैसे 6 घन मीटर का बनाया तो आपको कितनी लागत लगी इसको बनाने में? आपने तो बताया
0: हाँ,
1: अनुदान मिला है, लेकिन यदि अनुदान नहीं मिलता है तो कितनी लागत लगती है?
0: लगभग उस समय में यह बन रहा था 13 से 14 हजार रुपए में। अब गिट्टी रेत उपयोग होता है, इनमें तेजी आई है, इनकी कीमतें क्या है कि स्थिर नहीं है, बढ़ती घटती हुई है, तो इनकी कीमतों पर निर्भर करता है कि ईंट गिट्टी हमें कितने में आ रही है, तो लगभग 20 से 25 हजार में कंप्लीट हो जाता है।
1: जी अच्छा, जैसे आपको अनुदान दिया गया, क्या
0: हाँ
1: अभी इस समय भी ये योजना शासन की चल रही है?
0: हाँ जी, चल रही है योजना, शासन की चल रही है, पर इसके लिए हमें हमें ग्राम सेवक से, ग्राम पंचायत से पूछना पड़ेगा कौन सी पंचायत में ये चल रहा है, कौन सी पंचायत में नहीं चल रहा है। ग्राम सेवक जो होते हैं उनसे जानकारियां लेनी पड़ेगी, तो वो हमें सही जानकारी देंगे और सही तरीके से हम उसका लाभ ले सकेंगे।
1: अंतिम क्या, जैसे आपने बताया कि बायोगैस के साथ में बायोगैस स्लरी निकलती है जो
0: हाँ
1: कि हम खाद के रूप में उपयोग करते हैं,
0: जी,
1: तो इस खाद का उपयोग हमें किस तरह करना चाहिए?
0: जो बायोगैस का खाद होता है, देसी खाद जिसे हम बोलते हैं, ये अमृत का काम करती है फसलों के लिए। इसमें क्या है कि ये ऐसी संतुलित खाद होती है कि ना तो इसमें जो खरपतवारें होती है उसके बीज नहीं होते, और ये
1: जी
0: पूरी तरीके से पकी हुई खाद होती है। अधिकतर हम खाद को जला देते हैं, ये पकी हुई खाद होती है जो पानी में रहकर, पानी में घुलकर इसको पूरी तरीके से एकदम चाय की पत्ती की तरह हो जाती है, एकदम भुरभुरी सी। तो जैसे ही ये खाद हमारे खेत में डलेगी तो वहां पे क्या है, नमी में जब डलेगी तो केचुए अधिक से अधिक जन्म लेंगे, और जब केचुए होंगे तो भूमि को संतुलित बनाएंगे, भूमि में नमी की मात्रा को नीचे तक लेके जाएंगे, और
1: जी
0: जमीन को हर बार पलटी करने जैसा काम करेंगे और उसे नरम बनाएंगे, जो जमीनें सख्त हो चुकी है उसे नरम करेंगे। तो ये खाद हमारे जो खाद होती है गोबर की, जिसे हम एक अलग तरीके से ढेर लगा के रखते हैं, उससे कहीं ज्यादा बेहतर होती है और कहीं तरीके से उपयोगी भी होती है।
1: जी हाँ इन्हें स्लरी गोबर के खाद की तुलना में बेहतर हो ही जाती है, लेकिन
0: हाँ
1: उसको जब हम खेत में डालते हैं तो ये और ज्यादा उपयोगी हो जाती है क्योंकि इसमें वर्म बन जाते हैं,
0: जी,
1: और जैसे आपने बताया कि भुरभुरी हो जाती है, तो निश्चित रूप से इसमें जल अवशोषण क्षमता भी बढ़ती है और हवा का आवागमन भी अच्छी तरह होता है।
0: हाँ,
1: जी हाँ
0: और इससे हमें खाद भी मिलेगी, खाद के साथ साथ गैस भी मिलेगी, तो हमें दो तीन प्रॉफिट इसके साथ होगा, और
1: जी
0: दोबारा से भी हमारा वातावरण भी शुद्ध रहेगा।
1: हाँ अंतिम जी, भी बायोगैस संयंत्र हम बड़ा बनाते हैं,
0: हाँ
1: अधिक घन मीटर में बनाते हैं, और
0: हाँ
1: उससे निकलने वाली गैस जो है वो अधिक मात्रा में बन रही है,
0: हाँ
1: तो क्या इसे किसान भाई बेच भी सकते हैं?
0: जी, अब यदि बेचना चाहे या किसी को कनेक्शन देना चाहे तो वो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं।
1: अंतिम जी, जैसे कि आपने बताया कि आप बायोगैस संयंत्र घर के नजदीक बाड़े में बनाया है,
0: हाँ,
1: तो बायोगैस कितनी दूरी तक जा सकती है?
0: मेरे यहाँ पे क्या है कि मेरे यहाँ बाड़े की और घर की दूरी कम से कम 350 फीट 400 फीट के लगभग है,
1: जी
0: तो इसके लिए एक जो नल होती है, उस नल से मतलब वो गैस का प्रेशर बनता है, और उस गैस के प्रेशर से हमारे घर तक 350 फीट तक मतलब आई है, और

0: 300 फीट पे भी बहुत अच्छे प्रेशर से चलती है और बहुत लंबे समय तक चलती है। तो यदि हमारे जैसे ही जो संयंत्र है वो यदि जितना बड़ा होगा उतनी लंबाई गैस की ले जाने में के लिए हमें सहूलियत हो जाएगी।
1: यानी आपका कहने का तात्पर्य यही कि यदि संयंत्र बड़ा बना है तो
0: हाँ
1: उससे निकलने वाली गैस जो है वो अधिक दूरी तक जा सकती है।
0: हाँ हाँ
1: अंतिम पटेल जी, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके अलावा आप हमारे किसान भाइयों को और क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: जी, मैं यही कहना चाहूंगा अपने किसानों को, खेती में नवाचार के साथ साथ हम हमारे पशुधनों को भी यदि सही तरीके से देखभाल करें और अन्य बिजनेस इनसे करें, जैसे बायोगैस हो गया, दुग्ध उत्पादन हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं और बड़े से बड़ी चुनौती को हम सरलता से निपटा सकें। तो आप कृषि के साथ साथ अपने जीवन में भी नवाचार अपनाते रहें और तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए अच्छा से अच्छा उत्पादन लेते रहें। और रही बात बायोगैस संयंत्र की, तो ये मैं तो चाहूंगा कि हर एक किसान के लिए बहुत जरूरी है और यदि किसान इसे लगाता है तो सदैव लाभ ही पाएगा, इससे नुकसान नहीं है।
1: जी हाँ, अंतिम पटेल जी, आपने बायोगैस संयंत्र और इसके लाभ, इस विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद।
1: भाई बनहोर, अभी अपन सुनी रहा था भेंट वार्ता, जेको विषय तो बायोगैस संयंत्र और इसके लाभ, इन विषय पर जानकारी दे रहा था ग्राम मोटका माफी का युवा प्रगतिशील कृषक अंतिम पटेल जी। अम बारी छे आज का समाचार के। आज को समाचार छे, मौसम विशेषज्ञ ने का अनुसार इनी बार गर्मी को असर रात का मौसम पर भी दिखाई दे रहे। रात को तापमान सामान्य से अधिक बनेल छे, हीट स्टोर इफेक्ट बढ़ी गोज। मौसम विशेष रूप से विशेषज्ञ ए के शुक्ला का अनुसार आमतौर पर मई में प्री मानसून गतिविधि ने तापमान को कुछ राहत देज, पर इनी बार असो नहीं हुयो। एमा एक साथ उत्तर पश्चिम से आने वाली गर्म न शुष्क हवा न गर्मी का असर ख अरु बढ़ाई दियो। भाई बहनों, यूरोपीय मौसम एजेंसी का 15 दिन का पूर्वानुमान का आधार पर 29 मई से 5 जून तक भारत का करीब 80 से 90% हिस्सा में प्री मानसून बारिश होने की संभावना छे। ये था आज का समाचार। न अम कृषि उपज मंडी खंडवा से मिली जानकारी का अनुसार आज अनाज मंडी में उपज का भाव ये रहा। सोयाबीन को न्यूनतम भाव रहो 5201 रुपया प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 8251 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं को न्यूनतम भाव 2000 रुपया प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 2469 रुपया प्रति क्विंटल। तुअर को न्यूनतम भाव 5300 रुपया प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 7301 रुपया प्रति क्विंटल। चना को न्यूनतम भाव 4850 रुपया प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 5896 रुपया प्रति क्विंटल। डॉलर चना को भाव रहो 6502 रुपया से 7370 रुपया प्रति क्विंटल। ज्वार को न्यूनतम भाव एकज भाव रहो 2120 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग को न्यूनतम भाव 5001 रुपया प्रति क्विंटल न अधिकतम भाव रहो 7111 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का को न्यूनतम भाव 1851 रुपया प्रति क्विंटल न अधिकतम भाव रहो 1973 रुपया प्रति क्विंटल। ये थी मंडी भाव की जानकारी न अम मौसम की जानकारी। आज सूर्योदय सुबह 5:40 पर हुयो न सूर्यास्त शाम 7:20 पर हुयो। आज का दिन को अधिकतम तापमान लगभग 46 डिग्री सेल्सियस रहो न रात को न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। भाई बहनों, एक साथ ज किसान भाई नका लेन एक सूचना छे। किसान भाई नक कि कल दिनांक 28 मई का गुरुवार ईद होने का कारण खंडवा मंडी में अनाज को नीलामी को कार्य बंद रहेगा। असुविधा से बचने का लेन किसान भाई अपने आसपास रहने वाला सभी किसान भाई नक सूचना जरूर दे जो। ये थी सूचना। भाई बहनों, आओ सुना एक निमाड़ी लोकगीत।

आईवन होल स्ने लता भटोरे का गाय निमारी लोकगीत का बात। अब बारी छे आज का प्रश्न का उत्तर की। हमने आपसे प्रश्न पूछा तो मल्टी क्रॉप प्लांटर कृषि यंत्र से कई लाभ छे, तो मल्टी क्रॉप प्लांटर कृषि यंत्र कम समय में अलग अलग फसल न की वैज्ञानिक तरीका से बुआई करी न समय न मेहनत दोनों का बचावज एक साथ है।

अभी आप सुन रहे थे खेती गृहस्थी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब से कुछ ही देर में राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं सुरेंद्र गुलाटी के लिखे नाटक यादों की परछाइयां का तीसरा भाग। निर्देशक हैं दीनानाथ।
1: यार विक्रम, वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ आओ।
2: हाँ, योर अटेंशन प्लीज, मिस ज़ायदा एक गजल पेश करेंगी।
3: ओह नो,
1: ओह यस,
3: आई
1: डोंट
3: नो व्हाट टू से।
1: प्लीज कम ऑन
3: नाउ। ओके ओके, क्या सुनाओ? अच्छा, ऐश किया है

0: इस शर्म इस
1: अनहार। तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है विकी।
2: अरे मैंने देखा ही नहीं,
1: कहाँ खो गई थी?
2: भाई बर्थडे केक तो खिलाओ, मुंह मीठा करने को जी जा रहा है।
1: ओह आई एम सॉरी, माफ करना, मैं बिल्कुल भूल गई थी, अभी लाती हूँ।
2: ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ।
1: ये लो।
2: थैंक यू। अभी तक नाराज हो?
1: क्यों आए देर से? और आए भी तो दोस्तों में ही मस्त हो।
2: कहाँ की भी, तुम ही को तो ढूंढ रहा था।
1: आई डोंट बिलीव यू।
2: अच्छा बाबा ना सही, अब तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं?
1: कई तरीके हैं, लेकिन तुम तो जानबूझकर।
2: ओ सुनो, करीब आओ।
1: हटो, देखो बाहर कोई आया है।
3: अरे कीवी। ओ सॉरी, तुम्हारी फ्रेंड नीना है।
1: मैं अभी आई।
4: अरे भाई विकी, अम्मा अकेले अकेले क्या खाया जा रहा है?
2: जूते खा रहा हूँ यार, जरा सी देर हो गई आने में, कीवी इतनी नाराज है मुझसे, बस इसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
3: यार अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई, बाद में क्या होगा?
2: तुम तजुर्बेकार आदमी हो यार, तुम ही तो बताओ।
3: अब मेरा ख्याल है ज्यादा कोशिश करने से केस बिगड़ जाता है। तुम्हारे आने से पहले तो अच्छी बली थी, बस तुम्हें देखते ही मूड ऑफ हो गया।
2: जाहिर है, पहले मनाने वाला कौन था। ठीक है यार, अब देर सवेर हो ही जाती है, मांग ली माफी एक बार दो बार।
3: डोंट बी सो सीरियस, आओ बाहर चलो। नीना आई है।
2: ओ यस, ये साथ उसके डैडी आए हैं क्या?
3: डोंट बी स्टूपिड, उसका हस्बैंड है।
2: नहीं यार, ये तो उम्र में नीना से कम 20 साल बड़ा लगता है।
3: लगता ही नहीं है भी।
2: सच? नहीं, ये नहीं हो सकता।
3: क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आता?
2: कैसे हो सकता है, मैं नीना को अच्छी तरह से जानता हूँ।
3: ये मुझे नहीं मालूम।
2: अरे भाई, किसी जमाने में बहुत दोस्ती थी हमारी।
3: अच्छा।
2: जानते हो, हमारी पहली मुलाकात बेहद दिलचस्प थी। उन दिनों मैं जर्मनी से लौटा ही था। एक रोज शाम को ग्रीन लाइट के बाहर मैं किसी का इंतजार कर रहा था।
5: कीवी का?
2: नहीं, कीवी से तो मुझे नीना ने ही बाद में इंट्रोड्यूस करवाया था, कोई और थी, तुम नहीं जानते उसे।
3: हाँ, तो फिर क्या हुआ?
2: मैं वहां खड़ा इंतजार कर रहा था, काफी देर हो चुकी थी, वो नहीं पहुंची। तभी अचानक मैंने देखा एक लड़की भी वहां मेरी ही तरह खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी, वो भी काफी देर से खड़ी खड़ी बोर हो चुकी थी। एक आध बार हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर खड़े खड़े इंतजार करते रहे।

0: अचानक मेरी तरफ वो बढ़ी और मैं
1: एक्सक्यूज मी, आप शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं।
0: जी हाँ, किसी को यहाँ 6:30 बजे आना
1: और वो नहीं आई।
0: आई?
1: ऑफ कोर्स, अगर किसी लड़के को आना होता तो आप 10 मिनट इंतजार करके चले गए होते, और अगर आप अपनी बीवी का इंतजार कर रहे होते तो आप इतने बेचैन न होते।
0: आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है।
1: हाँ, अच्छी होती तो मैं वक्त पर न पहुंचकर आधा घंटा लेट आती।
0: आई सी, आप भी किसी का?
1: जी हाँ, उसे भी 6:30 बजे यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोग वक्त तय करते वक्त ये क्यों नहीं सोच लेते कि वो वक्त पर पहुंच भी सकते हैं या नहीं।
0: और कई बार ऐसा भी हो जाता है, यू नो 11th आवर पर कोई काम निकल आता है।
1: काम क्या होता है, आदमी की विल स्ट्रांग होनी।
0: देखिए, अब हम दोनों को ही इंतजार करना है तो क्यों ना अंदर बैठ के किया जाए। आई मीन इफ यू डोंट माइंड हैविंग ए कप ऑफ कॉफी विद मी।
1: मेरा ख्याल है कोई हरज नहीं, अकेले बैठना बहुत ऑड सा लगता है।
0: मुझे भी, इसीलिए तो आइए ना।
1: चलिए।
2: सर,
0: दो कॉफी। आप कुछ और लेना पसंद करेंगे?
1: नो थैंक्स, बस कॉफी ठीक रही।
0: बस दो कॉफी ले आओ।
2: यस सर।
1: जगह मुझे बहुत पसंद है, आप यहाँ अक्सर आते
0: हैं? नहीं नहीं, यूं ही कभी कभी। आप जिनका इंतजार कर रही थी
1: वो? He's a friend of mine.
0: नहीं नहीं, मैं पूछ रहा था अगर वो इस वक्त आ जाए तो आपको मेरे साथ बैठा देखकर बुरा तो नहीं मान जाएंगे?
1: ओह नो, वो क्यों बुरा मानने लगा, उससे मेरी अपॉइंटमेंट 6:30 बजे की थी, 7 बजे की नहीं। आप अपनी बात कीजिए।
0: नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
1: शुगर?
0: 1 चम्मच।
1: गुड, मैं भी कॉफी में सिर्फ 1 चम्मच चीनी पसंद करता।
0: मेरा ख्याल है ज्यादा मीठा डालने से कॉफी का मजा खराब हो जाता है, वैसे यूरोप में लोग कॉफी बिना चीनी और दूध के पीना ही पसंद करते हैं।
1: तो आप यूरोप हुए?
0: जी हाँ, मैं हायर स्टडीज के लिए जर्मनी गया था।
1: क्या करते हैं?
0: मैं इंजीनियर हूँ, ऑटोमोबाइल्स में स्पेशलाइजेशन किया।
1: आई सी, आपने फॉरवर्ड मोटर्स का नाम तो जरूर सुना होगा।
0: जी हाँ जी हाँ, बहुत बड़ी फर्म है,
1: मेरे डैडी भी उसके मालिक हैं।
0: ओह आई सी।
1: कॉफी अच्छी है?
0: जी हाँ जी हाँ।
1: मैं भी डैडी के साथ अमेरिका गई थी, लौटते हुए यूरोप जाने का भी इरादा था, लेकिन डैडी को जल्दी इंडिया वापस पहुंचना था, बस चांस ही नहीं मिला। वहाँ कितना कुछ है देखने को।
0: बहुत, लेकिन मैं भी ज्यादा घूमा नहीं, बस पढ़ता ही रहा।
1: Really? How unlucky.
0: आपके दोस्त आए नहीं?
1: आपकी भी तो?
0: वो तो बाहर से ही लौट गई होंगी।
1: Oh, I'm so sorry. मेरी वजह से आप?
0: नहीं नहीं, आपसे मिलना भी तो, इट्स अ प्लेजर फॉर मी।
1: आपने तो अभी तक मेरा नाम भी नहीं पूछा।
0: तो आइए अपने आप को फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर लें। मेरा नाम विक्रम है।
1: मीना, मैं साइकोलॉजी में एमए कर रही हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी।
0: उम्मीद है आप बोर नहीं हो रही।
1: ओह नो, बल्कि आपने तो मुझे और बोर होने से बचा लिया। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं
0: अभी?
1: नहीं, मेरा मतलब है बिजनेस या?
0: बिजनेस के लिए पैसा चाहिए मैडम, वो मेरे पास नहीं। सर्विस कर रहा हूँ, मैं असिस्टेंट सेल्स मैनेजर हूँ।
1: बिग शॉट,
0: बस रोटी पानी का खर्चा चल जाता है।
1: एक पर्सनल सवाल पूछूं?
0: पूछिए।
1: आप एंगेज्ड हैं?
0: ओह नो। आप?
1: डैडी जल्दी ही मेरी शादी कर देना चाहते हैं, पर मैं अभी नहीं चाहती।
0: ठीक ही है, यू लुक स्वीपिंग।
1: आप मुझे फ्लैटर कर रहे हैं मिस्टर विक्रम।
0: अब आपकी और हमारी दोस्ती हो गई है, मेरा ख्याल है आप मिस्टर हटा सकती हैं। वैसे कॉलेज में यार दोस्त मुझे विकी कहकर भी पुकारते थे।
1: अच्छा?
0: जी हाँ।
1: सच बहुत मजा आया आपसे मिलकर, मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए, घर पर आज डिनर है, कुछ लोग आ रहे हैं।
0: ओह श्योर।
1: अगर आप बुरा न माने तो मैं दे दूँ?
0: आप मुझे शर्मिंदा कर रही।
1: अच्छा, फिर कभी मिलिएगा, कभी घर पर आ जाइए या टेलीफोन ही कर लीजिए।
0: ओह श्योर, आपसे तो हमेशा ही मिलकर खुशी होगी।
1: नाइट।
0: गुड नाइट। बस फिर टेलीफोन कॉफी अपॉइंटमेंट करते करते हम लोग लगभग रोज ही मिलते। एक आध बार कमला, तुम नहीं जानते हो,
3: वही जिसका तुम तब इंतजार कर रहे थे?
0: हाँ, वो भी नीना से मिली, लेकिन दोनों के बीच इतना फर्क था कि निभ ना सकी। उन दिनों मेरे दिमाग में अजीब हलचल थी, समझ में नहीं आता था मुझे क्या करना है, किधर जाना है। कमला ने कभी मुझसे साफ साफ लफ्जों में कुछ नहीं कहा था, फिर भी मैं जानता था कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। नीना सिर्फ दोस्त थी, शादी होने का सफारी पैदा नहीं।

0: नहीं होता, फिर भी उससे मिलने को, उससे बातें करने को बहुत मन करता था। हम लोग ग्रीन लाइट में घंटों बैठे बेशुमार बातें किया करते। मुझे याद है एक रोज मैंने इनडायरेक्टली शादी की बात छेड़ी।
1: शादी विकी, मैं समझती हूँ एक अरेंजमेंट है, इसकी बुनियाद किसी भी सेंटिमेंट, मेरा मतलब है भावनाओं पर नहीं रखनी चाहिए। आज के जमाने में चाहे अच्छा समझ लो या बुरा, जिंदगी में भावनाओं की कोई जगह नहीं है। और ये जो फजूल लव, प्रेम, इश्क, मोहब्बत की बातें हैं ना, सिर्फ अनपढ़ लोगों को ही अपील करती हैं, भाई कम अज कम मुझे तो नहीं करती।
0: लेकिन लाख कोशिश करने पर भी मैं कमला को नहीं भूल सकता।
1: क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं हुई है और उसकी भी शादी नहीं हुई, और फिर भूलने की जरूरत भी क्या है, शादी के बाद भी तुम दोनों अच्छे दोस्तों की तरह रह सकते हो।
0: मैं तो जब भी ऐसी बात सोचता हूँ एक अजीब सा डिप्रेशन होता है।
1: हो सकता है, बचपन में इमेच्योर माइंड होता है ना, बस इसीलिए भावुकता हावी हो जाती है। और उस भावुकता में अंधे होकर हम ये भूल जाते हैं कि प्रेमिका और बीवी दो अलग अलग चीजें। देखो ना, तुम्हारी बीवी को तुम्हारे साथ सोसाइटी में उठना बैठना है, तुम्हारे इंटरेस्ट और उसके शौक एक से होने चाहिए। भाई बुरा ना मानना विकी, बट कमला इज हार्डली अ मैच फॉर यू।
0: नहीं, बुरा मानने की तो कोई ऐसी बात नहीं है, कई लिहाज से मैं खुद भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। तुम्हारे साथ बैठकर मैं कितनी बातें कर सकता हूँ।
1: इसीलिए ना कि इंटेलेक्चुअली हम एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं, और इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। अब अगर हमारी तुम्हारी शादी हो जाए तो हम दोनों के।
0: छोड़ो, ऐसी बात सोचने से भी क्या फायदा।
1: क्यों नहीं विकी, आखिर क्यों नहीं? तुम इसलिए ये बात कहते हो, डरते हो कि मैं बहुत अमीर हूँ।
0: ये भी एक अहम वजह है।
1: गरीब लड़की अगर किसी अमीर आदमी से शादी करके उसकी दौलत में शेयर कर सकती है, तो तुम मेरी दौलत से भागते क्यों हो?
0: छोड़ो नीना, मुझे उलझन होती है।
1: तुम्हें अपने आप पर एतबार नहीं है विकी?
0: हो सकता है, लेकिन लेकिन जाने क्यों मुझे ये लगता है ये कभी नहीं हो सकेगा। तुम्हारे डैडी,
1: मेरे डैडी को मेरी खुशी चाहिए, और अपनी खुशी के लिए मुझे तुमसे बढ़कर और क्या मिल सकता है।
0: नीना,
1: सिर्फ एक बार विकी, प्लीज मेरे साथ चलकर डैडी से मिल लो।
0: अच्छा,
1: अभी, आज ही, इसी वक्त।
0: इसी वक्त? ये कौन सा वक्त है? डिनर टाइम हो रहा है।
1: नहीं, अभी अभी।
0: अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी, चलो।

यादों की परछाइयां, इस नाटक का अभी आपने तीसरा भाग सुना। लेखक सुरेंद्र गुलाटी और निर्देशक दीनानाथ। इस नाटक का चौथा और अंतिम भाग कल सुनिएगा हवा महल कार्यक्रम में।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद

किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता। सुनना न भूलिए शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में। हम बोल रहे हैं विविध भारती से। अगला कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत उड़ान फिल्म के गीत से। संगीतकार अमित त्रिवेदी, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, आवाजें अमिताभ भट्टाचार्य और अमित त्रिवेदी की।

कार्यक्रम का अगला गाना महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में है, शकील आजमी के बोल, चिरंदन भट्ट का संगीत, फिल्म का नाम 1920 एविल रिटर्न्स।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम

शान की आवाज में आप सुन रहे थे तुम मिलो तो सही। इस फिल्म का शीर्षक गीत इरशाद कामिल का लिखा हुआ, संगीतकार संदेश शांडिल्य। चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। बेवकूफियां इस फिल्म के लिए अन्विता दत्त का लिखा ये गीत श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाजों में है। संगीतकार रघु दीक्षित।

0: ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा है। 8:45 होने वाले हैं, कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी

नेहा कक्कड़ और विशाल मिश्रा की आवाजों में जबरिया जोड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार राजशेखर, संगीत विशाल मिश्रा का। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त।

0: 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
1: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

न्याय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुँचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से

0: प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% जीएसटी को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर जीएसटी लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्नपत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च

0: न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। आज इस कार्यक्रम में पहला गीत नाइट इन लंदन फिल्म से। आनंद बख्शी के बहू लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, गायक स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

अगले गीत में मोहम्मद रफी के साथ आशा भोसले की आवाज है। लाट साहब फिल्म के ये गीत हसरत जयपुरी का रचा हुआ है, धुन शंकर जयकिशन की।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता। सुनना न भूलिए शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। अगला गाना हमराज फिल्म से हमने चुना है। साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत, आवाज महेंद्र कपूर की।

0: Spotlight. Good evening, listeners, and welcome to our program Spotlight. I'm Gaurav Dhawan Lal, and today we will be discussing about key union cabinet decisions. We are delighted to have with us senior journalist Lakshmi Devi. Lakshmi, welcome to the program.
1: Thank you for having me. Yeah.
0: The cabinet has approved the integration and continuation of two schemes, that is the assistance to state agencies for intra-state movement of food grains and FBS dealers margin under NFSA, and the scheme for modernization and reforms through technology in public distribution system, the Smart PDS system, under the umbrella scheme Sarthak PDS. We'd like to begin with a short bite we have of the Union Minister of Railways and Minister of Electronics and Information and Broadcasting, Mr. Ashwini Vaishnaw, who was just going to, without all the jargon, just tell us what really are the three reforms, and just to give another holistic perspective.
2: आज की कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करता है. आप सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है. फूड सिक्योरिटी से जुड़े जो विषय हैं, उन सबके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. आज उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाली जो व्यवस्था है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है, वो है सार्थक पीडीएस स्कीम. सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का प्रोग्राम है. इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं. सबसे पहला, राज्य में एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत. दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया. और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं.
0: सो लक्ष्मी, हियर वी आर हियरिंग द मिनिस्टर यू नो टॉक अबाउट लाइक प्रेसिंग अ रिफ्रेश बटन, इंक्रीजिंग रिम्यूनरेशन, मेकिंग श्योर दैट latest technology is used, and basically all the aims to see that the money goes to the right people. In terms of the scale, financial and logistical, do you think that somewhere sustainability is very, very critical, because it affects the last mile, you know, the common man?
1: The scale is huge, and India is the only country in the world where such a large scale welfare scheme is being implemented, and annually 500 lakh metric tons of food grains are transported across the country. And this, you know, moves from center to state and within the state to districts. And there are nearly 5,35,000 fair price shops, which we call ration shops, through which the food grains are distributed to 80 crore people. It's not a small number. And managing such a big capacity requires technology, and also people who are operating these fair price shops, they also need some kind of margin or remuneration for them to sustain, considering the kind of inflation we have. So that's the idea, like the support that government gives in assisting these dealers to operate these ration shops efficiently. If they are better remunerated, they will function efficiently. That's been the long-standing demand, that their margins are low and they want.

0: wanted, and this scheme helps them some increase in the remuneration for them. And apart from that, the scheme also talks about technology that is there, and also fair price shop, that support is there, and especially the grievances, you know, the grievances, AI grievances. If anyone has issues regarding PDS distribution or anything, they not got any their quota of, everything can be addressed. And if it is AI driven, the efficiency of addressing those issues will be faster and smarter.
1: Right. In fact, you're on point absolutely to talk about grievance redressal. The minister has also spoken about this and has also mentioned what is going to be the financial gain due to the use of technology, which now the government is looking forward to reaping. Let's listen to that.
2: पूरी स्कीम से जो बेनिफिट होंगे, सबसे बड़ा तो एलिजिबल बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई होंगे, दूसरा सिटीजन्स का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, तीसरा किसी की भी ग्रीवेंस हो उसको प्रॉपरली रिड्रेस कर पाए. एक जो फाइनेंशियल गेन होगा इस लॉजिस्टिक्स के पूरे रीऑर्गेनाइजेशन से और टेक्नोलॉजी यूज करने से, कॉस्ट ऑफ मूविंग रादर मूवमेंट ऑफ ग्रेन्स विल रिड्यूस ऑलमोस्ट 15-50%. लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में 280 करोड़ रुपए की एनुअल सेविंग हो, और कार्बन एमिशंस बिकॉज ऑफ लेसर मूवमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स, कार्बन एमिशंस विल 35%. ये सारे इसमें बेनिफिट होंगे.
1: सो लक्ष्मी, इट्स अ ह्यूज प्रोग्राम, एंड यस, ऑफ कोर्स एक्विटी एंड इंक्लूसिविटी आर द की पिलर्स ऑन विच दिस इज बेस्ड, एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ कोर्स. बट इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, हाउ डू यू सी दैट वी कैन मेक दिस मोर सस्टेनेबल, बिकॉज इट वॉज एक्चुअली अ ब्रिज reform that was brought in, but it is still continuing. So do you see sustainability as something that we really need to consider long term?
0: Scheme has been implemented, you know, for so many years. Food Security Act was 2013. It's a act, illegal entitlement to subsidized food grains was given to 2/3 of India's population. From then, you know, from 1 rupee to 2 rupee to now, you know, per kg to free distribution of grains, we have traveled a long journey. In that journey, there have been many reforms from time to time that has been taken, so that to address the leakages, so that to address the eligible beneficiaries get the food grains. These are been the key elements of this whole idea of welfare scheme. So to that extent, we've sustained for so long, and the adoption of technology will further enhance the sustainability and ensure the right person gets the food, and the government also saves the money. It's all taxpayers' money which goes as subsidy. So that is also saved with the use of technology, reducing the transportation costs and ensuring there is a more of local procurement than moving from one state to another state. All these are towards sustainable implementation of this mega scheme.
1: Right. And do you see any challenges? Because it's huge. Do you see any challenges, and what can we do about it?
0: Yes, we are so eagerly adopting the new technologies coming up so fast, and we are adopting it in every scheme. Caution should always be there to what extent this technology can be used and misused. So that particular part, the technology government takes care of it, then it will be easy for implementing and taking benefit of the technology.
1: Lakshmi, this is the tech age, and we should talk about the role of technology in actually, this is a continuation of schemes which have been lauded, in fact, as great food safety measures which India has taken across the world. Mr. Vaishnav has spoken about this also.
2: तीन बड़े एलिमेंट्स रहेंगे टेक्नोलॉजी के. सबसे पहला निर्मल, वो है पीडीएस बेनिफिशियरीज की रजिस्ट्री. करेक्ट व्यक्ति को सुविधा मिले और गलत व्यक्ति को सुविधा न मिले, इसके लिए एआई की टेक्नोलॉजीज का यूज करके पीडीएस के बेनिफिशियरीज की एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी. दूसरा है, किसी की भी पब्लिक की कोई ग्रीवेंस हो उसको सॉल्व करने के लिए एआई इनेबल्ड सिस्टम है आशा, इसमें प्रोएक्टिव फीडबैक भी है. तीसरा है सक्षम, इसमें सप्लाई चेन के पूरे प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी इनेबल करेंगे. हर एक फूड ग्रेन के बैग को QR कोडिंग करना, जितनी गाड़ियां जाती है उसका GPS टैगिंग रखना, डैशबोर्ड्स प्रॉपर बना के उनका ट्रैकिंग करना, पीडीएस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ये टेक्नोलॉजी का इनेबलमेंट किया जाए.
1: सो इट इज अ कंटिन्यूएशन. हाउ इज टेक्नोलॉजी गोइंग टू बी यूज? डू यू फील दैट समवेयर नाउ वेन बी इन द नेक्स्ट फेज ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द सेम स्कीम्स, टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू प्ले अ मोर एंड मोर मेजर रोल?
0: डेफिनेटली, यू नो, द टू स्कीम्स वर नाउ फंक्शनिंग सेपरेटली, एंड द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अंडर वन अम्ब्रेला इज टू रिमूव दैट फ्रेगमेंटेशन एंड सिंगल एडमिन

0: कैसी बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। ये बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे कलाकार की कहानी जो फिल्मों में आने से पहले मेरी तरह रेडियो उद्घोषक था, फिल्मी कलाकारों के इंटरव्यूज लिया करता था और कुछ कलाकार उससे कहते कि तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए, अच्छे खासे स्मार्ट दिखते हो, अच्छी कद काठी है, अच्छी आवाज है, फिल्मों में क्यों नहीं आते। और आखिरकार वो सचमुच फिल्मों में आ गया।

0: को चूमे ओ हो जब चले तू।
1: सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम इलाके में हुआ था। ये बंटवारे के बाद अब सरहद के उस पार रह गया है। बचपन का नाम बलराज दत्त था। हरियाणा के मंदाली में इनका बचपन बीता, फिर लखनऊ होते हुए बलराज दत्त मुंबई आ गए। मुंबई में पढ़ाई तो करनी ही थी, साथ ही कुछ पैसों का जुगाड़ भी करना था, तो परिवहन डिपो में वो बन गए चेकिंग क्लर्क और तब उनकी तनख्वाह थी सिर्फ 120 रुपए। फिल्मों में काम करने की तमन्ना थी और चूंकि पहले से एक बलराज फिल्मी दुनिया में मौजूद थे जिनका नाम बलराज साहनी

था, इसलिए बलराज दत्त ने अपना नाम बदलकर सुनील दत्त रख लिया और अब किस्मत आजमाने का सिलसिला शुरू हुआ। वो भटकते रहे मुंबई की सड़कों पर और स्टूडियो स्टूडियो जाकर काम मांगते रहे। इन्हीं दिनों में सुनील दत्त ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से स्नातक कर लिया। अब सवाल ये था कि आगे क्या किया जाए। ये वो दौर था जब रेडियो सीलोन को एक उद्घोषक की जरूरत थी, 25 रुपए प्रति इंटरव्यू के हिसाब से। बलराज दत्त रेडियो सीलोन के लिए फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यू किया करते थे। इत्तेफाक की बात है कि बलराज दत्त ने रेडियो सीलोन के लिए सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस का भी इंटरव्यू किया था। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर यही नरगिस उनकी जीवन संगिनी बन जाएंगी। इस कहानी पर हम बाद में आएंगे, पहले चलते हैं सन 1955 की तरफ। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, सुनील दत्त रेडियो सीलोन के लिए कई नामी फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यूज लिया करते और फिल्मी हस्तियां कहती कि भाई तुम्हारे पास पर्सनालिटी है, टैलेंट है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करते। और इसी तरह की बात रमेश सहगल ने बोली और सुनील दत्त ने हाँ कर दी। इस तरह से सन 1955 में सुनील दत्त फिल्मी पर्दे पर नजर आए। फिल्म थी रेलवे प्लेटफॉर्म।

दरअसल ये वो दौर था जबकि सुनील दत्त अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे। रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद उनके पास ज्यादा काम नहीं था। जो फिल्में मिली उनमें से कुछ ठीक ठाक चली और कुछ ठीक ठाक भी नहीं चल पाई। बस यही दौर था जब जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान ने उन्हें पेशकश की मदर इंडिया में बिरजू का रोल करने की। मदर इंडिया महबूब खान की फिल्म औरत का रीमेक थी और एक ऐसे दौर में आ रही थी जब आजाद भारत के 10 साल पूरे हो चुके थे और देश नव निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा था। कहीं ना कहीं थोड़ा असंतोष भी था कि ये वो मंजिल नहीं है जिसकी तलाश में हम निकले थे। सुनील दत्त ने मदर इंडिया में बिरजू का किरदार निभाया जो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करते हुए डाकू बन जाता है और आखिरकार उसकी अपनी ही माँ उसका कत्ल कर देती है क्योंकि वो उससे सहमत नहीं है, उसके गलत रास्ते से सहमत नहीं है। आइए अब जरा चलते हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना की तरफ। बिलीमोरा में मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग चल रही थी। महबूब खान अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म के सेट पर आग लगने वाला दृश्य फिल्मा रहे थे। सेट पर लगी आग अचानक बेकाबू हो गई। जानी मानी अभिनेत्री नरगिस, जो फिल्म में बिरजू की माँ का किरदार निभा रही थी, आग की लपटों से गिर गईं। सुनील दत्त ने आव देखा न ताव, वो आग की लपटों में कूद पड़े, भागे और नरगिस को बाहर ले आए। इस पूरी प्रक्रिया में सुनील दत्त बुरी तरह से घायल हो गए। कई दिनों तक अस्पताल में उनका इलाज किया गया। सुनील दत्त ने जिस तरह से अपनी जान दांव पर लगाई और नरगिस की जान बचाई, बस इस एक बात ने उनका दिल जीत लिया। 11 मार्च 1958 सुनील दत्त और नरगिस ने विवाह कर लिया।

सुनील दत्त और नरगिस का प्यार बेमिसाल था। सुनील दत्त नरगिस को पिया कहकर पुकारते थे। उस जमाने में सुनील दत्त बहुत सफर करते और नरगिस और सुनील दत्त

एक दूसरे को प्यार भरे खत लिखते। सुनील दत्त इन खतों में नरगिस को मर्लिन मुनरो कहकर पुकारते और इन खतों में नरगिस दत्त सुनील दत्त को लिखती, डियर एल्विस प्रेस्ले। ये था इन दोनों का प्यार। सुनील दत्त के करियर के कई चरण हैं। आइए उस दौर की बात करते हैं जब बी आर चोपड़ा प्रोडक्शंस के साथ सुनील दत्त ने एक के बाद एक तीन बड़ी फिल्में की। साल 1963 गुम

0: सुनील दत्त ने तरह तरह की भूमिकाएं निभाई हैं और सन 1967 में फिल्म आई पड़ोसन। इस फिल्म में सुनील दत्त की बिल्कुल अलग भूमिका थी। इस कालजयी कॉमेडी फिल्म में हम सुनील दत्त के अभिनय को भला कैसे भूल सकते हैं। अभी भी ऐसा लगता है मानो सुनील दत्त पर्दे पर ये गाना गा रहे हैं।
1: तुमसे

0: सकता क्या?
1: मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ डालूंगा।
2: तुम खोपड़ी तोड़ेंगे?
1: हाँ।
2: तुम हमारा खोपड़ी तोड़ेंगे?
1: हाँ।
2: तुम तोड़ेंगे?
1: हाँ।
2: पीछे काय को झगड़ा करना जी? आमा बोला आपस में झगड़ा अच्छा नहीं जी।
1: तुम ठीक कहते हो।
2: देखो एक चौकरा एक चौकरी गार्डन में घूमता है तो फिर कबाब में अड्डी काय को?
1: अबे चुप कर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
2: बोला आगे नहीं आना।
1: हम आएगा।
2: आगे नहीं आना।
1: आएगा।
2: तुम आगे आएगा?
1: आएगा।
2: तुम आएगा?
1: आएगा।
2: अच्छा तो फिर हम पीछे जाएंगे जी।
1: अबे तुम कैसे पीछे जाता है? ये कसर का बदन है, हम तुम्हें पीछे भेजेगा। जा मार।
3: यो यो यो यो यो। सन 1965 फिल्म

0: सन 1967 में आई थी ज्योति स्वरूप के निर्देशन वाली फिल्म पड़ोसन, किशोर कुमार, मुकरी, सायरा बानू और सुनील दत्त के अभिनय वाली इस कालजयी कॉमेडी फिल्म को, इसके संवादों और इसके गानों को आप भला कभी भूल पाएंगे?
1: बोला तुम गाने में हमको हराया, हाँ तुम फाइटिंग में हमको

सन 1958 में फिल्म सुजाता आई। बिमल राय की इस फिल्म में टेलीफोन हाथ में पकड़े हैं सुनील दत्त और तार के दूसरे सिरे पर नूतन है जो उनसे ये गाना सुन रही है।

0: एक दौर ऐसा था जब सुनील दत्त के पास बहुत फिल्में नहीं थी। तब आर के नैयर और साधना ने जोर दिया और सुनील दत्त 1974 में फिल्म गीता मेरा नाम में बतौर खलनायक नजर आए। सन 1963 में सुनील दत्त ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया अजंता आर्ट्स और फिल्मों का निर्माण शुरू किया। आर के नैयर ने उनके बैनर तले फिल्म बनाई ये रास्ते हैं प्यार के।
1: खामोशियां

इसके बाद सुनील दत्त प्रोडक्शंस की एक यादगार फिल्म आई यादें। इसके जरिए सुनील दत्त ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। यादें इसलिए अनमोल है क्योंकि ये एक ही कलाकार और एक ही कमरे में फिल्माई गई फिल्म है। सन 1963 का साल सुनील दत्त के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। इस साल एक के बाद एक तीन फिल्में आई थीं। ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो और मन का मीत, जो उन्होंने अपने छोटे भाई सोम दत्त को लॉन्च करने के लिए बनाई।

1971 में सुनील दत्त ने एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया। ये वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो मूक है। सन 1971 की यह फिल्म है रेशमा और शेरा। संगीत जयदेव।

सन 1973 में सुनील दत्त के अभिनय वाली फिल्म आई हीरा, सन 1974 प्राण जाए पर वचन न जाए, सन 1976 नागिन, सन 1979 जानी दुश्मन और सन 1980 में आई रमेश सिप्पी के निर्देशन वाली फिल्म शान। सन 1980 वो साल था जब सुनील दत्त ने अपने होनहार बेटे संजय दत्त को फिल्मी दुनिया में उतारा और एक फिल्म का निर्माण किया, रॉकी। 26 अप्रैल 1981 को रिलीज हुई फिल्म रॉकी, जिसके जरिए संजय दत्त बन गए हीरो। ये वो दिन थे जब नरगिस कैंसर से जूझ रही थी। इधर रॉकी फिल्म रिलीज हुई, उधर 3 मई को संजय दत्त की मां नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनील दत्त बुरी तरह से टूट गए।

0: अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की और इसके जरिए कैंसर पीड़ितों के कल्याण के लिए आजीवन काम करते रहे। सुनील दत्त के फिल्मों के निर्माण का सिलसिला लगातार जारी रहा। इस बीच वो बाहर की भी कुछ फिल्में करते रहे। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सुनील दत्त ने कुछ पंजाबी धार्मिक फिल्मों में भी काम किया था, जैसे सन 1973 में आई थी मन जीते जगजीत, सन 1974 में आई दुख भंजन तेरा नाम और सन 1977 में आई सत श्री अकाल। आइए अब बात कर ली जाए सुनील दत्त को मिले पुरस्कारों की। सन 1963 में फिल्म मुझे जीने दो के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1964 फिल्म यादें को मिला सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1965 फिल्म खानदान के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1995 में फिल्म संसार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए फिल्म फेयर ने सुनील दत्त को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया।
1: एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।
0: 90 के दशक में सुनील दत्त की दो बड़ी फिल्में आईं। सन 1992 में आई परंपरा, सन 1993 में आई क्षत्रिय। सुनील दत्त और संजय दत्त बहुत कम फिल्मों में एक साथ नजर आए। फिल्म रॉकी में दोनों ने काम किया लेकिन दोनों का एक साथ कोई सीन नहीं था। पर आगे चलकर सन 2007 में आई राजकुमार हीरानी के निर्देशन वाली फिल्म मुन्ना भाई MBBS, ये वो फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त एक ही सीन में नजर आते हैं। सुनील दत्त सक्रिय राजनीति में भी चले गए थे और वहां उन्होंने जमकर काम किया। 25 मई 2005 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में सुनील दत्त का निधन हो गया। संसार ने एक बेहतरीन अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और उससे भी बढ़कर एक बेहतरीन शख्स को खो दिया। एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी जद्दोजहद का एक अनंत सिलसिला थी। वो किसी भी मुसीबत से हारे नहीं, डटे रहे और अपने निजी जिंदगी की मुसीबतों के बावजूद समाज की बेहतरी के लिए लगे रहे। सुनील दत्त को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

सामईन, चांद अपने हर रूप में बहुत सुंदर है। चांद की कलाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन एक निरंतर प्रवाह है और हमें हर पल को जीना सीखना चाहिए। मैं सोचती हूं कभी कभी कि जीवन तो चौदहवीं का चांद होना चाहिए। हाँ, पूर्णता के निकट लेकिन पूर्णता से कुछ कम, थोड़ी सी कसक, थोड़ी सी कमी, थोड़ा सा अधूरापन समेटे। एक बात कहूं, कभी कभी प्यार पूनम की रात में भी अमावस्या प्रतीत होता है ना।

कभी कभी कोई अजनबी अपना सा लगने लगता है, प्यारा सा, दिल की धड़कन सा। फिर एक दिन वो खामोशी से दूर चला जाता है, बहुत दूर। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक खालीपन छोड़ जाता है जो हर जगह आपको घेरे रहता है। हम उसके लौटने की उम्मीद करते हैं पर वो नहीं लौटता। हम खुद को समझाते हैं, सोचते हैं, कहां, कैसे हमने उसे खो दिया, क्यों? खुद को कोसने लगते हैं, अपनी भावनाएं, अपने जज्बात, अपने आंसू, अपना वक्त हम बर्बाद करते चले जाते हैं। अफसोस, हम ऐसे रिश्तों की कद्र करते हैं जो हमारे होते ही नहीं हैं। हाँ, ये सच है, वो रिश्ते हमारे होते ही नहीं हैं।

कुछ रिश्ते रेत की तरह होते हैं, जितना कसकर पकड़ने की कोशिश करो उतनी ही तेजी से फिसल जाते हैं। हाँ, कोई आपके दिए गए सारे प्यार के बावजूद किसी और को चुनता है तो उसे ऐसा करने दो। कोई बिना वजह खूबसूरत रिश्ते में दूरी बनाता है तो उसे जाने दो। किसी ऐसे शख्स को चुनना

जिसने आपको कभी चुना ही नहीं उसे उसके हाल पर छोड़ दो। हाँ, ऐसे रिश्ते में ऊर्जा लगाना व्यर्थ है।

के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के दर्शन का लाभ पर्वतारोही की अपेक्षा वो अधिक अच्छी तरह से ले सकता है जो किसी दूर समतल क्षेत्र में खड़े होकर उस सौंदर्य को निहारता है। बस ऐसे ही जिंदगी में नजदीकियों की अपेक्षा कभी कभी दूरियां भी बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि बहुत करीब से अक्सर हम सत्य को साफ साफ देख नहीं पाते। और जीवन जीवन तो अभिनय से नहीं, सच के साथ चलता है। हाँ, सच के साथ।

जिसे आपके जीवन से जाना है वो सबसे आरामदायक किनारे पर भी कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेगा। ऐसे में किसी को जबरदस्ती रोकना, गिड़गिड़ाना, मिन्नतें करना, रोना सब मूर्खता है। सच तो ये है कि स्वयं को कभी किसी ऐसी डोर से मत बांधो जिसकी पकड़ खुद तुम्हारे हाथ में नहीं हो।

कुछ प्रेम कथाएं योजनाओं से नहीं संयोगों से जन्म लेती है, न उन्हें गढ़ा जाता है न रचा जाता है, वे बस घट जाती हैं अपने आप ही। और जब ये प्रेम कथाएं किसी उपन्यास के आखिरी पन्ने पर आते आते दम तोड़ देती है, तब दिल रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे चुपचाप जीने लगता है, मन के किसी परकोटे के भीतर घायल सा तड़पता हुआ।

काश हम समझ पाते कि किसी रिश्ते को शब्द नहीं बचाते कभी। कई बार सम्मान और संवेदनशीलता ही उसका अंतिम

0: आप सुन रहे हैं
1: चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन

0: जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपये लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरा पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उज जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन साथ ही DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर आकाशवाणी प्रसारण सेवा लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।